0: कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को विश्वसनीय साझेदार बताया, कहा अमेरिका का दबाव भारत रूस संबंधों को प्रभावित नहीं करेगा। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री का दमन दौरा भी होगा। प्रधानमंत्री वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4-लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुँच में सुधार होगा। जनकल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 24 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ESIC अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा गुजरात में ट्रांसमिशन नेटवर्क विस्तार, दहेज PCPIR और सरिगाम GIDC में उन्नत अपशिष्ट निपटान प्रणाली और वलसाड़ में आधुनिक बिजली वितरण उन्नयन सहित कई महत्वपूर्ण औद्योगिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी आज शुभारंभ किया जाएगा। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरूआत की है। 4 से 8 जून तक आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग स्वस्थ रहने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
2: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये चैंपियनशिप आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले विश्व स्तर पर योग के संदेश को पहुंचाने का अवसर है।
2: 21 जून को वर्ल्ड योगा डे भी मनाया जाएगा। उस दिन दुनिया के अलग अलग देशों में योग से जुड़े आयोजन होंगे और इसका प्रमुख कार्यक्रम भारत के एक और ऐतिहासिक शहर कोलकाता में होगा। वर्ल्ड योगा डे से पहले वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप अपने आप में हेल्थ और वेलनेस की डबल डोज लेकर आ गई है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मुंबई में मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। 6 सदस्यीय समिति ने बुधवार को 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अप्रैल में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया था।
1: खुदरा मुद्रास्फीति पर आधारित महंगाई सूचकांक 4% तक सीमित रखने का लक्ष्य भारत सरकार ने रिजर्व बैंक को दिया है। असाधारण परिस्थितियों में यह सूचकांक 2-6% के दायरे में रखने की भी छूट है। सोने एवं चांदी के आभूषण तथा खानपान सामानों की कीमतें बढ़ने के कारण अप्रैल में यह सूचकांक 3.48 पर था, जो कि दिए गए दायरे के अंदर है। इसी कारण विश्लेषकों का मानना है कि रिजर्व बैंक इस बार भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। पश्चिम एशिया में उत्पन्न संकट का महंगाई तथा आर्थिक वृद्धि पर होने वाला परिणाम देखते हुए रिजर्व बैंक सतर्क दृष्टिकोण अपनाएगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। कुछ दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सीएस सेट्टी ने भी कहा था कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बदलाव नहीं करता है तो आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से जीवन भावसा।
0: मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। श्री कपूर का विस्तारित कार्यकाल 10 जून से 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर करने के पश्चिमी देशों के प्रयास व्यर्थ और वैश्विक स्थिरता के लिए हानिकारक हैं। प्रमुख वैश्विक समाचार एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री पुतिन ने कहा कि अमरीका के साथ भारत की राजनयिक भागीदारी दोनों देशों के चिरस्थायी संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालती। उन्होंने कहा कि रूस भारत को एक विश्वसनीय साझेदार मानता है। श्री पुतिन ने भारत के साथ रूस के रक्षा और सैन्य संबंधों की भी चर्चा की और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के सह विकास और सह उत्पादन के बारे में भी बताया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस ने भारत को 5वीं पीढ़ी के SU-57 लड़ाकू विमान के निर्माण में संयुक्त रूप से काम करने का प्रस्ताव दिया है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। व्यापार समझौते पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत का अपना 4 दिन का दौरा पूरा किया है। एक रिपोर्ट।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान वस्तुओं के व्यापार, गैर टैरिफ उपायों, सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा, आर्थिक सुरक्षा संरक्षण और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों सहित कई मुद्दों पर रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा की गई। मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने वाले पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत और अमरीका ने 7 फरवरी को जारी एक संयुक्त वक्तव्य में व्यापार से संबंधित एक अंतरिम समझौते पर सहमति व्यक्त की। यह भारत अमरीका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी।
3: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। विभिन्न अभियानों, कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से लोगों और समुदायों को पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे आने तथा बेहतर और टिकाऊ भविष्य के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देशवासियों से जलवायु और भविष्य के लिए प्रकृति से प्रेरणा लेते रहने का संकल्प दोहराने का आग्रह किया है। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के दूसरे स्तर संघ चालक माधव सदाशिवराम गोलवलकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा कि श्री गोलवलकर ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को एक मजबूत वैचारिक आधार दिया। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच जापान के काकामिगहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार आज शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। महिला अंडर 18 एशिया कप में भारत ने ग्रुप चरण में बिना कोई मैच हारे सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गरज के साथ आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
2: धन्यवाद जागृति। प्रधानमंत्री मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति की मुलाकात को आज प्रकाशित अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला से बढ़ेगी कच्चे तेल की खरीद, ऊर्जा साझेदारी पर भी चर्चा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सेंट पीटर्सबर्ग में मीडिया को दिया बयान, अमर उजाला ने प्रथम पृष्ठ पर दिया है। भारत पर दबाव की कोशिश में अमरीका, लेकिन सभी जानते हैं मोदी पर दबाव बनाना नामुमकिन। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर दैनिक जागरण की खबर है, धुएं ने छीन ली सांसें पर आखिरी पल तक नहीं छोड़ा साथ। पंजाब केसरी की खबर है, मौत की इमारतों पर होगा एक्शन, उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने नगर निगम को दिए कार्रवाई के निर्देश। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ में हादसों की जवाबदेही का विश्लेषण दिया है, किसी भी हादसे का सबसे जरूरी सबक ये होना चाहिए कि भविष्य में ऐसे इंतजाम किए जाएं ताकि वैसी घटना दोबारा न हो। दैनिक भास्कर ने बड़ा कदम शीर्षक से इको फ्रेंडली खबर दी है, सिर्फ एथेनॉल से चलने वाली देश की पहली कार लॉन्च, 5,000 पंप खुलेंगे, इससे प्रदूषण घटेगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी। राजस्थान पत्रिका ने मॉनसून की दस्तक को मंगल प्रवेश बताते हुए लिखा है, बूंदों की बारात लेकर मॉनसून केरलम पहुंचा, 20 को राजस्थान में आगवानी। अब उत्तर भारत में तपिश के गिने चुने दिन, पत्र ने विश्व पर्यावरण दिवस पर लिखा है, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, धरती संकेत दे रही है, क्या हम सुन रहे हैं, पहले मौसम बदलता था अब बिगड़ता है, प्रकृति से सिर्फ लिया कभी कुछ जमा नहीं किया, अब धरती दे रही चेतावनी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning. I'm

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना। अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
2: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
1: पर पापा।
2: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
1: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद। सुबह सुबह रेडियो ऑन ना करने से पहले
3: माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं जरा।
1: सुबह सुबह रेडियो ऑन ना करने से पहले
3: माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं जरा। माँ
1: अरे तो भाई चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले।
3: माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: तो भाई साहब आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यूनिंग कीजिए आपकी शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
4: क्या बात है सर, क्या बात है सर।

श्रोताओं वेलकम बैक है, सुप्रभात नमस्कार, एक सुपर डुपर वाला गुड मॉर्निंग है। आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। श्रोताओं वक्त हो गया है 8:19, मेरी भी यहाँ पर हो गई है हाजिरी पूरी। भैया मैंने तो देखिए अपनी एंट्री दे दी है, अब आपकी एंट्री की बारी है, आप भी अपनी एंट्री मुझ तक पहुँचाइएगा। लेकिन उससे पहले मैं पहुँचाता हूँ आज का एक प्यारा सा विचार, और उससे भी पहले आज के दिन की देता हूँ ढेरों मंगल शुभकामनाएं। शुक्रवार का दिन है, शुक्र है कि आज शुक्रवार है। शुक्राना कीजिए उन दो लोगों का जो आपकी जिंदगी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो आपके माता पिता हो सकते हैं, वो आपके जीवन साथी हो सकते हैं, वो आपके दोस्त हो सकते हैं, वो आपके भाई बहन हो सकते हैं, या वो नेवल्स हो सकते हैं जो हमेशा आपको हर एक सिचुएशन में मोटिवेट करते हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो आज शुक्राना करते हुए उनका आगे बढ़िए, और आप चाहें तो आज के दिन उस ऊपर वाले का, अल्लाह वाहेगुरु खुदा परमपिता परमात्मा का भी शुक्राना जरूर करें। श्रोताओं बहुत ही खूबसूरत सी सुबह है, और इस खूबसूरत सी सुबह में मैंने भी देखिए दस्तक दे दी है आपके रेडियो सेट पर। आज का बहुत ही सुंदर विचार, कहते हैं अच्छे लोगों की संगत बहुत ही कीमती होती है मेरे दोस्त, कि अच्छे लोगों की संगत बहुत ही कीमती होती है मेरे दोस्त, क्योंकि सुनार का कचरा भी बादाम से महंगा होता है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, ये छोटा सा विचार है लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। इस विचार को अगर हम अपने जीवन में अपनाएंगे तो जिंदगी में बहुत आगे पहुंचेंगे, क्योंकि ये विचार नहीं है, ये वो थॉट है जो इंसान को जिंदगी में जरूरी है बदलना और सिखाना, कि भैया लाइफ में अगर कुछ बड़ा करना है तो उसमें आपको ये चीजों को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। श्रोताओं कहते हैं हर दिन एक नई शुरुआत होती है, एक नई पॉजिटिविटी की शुरुआत होती है, एक नई ऊर्जा की शुरुआत होती है, इसीलिए आज को बेहतर बनाओ, क्योंकि आज का ये वो दिन है जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आप जुड़ चुके हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे आरजे आनंद के साथ। क्या कहता है आज का मौसम, वक्त हो गया है 8:20, वेदर पे भी बात करेंगे और आपसे भी ढेर सारी बातचीत करेंगे इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पर। लेकिन उससे पहले आइए शुरू करते हैं आज के प्रोग्राम का सफरनामा, बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ करेंगे आज के प्रोग्राम की शुरुआत। उसके बाद कुछ कड़क अपडेट, कुछ कड़क इन्फॉर्मेशन, आज का दिन क्यों खास है, आज क्या स्पेशल हो रहा है, आपके आसपास में क्या कुछ गतिविधियां हो रही हैं, सब पर हम बातचीत करेंगे इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। क्या कहता है आज का वेदर, इस पे तो डेफिनेटली बात होगी। अभी के लिए अभिजीत भट्टाचार्य की ब्यूटीफुल आवाज, फ्राइडे मॉर्निंग है, इस गाने को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग।

0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
1: मॉर्निंग। क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
2: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
3: अरे भैया, नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
4: क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन। और श्रोताओं, अब आपको बता दें, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो।

दोस्तों अब आपको हम लेकर चलते हैं एक बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम की ओर। इसको आप सुनेंगे तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। और एक्चुअली ये कार्यक्रम नहीं है, ये एक वो चीज़ है जिसके बारे में आपको जब पता लगेगा तो आपको भी बहुत एक्साइटमेंट आएगी। बिकॉज़ ये ना छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको सुनकर आपको तमाम जानकारियाँ मिलती हैं, तमाम इन्फॉर्मेशन मिलती हैं। तो अब सीधा आपको लेकर चलते हैं हम गोरखपुर शहर में, और वहाँ का कौन सा एक फूड है जो बहुत ही पॉपुलर है, और हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से जो एक नई योजना का शुभारंभ हुआ है जिसका नाम है एक डिस्ट्रिक्ट एक व्यंजन, उसी पर जो है क्या चीज आज फेमस होने वाली है गोरखपुर की, कौन सी चीज है जो बहुत ही पॉपुलर है जिस पर आज की सुबह ना आपके मुंह में भी पानी आ जाएगा सुनकर। किस टॉपिक पे बात हुई है जरा ही सुनते हैं, उसके बाद जल्दी से मिलेंगे इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आरजी आनंद को। तो बहुत ही कमाल की ये इन्फॉर्मेशन है, और आपको कैसा लगा ये छोटा सा प्रोग्राम आप जरूर बताइएगा हमें मैसेज करके।

0: 9.6 मेगाहर्ट्ज़ के शहर का अपना सामुदायिक रेडियो और आपका फेवरेट प्रोग्राम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश एक बार फिर से लेकर हाजिर हो गया हूँ। मैं आपका दोस्त आनंद और मेरे साथ हैं
1: आरजे रीना।
0: यस दोस्तों, तो दोस्तों आज हम बात करेंगे विकास की, विरासत की और उन स्वादों की जो हमारी मिट्टी की खुशबू अपने अंदर समेटे हुए हैं।
1: और आज हम पहुँचे हैं पूर्वांचल की धड़कन यानी गोरखपुर में, जहाँ की बोली में अपनापन है और खाने में देसी स्वाद का जादू।
0: बिल्कुल, और आज का हमारा विषय है एक ऐसा व्यंजन जो गरीब से लेकर अमीर तक, छात्र से लेकर अधिकारी तक और हर किसी की पहली पसंद बन चुका है।
1: जी हाँ दोस्तों, आज बात होगी पूर्वी उत्तर प्रदेश के सबसे मशहूर देसी व्यंजन लिट्टी चोखा की।
0: वाह, नाम सुनते ही जैसे देसी घी की खुशबू हवा में घुल गई हो।
1: और अब इस स्वाद को नई पहचान देने जा रही है योगी सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन कुंजिंग यानी ODOC योजना।
0: जिस तरह ODOP योजना ने प्रदेश के पारंपरिक उत्पादों को देश दुनिया तक पहुंचाया है, उसी तरह अब ODOC योजना जिलों के पारंपरिक व्यंजनों को ग्लोबली पहचान दिलाने जा रही है
1: और गोरखपुर जिले की पहचान के रूप में चुना गया है स्वाद और सेहत का अनोखा संगम लिट्टी चोखा।
0: दोस्तों लिट्टी चोखा सिर्फ एक व्यंजन नहीं है बल्कि पूर्व यूपी की संस्कृति, गाँव की मिट्टी और देसी जीवन शैली का हिस्सा है।
1: सही कहा, पहले गाँव में जब खेतों में काम खत्म होता था तो शाम को चूल्हे पर कड़े की धीमी आंच में लिट्टी सेकी जाती थी। पूरा परिवार एक साथ बैठकर उसे चोखा और घी के साथ खाता था।
0: यानी लिट्टी चोखा सिर्फ खाना नहीं बल्कि परिवार, अपनापन और परंपरा का स्वाद है।
1: और सबसे खास बात, यही स्वाद जितना लाजवाब है उतना ही सेहतमंद भी।
0: तो चलिए दोस्तों अब आपको बताते हैं आखिर लिट्टी बनती कैसे है।
1: सबसे पहले गेहूं के आटे को अच्छे से गूंधा जाता है, फिर उसके अंदर भरा जाता है चने का सत्तू।
0: लेकिन ये कोई साधारण भरावन नहीं होता, इसमें मिलाया जाता है अजवाइन, मुगरेला, लहसुन, हरी मिर्च, अचार का मसाला, नींबू और सबसे जरूरी देसी सरसों का तेल।
1: उफ, सोच कर ही भूख बढ़ जाए।
0: फिर इसी भरी हुई लिट्टी को कंडे यानी उपले की धीमी आंच पर धीरे धीरे सेका जाता है। लिट्टी को बार बार पलटा जाता है ताकि हर तरफ से वो सुनहरी और कुरकुरी हो जाए।
1: और जब गर्म गर्म लिट्टी तैयार होती है तो उसे देसी घी में डुबो दिया जाता है। घी की खुशबू और सत्तू का स्वाद, यही तो इसकी असली पहचान है।
0: अब बात करते हैं इसके साथी यानी चोखे की।
1: चोखा बनाने के लिए भुने हुए बैंगन, उबले आलू और टमाटर को अच्छे से मैश किया जाता है।
0: फिर उसमें डाला जाता है प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, धनिया, नमक और कच्चे सरसों के तेल की धार।
1: यही सरसों का तेल चोखा को वो देसी फ्लेवर देता है जो हर निवाले को खास बना देता है।
0: और दोस्तों जब गर्म लिट्टी को तोड़कर उसमें चोखा भरकर खाया जाता है तो स्वाद सीधे दिल तक पहुंच जाता है।
1: यही वजह है कि गोरखपुर में लिट्टी चोखा हर वर्ग के लोगों की पसंद बन चुकी है।
0: छात्र संघ चौराहा, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, मेडिकल कॉलेज रोड, तारामंडल क्षेत्र, हर जगह आपको लिट्टी चोखे की दुकानें नजर आ जाएंगी।
1: छात्र हो, कामकाजी लोग, रिक्शा चालक, व्यापारी या पर्यटक, हर कोई बड़े चाव से लिट्टी चोखा खाता है
0: क्योंकि ये स्वादिष्ट भी है, पेट भरने वाला भी है और जेब पर भी भारी नहीं पड़ता।
1: और दोस्तों एक समय था जब लिट्टी चोखा सिर्फ ठेले और रेहड़ी पर मिल जाता था,
0: लेकिन अब वक्त बदल चुका है। आज गोरखपुर में आधुनिक आउटलेट्स खुल चुके हैं,
1: यानी देसी स्वाद अब मॉडल स्टाइल में भी लोगों को खूब पसंद आ रहा है।
0: कुछ आउटलेट्स में तो मिट्टी के कुल्हड़ में चोखा परोसा जाता है ताकि ये ग्राहकों को पूरा देसी अनुभव मिल सके।
1: और सोशल मीडिया के दौर में भी तो लोग पहले फोटो खींचते हैं फिर लिट्टी खाते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा अर्जेरीना।
1: इतना ही नहीं, अब दूसरे शहरों में फ्रेंचाइजी की मांग भी आने लगी है।
0: यानी लिट्टी चोखा अब सिर्फ गोरखपुर तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि देश और दुनिया में भी अपनी पहचान बनाएगा।
1: सरकार भी इस दिशा में लगातार काम कर रही है।
2: सबसे पहले हमें अपना नाम बता दें।
3: मेरा नाम विकास श्रीवास्तव है मैम।
2: विकास जी, आपका ये प्रतिष्ठान कब से गोरखपुर में स्थापित है?
3: ये हमारा जो है 15 जनवरी से हम लोगों ने इसको ओपन किया है।
2: जी जी, तो बाटी चोखा ही क्यों?
3: बाटी चोखा क्या है कि हम लोगों ने पूर्वांचल की चीजों को देखा है और जो सबसे ज्यादा चलने वाली चीजें हैं, जैसे कि पूर्वांचल में बाटी चोखा एक रिलेटेड है, अपने मट्टी की खुशबू को लेते हुए हम लोगों ने इस चीज को किया है, बाटी चोखा का कॉन्सेप्ट किया है। हर जगह जो है आजकल देखा जाए तो व्यंजन तो बहुत है, चाइनीज है, इंडियन है, कई चीजें मिल जाती हैं, जो अपनी मिट्टी की चीजें नहीं मिल पाती। इसलिए हम लोगों ने पाटी चोखा का कॉन्सेप्ट दिया कि भाई कुछ अपना किया जाए उसको।
2: जी जी। अच्छा, जहाँ इतने सारे चाइनीज विदेशी व्यंजन अब उपलब्ध हैं, तो आपको ये थोड़ा रिस्क नहीं लगा कि बाटी चोखा पे हम इतना बड़ा शोरूम बना रहे हैं, क्या हमारे पास कस्टमर्स आएंगे?
3: नहीं, इस दरअसल था ऐसा, लेकिन फिर मैंने ये अपना सोचा गया कि देखिए हमारा जो भी है, जो भी यहाँ रहते हैं, जो भी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं पूर्वांचल की मिट्टी से ही जुड़े हैं। आज भले वो कहीं भी रहें, किसी दुनिया के किसी भी कोने में, लेकिन वो उठे ही हैं देहात से। तो इसीलिए हमने बस इसको जो है इस पे जोर दिया गया।
2: शहर में कई सारे बाटी चोखा के प्रतिष्ठान है, तो आपका स्पेशल क्या है?
3: हमारा देखिए स्पेशल क्या है कि हमारा जो बाटी चोखा है वो सॉफ्ट है
2: जी।
3: आप कई जगह खाई होंगी बाटी चोखा, तो जो उसकी परत होती है बहुत टाइट होती है, बच्चे नहीं खा सकते हैं। आप हमारे यहाँ खाएंगी तो बच्चे भी बहुत आराम से उस चीज को खा लेते हैं। हमारे यहाँ जो भी बाटी चोखा है बहुत सॉफ्ट होता है, एकदम मुलायम, वो हर तबके के, चाहे वो बूढ़े हों, बच्चे हों, सबको पसंद आएगा हमारा।
2: जी
4: जी। ये बताइए कि आपके यहाँ जो कस्टमर्स आते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा संख्या किसकी रहती है, युवा की रहती है या फिर फैमिली ज्यादा आती है?
3: तो ये हमारे यहाँ जो भी है फैमिलियाँ ज्यादा आती
4: हैं। फैमिली ज्यादा
3: है। जी मैम,
2: हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा ये प्रोजेक्ट चलाया गया, एक जनपद एक व्यंजन।
3: हाँ, एक जनपद एक व्यंजन
2: जी, जिसके तहत हम आके आपसे बात कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे हमारे महाराज जी के लिए?
3: महाराज जी के लिए तो क्या कहा जाए, महाराज जी तो खैर अपने आप में खुद ही बहुत अच्छे सीएम है वो, और अगर उन्होंने कोई चीज पहल की है तो बहुत अच्छी पहल की है।
1: और दोस्तों, ODOC योजना सिर्फ व्यंजनों को पहचान दिलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे जुड़े कारीगरों, रसोइयों, छोटे दुकानदारों और उद्यमों को भी सीधे लाभ मिलने वाला है।
5: बिल्कुल, सरकार इस योजना के तहत लिट्टी चोखा बनाने और बेचने वाले लोगों को प्रशिक्षण, कौशल विकास और व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य कर रही है।
1: स्वयं सहायता समूह महिलाओं, उद्यमियों और युवाओं को भी इस पहल से जोड़कर स्वरोजगार के नए अवसर सृजित किए जा रहे हैं, ताकि स्थायी स्तर पर रोजगार को बढ़ावा मिल सके।
5: साथ ही बेहतर ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग की सुविधा के माध्यम से छोटे विक्रेताओं और पारंपरिक व्यंजन तैयार करने वाले लोगों को बड़े बाजारों तक पहुंचने का अवसर मिल सके।
1: इससे उनकी आय में वृद्धि होगी और स्थानीय खाद्य व्यवसायों को नई पहचान मिलेगी।
5: यानी ODOC योजना सिर्फ स्वाद को दुनिया तक पहुंचाने की पहल नहीं है, बल्कि स्थानीय कारीगरों, दुकानदारों और उद्यमों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम है।
1: पर्यटन विभाग भी अब प्रमुख आयोजनों और पर्यटन स्थलों पर लिट्टी चोखा के विशेष स्टॉल लगने जा रहे हैं।
5: यूपी दिवस के समारोह में भी लिट्टी चोखे का स्टॉल लोगों को आकर्षण का केंद्र बना देता है।
1: और सच कहें तो लिट्टी चोखा सिर्फ एक व्यंजन नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की एक स्वादिष्ट मिसाल है,
5: क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाली हर चीज देसी और प्राकृतिक होती है।
1: गेहूं, सत्तू, सरसों का तेल, बैंगन, टमाटर, सब कुछ स्थायी किसानों और बाजारों में आता है।
5: यानी इस एक व्यंजन से किसान, हलवाई, दुकानदार और छोटे कारोबारी सभी को रोजगार मिलता है।
1: यही तो है ODOC योजना की सबसे बड़ी ताकत, स्थानीय स्वाद को वैश्विक पहचान देना।
5: दोस्तों, आज फास्ट फूड के दौर में लोग फिर से देसी और हेल्दी खाने की तरफ लौट रहे हैं,
1: और लिट्टी चोखा इस बदलाव का सबसे बेहतरीन उदाहरण बन चुका है।
5: देसी स्वाद, देसी खुशबू और देसी मिट्टी का एहसास, सब कुछ एक ही प्लेट में।
1: तो अगर आप कभी गोरखपुर आए तो यहाँ का लिट्टी चोखा जरूर खाइए,
5: क्योंकि एक बार जो इसका स्वाद चख ले वो इसे कभी नहीं भूल पाता।
1: और योगी सरकार की ODOC पहल अब इस स्वाद को दुनिया के हर कोने तक पहुँचाने की तैयारी में है।
5: तो दोस्तों, आज हमने जाना कैसे लिट्टी चोखा सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की संस्कृति, परंपरा और आत्मनिर्भरता की पहचान है,
1: और कैसे ODOC योजना स्थानीय व्यंजनों को नया बाजार, नई पहचान और नए अवसर दे रही है।
5: इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश के एक नए सफर में। नमस्कार। तो दोस्तों, आप सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
6: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: सुबह सुबह रेडियो ऑन ना करने से पहले
1: माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
0: अरे तो भाई चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले।
1: माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है।
0: तो भाई साहब आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यून इन कीजिए आपकी शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
2: क्या बात है सर, क्या बात है सर।
3: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
4: क्या मेरी कसम
3: मिस कर दिया तो रीलोड।
5: चाय चाय चाय
3: बिंदास सुनिए बिंदास मॉर्निंग्स आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।

0: वेलकम बैक है, सुप्रभात, नमस्कारम, आज ही आनंद के साथ हैं आप। 5 जून की सुबह है, बहुत ही बड़ा और बहुत ही खूबसूरत दिन आज हम सेलिब्रेट करते हैं, अपनी धरती माँ से, अपनी प्रकृति से प्यार करने का दिन, अपने पर्यावरण को सुरक्षित और हेल्दी बनाने का दिन, अपने इन्वायरमेंट को और भी पॉजिटिव बनाने का दिन। जी हाँ श्रोताओं, इतनी सारी क्लू दे रहा हूँ तो ऑफकोर्स आप समझ ही जाएंगे, बिकॉज यू आर वेरी इंटेलिजेंट, आई नो दैट। और बहुत सारे श्रोता साथी मेरे साथ जुड़े हैं, आप लोग भी जुड़ सकते हैं 9837896896 के माध्यम से। ये स्टूडियो का वो मैजिकल नंबर है जिसके जरिए आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं मेरी इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। अभी आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा और आज का दिन क्यों खास है इस पे भी हम बात करेंगे, लेकिन छोटू से ब्रेक के बाद जल्दी आ रहा हूँ मैं इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, एक छोटा सा ब्रेक।
1: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
2: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
1: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
3: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
4: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7066002430।
5: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग।
0: श्रोताओं एक बार फिर से आपका स्वागत, अभिनंदन है। ढेर सारे श्रोता मेरे साथ जुड़े हैं, गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं। हमारे पास जुल्फी भाई लिखते हैं, गुड मॉर्निंग आनंद जी, कैसे हालचाल हैं? सुबह सुबह आपको सुनते ही मन प्रसन्न हो जाता है और बस इतना ही कहना चाहते हैं, जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो आपको अपने अंदर की नकारात्मकता को खत्म करना पड़ेगा और सकारात्मकता को अपनाना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा कहा है आपने जुल्फी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। एक मैसेज जुड़ गया, एक और मेरे पास पहुंच गया है और इस मैसेज के जरिए जुड़ चुके हैं हमारे साथ आज की सुबह बबलू जी। ये लिखते हैं, हेलो जी, मेरा नाम बबलू शर्मा है और इस वक्त मैं आपको मुरादाबाद में सुन रहा हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है, किसी काम से हम यहाँ पर आए थे लेकिन अचानक से आपका रेडियो जुड़ा, कनेक्ट हुआ, हम इससे जुड़े, हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद बबलू जी। हेलो नमस्कार, सुप्रभात, आप कैसे हैं? हाय, मेरा नाम अमनदीप है, गुड मॉर्निंग अमनदीप। और ये लिखते हैं, आज के दिन के धीरो मंगल शुभकामनाएं आनंद जी आपको, सुप्रभात जी, आपको भी बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। धन्यवाद जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। आगे बढ़ते हैं श्रोताओं, बात कर लेते हैं 5 जून की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, क्या कुछ खास रहा आज के दिन। तो आपको बताते चले, आज ही के दिन सन 2005 में ताइवान ने अपनी पहली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया था श्रोताओं, आज ही के दिन। और आपको बता दें, हर दिन का इतिहास बहुत ही खास और बहुत ही स्पेशल होता है, इसीलिए आज का दिन भी बहुत ही सारी चीजों के लिए बहुत फेमस है। बात करें आज के दिन में और क्या स्पेशल रहा है, तो वहीं आपको बता दें, अमेरिका ने भारत व चीन की निगरानी सूची में जो है इसको डाला था आज के दिन। और आज के दिन 2017 में सबसे भारी रॉकेट JSSLV Mark 3D1 का सफल परीक्षण हुआ था श्रोताओं, आज के दिन परीक्षण आज के दिन हुआ था। और बाकी आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज और भी तमाम सारे दिवस मनाए जाते हैं, लेकिन उससे भी पहले आज 5 जून को 1972 में मुख्यमंत्री, हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री CM साहब है, उनका आज बहुत ही स्पेशल दिन है, बहुत ही खास दिन है, आज के दिन उनका जन्म हुआ था। हाँ जी श्रोताओं, 5 जून 1972 में हमारे CM साहब योगी आदित्यनाथ जी का आज जन्मदिन हुआ था। तो हमारे पूरे FM मुरादाबाद परिवार की ओर से, हमारे लिसनर्स की ओर से, हमारे CM साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके जन्मदिन की। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के राज्य के 21वें मुख्यमंत्री हैं श्रोताओं, आज के दिन इनका जन्म हुआ। रमेश कृष्णन 1961 में जन्म हुआ, भारत के प्रसिद्ध टेनिस प्रशिक्षक और पूर्व टेनिस खिलाड़ी हैं श्रोताओं, इनका भी जन्म हुआ आज के दिन। तो श्रोताओं, ये थी आज के दिन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपके साथ हमने साझा करी। और आज और भी कुछ बहुत ही खास और महत्वपूर्ण दिन मनाए जाते हैं, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि आप भी अपने संदेश हम तक पहुंचाएं और हमारे साथ जरा जुड़ जाएं, इस श्रृंखला में, इस कड़ी में शामिल हो जाएं। 9837896896, थोड़ी सी देर में 9 बजे हम बताएंगे आज का दिन क्यों इतना स्पेशल है जिसके विषय में मैं और आप मिलकर बातें कर रहे हैं। थोड़ी देर में जब लौट कर आएंगे तो डेफिनेटली बात करेंगे, आपके हिम्मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए। आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो बिल्कुल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9837896896, दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर 9837896896, ये नंबर है मेरा जिसके जरिए आप मेरे साथ सीधा कनेक्ट हो सकते हैं। आज सुबह हमें इंतजार है आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस का। एक बेहद ही खूबसूरत ट्रैक, एक बहुत ही ब्यूटीफुल गाना निकाल दिया है मैंने आपके रेडियो सेट पर, लता मंगेशकर, उदित नारायण साहब की।

0: तमाम सारे और भी सिंगर्स हैं जो इस गाने में आवाजें दे रहे हैं, तो आप जरूर सुनिए, आपको बहुत आनंद आएगा। ये ट्रैक सुन के म्यूजिक है जतिन ललित साहब का, लिखा है आनंद बख्शी साहब ने। मोहब्बती फिल्म का बहुत ही बेहतरीन गाना। फ्राइडे की सुबह भैया, फ्राइडे की जो मॉर्निंग है, फ्राइडे की जो सुबह है, इसको और भी बेहतरीन और ताजा तरीन बना रहे हैं।
1: दार उनका होता है।
0: आपके संदेश लगातार मुझे मिल रहे हैं, उससे पहले बात कर लेते हैं आज के मौसम की। 29 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है अभी वेदर। बात करेंगे एयर क्वालिटी की, थोड़ी सी एयर क्वालिटी चेक कर लेते हैं। तो अभी आज की जो एयर क्वालिटी है वो ठीक ठाक ही दिख रही है यार मेरे को। और बाकी ह्यूमिडिटी की बात करें तो आज ह्यूमिडिटी 75% दिखा रहा है। हवाएं कितनी तेज चलने वाली है, 8 किलो प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। तो यानी कि जो मौसम है बिल्कुल ओके ओके तो रहेगा, लेकिन हवाएं आपको थोड़ी ज्यादा मिलने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको ऐसे ही खूबसूरत गीतों से और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन से रूबरू कराते रहेंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पर।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना। सुबह सुबह रेडियो ऑन ना करने से पहले
2: माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। माँ
1: अरे तो भाई चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले।
2: माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: तो भाई साहब आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यूनिंग कीजिए आपकी शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
3: क्या बात है सर, क्या बात है सर।
4: हाय दयन एनर्जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
5: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं बाराती भी सजने आते हैं।
6: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
5: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
7: स्किन एलर्जी मस्त से नाखून बालों की समस्या टैटू हटाना कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386।
8: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या? क्या
9: था मेरी कसम,
8: मिस कर दिया तो रीलोड।
10: चाय चाय चाय
8: बिंदास मॉर्निंग। मॉर्निंग्स आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।

वेलकम बैक की वंस अगेन तीसरी घंटे की शुरुआत. दिस इज माई लास्ट आवर लेडीज एंड जेंटलमैन. 9:04 हो गए हैं आज फ्राइडे मॉर्निंग में. आपके साथ है आरजे आनंद. ढेर सारे श्रोता भी जुड़ चुके हैं मेरे साथ. थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए. दोस्तों आज बहुत ही स्पेशल दिन है जिसके बारे में थोड़ी देर पहले भी मैंने जिक्र किया था. आज हम सेलिब्रेट करते हैं विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड एनवायरमेंट डे. हर साल 5 जून को मनाया जाता है. बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है. हम अपने एनवायरमेंट को बचाने के लिए क्या कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं, कभी सोचा है? हम अपनी धरती माँ को बचाने के लिए क्या स्पेशल करते हैं? अपने घर में पानी को सेव करने के लिए हम क्या करते हैं? कभी हमने ध्यान दिया है कि जब लोग पेड़ काटते हैं तो हम उनकी तरफ नहीं बढ़ते हैं, उन्हें रोकते नहीं हैं, उन्हें टोकते नहीं हैं, और उसके बाद वही शुद्ध हवा जब हमें नहीं मिलती है तो हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. लेडीज एंड जेंटलमैन, आज 5 जून सिर्फ 5 जून नहीं है, आज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे नहीं है, आज वो दिन है जिसपे मुझे आपको हम सभी को आवाज़ उठाने की जरूरत है और एक्शन लेने की जरूरत है. श्रोताओं, आज का दिन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है. आज 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, तो अपने एनवायरमेंट को अच्छा रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए अपना कॉन्ट्रीब्यूशन आप कैसे देते हैं, कैसे अपने एनवायरमेंट को और हेल्दी और बेहतर से बेहतरीन बनाया जा सकता है, आज की सुबह आप मुझे मैसेज करके जरूर बताइएगा. और हाँ, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, आपके बचपन का वो कौन सा पेड़ है जो आज भी आपकी यादों में बसा है? प्लीज टेल अस 9837896896. आज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के मौके पर आपके घर के आसपास कौन सा पेड़ है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है और क्यों पसंद है, आप मुझे ये भी बताइएगा. मैसेज करिएगा 9837896896. बाकी अपने एनवायरमेंट को हेल्दी रखने के लिए आप क्या करते हैं, अपने एनवायरमेंट को सेफ रखने के लिए आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? भाई मैं तो कहता हूँ, देखिए घरों में आजकल गर्मियों की वजह से कूलर्स हम लोग बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें बहुत सारा पानी हम लोग भरते हैं, उस पानी को हम रिस्टोर करने की जगह बाद में वेस्ट कर देते हैं. उस पानी को हम छोटे छोटे गमलों में यूज़ कर सकते हैं, पेड़ पौधों के लिए उस पानी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, घर में जब भी अक्सर बारिश होती है तो कितना सारा पानी जो है हमारी छतों पर भर जाता है, वाटर लॉगिंग हो जाती है, हमारे टैंकों में भर जाता है, इवन कई बार बाहर जो रखे होते हैं आपके आपकी बाल्टी, आपके जो भी मग्स होते हैं उसमें भी भर जाता है, वो पानी भी आप इधर उधर वेस्ट कर देते हो. तो उन पानी को सेव करके रखिए, बहुत ज़रूरी है. अपने एनवायरमेंट को, अपने नेचर को बचाना है तो हमें अपनी प्रकृति से प्यार करना पड़ेगा. श्रोताओं सुन रहे हैं आरजी आनंद को. लेडीज एंड जेंटलमैन, आप मुझे व्हाट्सएप करके बताइएगा आप अपने एनवायरमेंट को हेल्दी रखने के लिए और अपने एनवायरमेंट को सेफ रखने के लिए, बचाने के लिए क्या करने वाले हैं, क्या स्पेशल कंट्रीब्यूशन आप देते हैं. 3 टिप दूंगा जिससे करके आप अपने एनवायरमेंट को और भी अमेजिंग बना सकते हैं. कौन कौन सी वो 3 टिप्स है आप तक पता लगेंगी, आपको जरूर पता लगेंगी, आप तक जरूर पहुंचेंगी. स्टेशन ऑफ द नेशन पर आप जुड़ चुके हैं आपके शहर के फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 FM पर आरजे आनंद के साथ. देखिए कुछ श्रोता साथी मेरे साथ जुड़े हैं लेकिन मैं अभी तो नहीं उनके मैसेज को शामिल कर पा रहा हूँ, लेकिन थोड़ी देर में आऊँगा तो ज़रूर उनके संदेश को मैं शामिल करूँगा इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पर. उससे पहले एक बेहतरीन गाना सुनेंगे, इसी को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पर. आप कहीं नहीं जाएंगे, रेडियो की सुई बिल्कुल नहीं घुमाएंगे, सुनते रहेंगे आरजे आनंद को. बातें वही हो रही हैं जो आपका दिल चाहता है, दिल से दिल तक वाली. और क्या खास है आज की तारीख में, डेफिनेटली आपको बताऊंगा थोड़ी सी देर में. फिलहाल के लिए गुलाबी सा गाना एंजॉय कीजिए फ्राइडे मॉर्निंग में. गुड मॉर्निंग.

0: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
1: अरे बेटा बस थोड़ी दूरी तो जाना है।
0: पर पापा।
1: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
2: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
3: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।
4: मैं पहुंच गई हूँ।

आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को। भैया मौसम विभाग की तरफ से ये भी अपडेट है कि भैया कल शाम से तो मौसम गड़बड़ाया ही था हल्का फुल्का, लेकिन फिर ठीक हो गया था, लेकिन आज भी बारिश वारिश आने की संभावना बताई जा रही है। तो ऐसे में अपना ख्याल आपने तो रखना ही है। बाहर का मौसम बहुत ही औसम हो गया है फिलहाल। आपको कैसे लग रहा है बाहर का मौसम? एक फोटो जरूर आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं आज के वेदर की। एक पिक्चर क्लिक करके भेजिए जरा मुझे 9837896896, दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर। आप गाड़ी में अगर हैं तो छोटी सी फोटो भेजिए ना बाहर के मौसम की। भाई कैसा हो रहा है बाहर का वेदर ये मेरे को जरा बताओ आप। मैं बाहर, मेरे स्टूडियो में कोई विंडो नहीं है जहाँ से मैं देख पाऊँ बाहर का मौसम कैसा है, लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ बादल छाए हुए नजर आ रहे हैं। क्या सही बोल रहा हूँ मैं? पिक्चर शेयर करो यार। फिलहाल अगर बारिश वाला माहौल बन गया तो ये गाना फील करते हुए आगे बढ़ो, गाड़ी चलाते रहो और हाँ वॉल्यूम बढ़ा के सुनो यार। आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को, फ्राइडे की सुबह है, गुड मॉर्निंग।

यार अब कोई इतनी प्यार से बुलाएगा तो मुझे आना पड़ेगा। हाय गुड मॉर्निंग है, वेलकम बैक है वंस अगेन, यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। आप सुन रहे हैं आरजे आनंद के साथ लेडीज एंड जेंटलमैन ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6। देखिए बहुत सारे श्रोता मेरे साथ जुड़ गए हैं आज की सुबह, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं, हमें दुर्गेश जी कल्याणपुर से लिखते हैं, आपका शो बहुत ही अच्छा लग रहा है आनंद जी, मुरादाबाद से मैसेज कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग, हाय गुड मॉर्निंग, ये मुझे शिखा ने मैसेज किया है। हाय आनंद, कैसे हैं आप? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ शिखा जी। शिखा जी लिखती है, आनंद बाहर वेदर ठीक ठाक है, हल्के हल्के बादल हो रखे हैं, मौसम बहुत ही औसम है, लेकिन हवाएं भी अच्छी चल रही हैं, बाकी तेरा शो सुन के मजा आ रहा है। थैंक यू शिखा जी, थैंक यू वेरी मच। एक संदेश मेरे पास पहुंचा है सहारनपुर से, हमारे रेगुलर लिस्टनर हैं जॉन रोजी पल विलीस लिखते हैं, आजकल लोग सही के साथ खड़े नहीं होते, बल्कि वो ये देखते हैं कि किस पक्ष से बनाकर रखना है फायदेमंद होगा। सच्चाई आपकी बात में। हाय गुड मॉर्निंग, माय नेम इज जॉन रोजी पल विलीस, इनकी पूरी फैमिली के नाम भी इंक्लूड करते हैं, लिखते हैं हैव ए नाइस डे आनंद, स्टे ब्लेस एंड बी सेफ, थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स, और लिखते हैं हमारी ओर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। कभी कभी बुरा वक्त आपको अच्छे लोगों से मिलवाने के लिए आता है, 100% सर इस बात में मैं बड़ा बिलीव करता हूँ। रिहाना जुड़ चुकी है मेरे साथ, गुड मॉर्निंग पहुंचाती है, और हमारे साथ इसी बीच जुड़ चुके हैं एक और हमारे प्यारे से श्रोता, इनका नाम है कमल। हाय गुड मॉर्निंग कमल जी, एक संदेश पहुंचा है सर, बाहर का मौसम बहुत औसम है, आपको सुन के बहुत ही मजा आ रहा है आनंद जी, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच, आपने अपना नाम लिखना था, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तनुश्री लिखती हैं, आनंद जी अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए मैं सिर्फ इतना कर सकती हूँ कि मैं महीने में एक बार एक पेड़ लगा सकती हूँ और उसकी देखरेख भी कर सकती हूँ, और हमें सबको करनी चाहिए, क्या बात है, वेरी नाइस। एक मैसेज पहुंचा है, गुड मॉर्निंग कैसे हाल चाल है, हाय दिस इज मी तरुण, हाय तरुण गुड मॉर्निंग, ये मुझे मैसेज करते हैं गायत्री नगर से, लिखते हैं आनंद जी देखिए जब भी हमारे घरों में पानी जमा हो जाता है कहीं पर, तो मैं उस पानी को रिस्टोर करता हूँ और बाद में उसी पानी को मैं अच्छे से अपने पेड़ पौधे के लिए इस्तेमाल करता हूँ, मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है, वेरी नाइस तरुण, बहुत ही बढ़िया यार, बहुत अच्छा लगा मुझे यार आपका जवाब, थैंक यू सो मच। एक मैसेज पहुंचा है, गुड मॉर्निंग आनंद कैसे हैं आप, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, आई एम वेरी हैंडसम, ये मैसेज मेरे पास आया पल्लवी का, ये लिखती है गुड मॉर्निंग, मैं लाइन पार से मैसेज कर रही हूँ, और आनंद जी मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरा फेवरेट पेड़ जो रहा है बचपन से ही, जिसको मैं देखती हुई आई हूँ, वो मुझे बहुत पसंद है, क्या बात है। इन्होंने लिखा है पीपल का पेड़ मुझे बहुत अच्छा लगता है, और पीपल के पेड़ हमारे घर के पास वाले मंदिर में था और बहुत ही विशाल पेड़ है, और अभी भी जब भी मैं उस पेड़ को देखती हूँ फ्लैश बैक में चली जाती हूँ, क्योंकि हम उस पेड़ की पूजा भी करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वेरी नाइस। किसी ने लिखा है मुझे तुलसी का पौधा बहुत पसंद है, आनंद जी गुड मॉर्निंग, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के मौके पे इतना ही कहना चाहती हूँ कि पेड़ लगाओ और उनकी रक्षा भी करो, वेरी नाइस। आपके बचपन का कौन सा वो पेड़ है जिसको देख के आपकी यू नो यादें ताज़ा हो जाती हैं, कौन से पेड़ पे आप सबसे ज़्यादा चढ़े हो बचपन में? मेरे घर के आंगन में ताया जी के यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा नीम का पेड़ था, हमारे मतलब एक्चुअली दिस इज जॉइंट फैमिली, तो हमारे घर के बीच सेंटर में लगा हुआ था एक नीम का पौधा था शायद, हाँ आई थिंक वही था, वो बहुत बड़ा सा पेड़, मतलब उस पर कभी कभी हम चढ़ के बैठ जाते थे, खेलते भी थे इनफैक्ट हम लोग उस पेड़ के ऊपर, झूले वूले भी लगते थे, तो और एक जस्ट हमारे बराबर में ही हमारे घर के बराबर में एक बहुत विशाल एक पिलखन का पेड़ करके आता, वो पेड़ भी खड़ा हुआ था बॉस, वो पेड़ भी जब भी मैं देखता हूँ ना आय हाय हाय, एक तो गर्मी में उनके नीचे बैठना बड़ा आनंद की अनुभूति देता था, इनफैक्ट हमारे घर में भी उनके कुछ पत्ते उनकी जो पत्तियाँ थी वो आ जाती थी, मतलब ठंडक का एहसास मिलता था यार, और वो पेड़ जब भी मैं देखता हूँ फ्लैश बैक में चला जाता हूँ। बाकी अपने इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर आप कूलरों में पानी जमा कर रहे हैं तो उस पानी को आपको रीस्टोर करना है, उस पानी को आपने सेव करके बाद में यूटिलाइज करना है अपने प्लांट्स के लिए, बाकी आप अपने घरों में जो भी आप फ्रूट्स खाते हैं, जो भी आप सब्जियों के छिलके छीलते हैं, उनको आपने इधर उधर नहीं फेंकना, एक मिट्टी का पात्र आप लेकर आ सकते हैं, उसमें कुछ मिट्टी डालिए, उसके अंदर ही वो छिलके फ्रूट्स के छिलके जो भी आप बीज हैं जो भी छिलके हैं या जो भी आप सब्जियों के फ्रूट्स के छिलके उन सबको उसमें डालना शुरू कीजिए, ऊपर से थोड़ी मिट्टी डालिए, वो आपका एक बहुत ही बढ़िया नेचुरल ऑर्गेनिक खाद बनेगा, उस खाद को आप अपने गमलों के लिए यूज़ कर सकते हैं, है ना कमाल का आइडिया। आपके घर में जो भी आप गार्डनिंग करते हैं, पौधे लगाते हैं, जो भी अपने आसपास आप पेड़ लगा रहे हैं, छोटे छोटे पौधे लगा रहे हैं, आप उस खाद को उसमें डाल सकते हैं और वो आपको नेचुरल और ऑर्गेनिक खाद मिल जाएगी आपके घर में ही, और वो जो फ्रूट्स के छिलके हैं, जो सब्जियों के छिलके हैं, वो भी वेस्ट नहीं होंगे, वो भी हमारे एनवायरमेंट में सेफ हो जाएंगे। तो ये आप कर सकते हैं, इसके अलावा आप जो है एक चीज़ और कर सकते हैं जिसको करके अपने एनवायरनमेंट को और भी हेल्दी और सुरक्षित और बढ़िया बना सकते हैं। बाकी 20 जून को मुरादाबाद में एक बहुत ही बढ़िया चीज़ होने वाली है, क्या हो रहा है बताऊंगा अभी आपको,
जरासी धीरवी से स्टेशन ऑफ द नेशन पे आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए आरजे आनंद के साथ और सुनते रहिए आपके शहर का मॉर्निंग मैगजीन शो। दिस इज एफएम मुरादाबाद 89.6, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। वक्त हो गया है 9:19 हो रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, अभी तो हो रहे थे यार 19 इतनी जल्दी। ओ माई गॉड, देखो टाइम का ना पता नहीं चलता यार। खैर क्या ही कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। 9:21 स्टूडियो क्लॉक में वक्त हो रहा है। एक फोटो मेरे को किसी ने शेयर किया है, इन्होंने नाम नहीं लिखा है। बाहर का मौसम बहुत ही औसम हो रहा है। ये देखिए दिल्ली रोड की तरफ हूँ मैं इस वक्त और मौसम बहुत ही औसम है। आनंद जी क्या बात है। नंबर की फोटो से 112, प्लीज अपना नाम भी लिख दो यार। एक बहुत ही फैबुलस ट्रैक सुनते हुए आगे बढ़ेंगे, घर आजा सोनिया, बहुत ही अच्छा गाना है। वॉल्यूम बढ़ाइए, सुनते रहिए आरजे आनंद को।

0: सुबह सुबह रेडियो ऑन ना करने से पहले
1: माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। माँ
0: अरे तो भाई चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले।
1: माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है।
0: तो भाई साहब आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यून इन कीजिए आपकी शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
2: क्या बात है सर, क्या बात है सर।
3: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
4: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
5: कॉल 8826213131।
6: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
7: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
8: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
7: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
9: अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आज आनंद के साथ, ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम।

मुझे तो ये लग रहा है कहीं ये हवाएं मुझे उड़ा के तो नहीं ले जाएंगे। वेलकम बैक है, गुड मॉर्निंग है, आनंद के साथ आपने ट्यून इन किया है एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो 9:32 9:32। शुक्रवार की सुबह, शुक्र है कि आज शुक्रवार है। हमारी प्रकृति कितनी खूबसूरत है यार, हमारा एनवायरमेंट ऑलरेडी बहुत ही अच्छा है। देखिए, पानी को हम गंगा माँ कहते हैं, धरती को हम धरती माँ कहते हैं, हमारे पूर्वज धरती को तो प्रणाम करते थे, चरण स्पर्श करते थे, है ना। और हमारे घर में जो एक पौधा लगा होता है जिसको हम ईश्वर का रूप देखते हैं, जिसकी हम पूजा अर्चना करते हैं, वो है तुलसी का पौधा। तो हमारे आसपास हमारी प्रकृति, हमारा जो नेचर है ना, उससे पहले हम नेचर को रिस्पेक्ट करते हैं। नेचर से प्यार करने के साथ साथ उसकी इज्जत करना भी हमारा कर्तव्य है ना। धरती माँ को हम धरती जी को धरती माँ कहते हैं, उससे हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, फ्रूट्स, फल, तमाम सारी चीज़ें। तो आज का ये दिन बहुत ही स्पेशल है। आज हम भी एक इनिशिएटिव ले सकते हैं कि अपने एनवायरमेंट को हार्म नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमें उन चीज़ों का प्रयोग करना है जो हमारे एनवायरमेंट के लिए अच्छी हो। प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करना है ना, जितना हो सकता है नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करना है, पेड़ पौधों को लगाना है, अपने एनवायरमेंट को अच्छा बनाना है। जब हम अपने एनवायरमेंट के लिए सोचेंगे ना, तो ये एनवायरमेंट भी हमें जो हैप्पीनेस देगा ना, वो हम इमेजिन नहीं कर सकते। क्योंकि जो शुद्ध हवा है, आज मुझे हमें हम सभी को एक शुद्ध हवा की ज़रूरत है। आई नो हमारे मुरादाबाद बहुत अच्छा है, बहुत ही प्यारा सिटी है, बहुत ही खूबसूरत शहर है, लेकिन यार फिर भी अगर हम अपनी कोशिशें कंटिन्यू रखेंगे तो हमारा शहर और खूबसूरत हो सकता है ना। लेडीज एंड जेंटलमैन, आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें 54 इयर्स के हो गए हमारे सीएम साहब, ये 54 साल के हुए हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे सीएम योगी जी। आज उनका हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज 5 जून शुक्रवार को उनका जन्मदिन हम मना रहे हैं। तो हमारे पूरे एफएम परिवार की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को उनके जन्म उत्सव की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। श्रोताओं, अगर आज की तारीख में आप भी अपना जन्मदिन मनाते हैं तो आपको भी ढेरों ढेरों बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज फ्राइडे है, कौन सी फिल्म रिलीज हो रही है अगर आपको ये जानना है तो जरूर हम आपको बताएंगे। बाकी उससे पहले आपकी हेल्थ पर बात कर लेते हैं, थोड़ी सी आपकी हेल्थ के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है जो बताना आपको बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर आप इन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो आप जो है हेल्दी रहेंगे। और ये प्राकृतिक ने हमें दी है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मौके पे मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आप चुकंदर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके खून के लिए, आपकी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन है उसको बढ़ाता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है और आपके शरीर में खून की मात्रा को बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करता है। तो अपने डाइट में आप चुकंदर का इस्तेमाल कीजिए, अनार का आप सेवन कर सकते हैं, काले अंगूर बहुत ही अच्छे होते हैं, आपकी बॉडी में ब्लड की कमी को दूर करता है अनार, कटा हुआ चुकंदर अगर आप इसको अपने डाइट में लेते हैं, और काले अंगूर, ये बहुत ही ज़बरदस्त हैं आपकी हेल्थ के लिए। और आपको अगर आपको अपने दिमाग को तंदुरुस्त और ताकतवर बनाना है तो आपको जो है क्या करना है, अखरोट को अपनी दिनचर्या में शामिल करना है, आप मशरूम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आपके दिमाग को थोड़ा हेल्दी बनाती हैं। अगर आपको सेल्स कोशिका यानी सेल्स की मरम्मत और सुरक्षित उनको रखना है तो आप जैतून का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, चाय पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑफकोर्स अगर आप चाय पीते हैं, लेकिन आपको बहुत क्वांटिटी में चाय नहीं लेनी है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि आपका पेट स्वस्थ रहे, आपका हाजमा तंदुरुस्त रहे, आपको रोगों से लड़ने की ताकत मिले तो आप दही ज़रूर अपने डाइट में शामिल कीजिए। आप एक फ्रूट्स में बनाना ज़रूर ले सकते हैं, ये भी बहुत ही बढ़िया रहता है। अपने दिल को मजबूत और हेल्दी बनाने के लिए आप बादाम और डार्क चॉकलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लीवर को बढ़िया करने के लिए और शरीर की गंदगी निकालने के लिए सबसे पहले भैया खुद को हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। आप लेमन का इस्तेमाल कर सकते हैं, नींबू पानी बहुत ही बढ़िया होता है आपकी पूरी ऑल ओवर बॉडी के लिए। तो आप लेमन जूस इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी एक ग्लास नींबू का पानी अगर आप पीते हैं तो ये भी आपको बहुत सारी चीज़ों से बचाता है। देखिए श्रोताओं, ये छोटी छोटी बातें हैं, अक्सर हम इनको अवॉइड करते हैं, बस इन्हीं को जो है आपने इस्तेमाल करना है। और आगे बढ़ते हुए अब हम बस इतना ही कहना चाहेंगे, आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। रोज चलने के फायदे अगर आप जानोगे ना तो आप हैरान रह जाओगे। थोड़ी देर में लौट कर आएंगे तो इस पर चर्चा करेंगे। एंड ट्रेन में अब खाना अगर गड़बड़ हुआ तो AI पकड़ेगा, कैसे, क्या है ये पूरी इन्फॉर्मेशन, ये भी आपको पता लगेगी।
जरा सी में लौट कर आता हूँ, उसके बाद बताता हूँ इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप जुड़े रहिए आनंद के साथ, सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। आज मैं पूछ रहा हूँ अपने इन्वायरमेंट को हेल्दी बनाने के लिए आप क्या करते हैं, आपका बचपन का कौन सा पेड़ फेवरेट है जिसको देखकर आप बड़े हुए हैं, जो पेड़ आज भी आपको फ्लैशबैक में ले जाता है जब आप देखते हैं, तो कौन से पेड़ पर आप सबसे ज्यादा चढ़े हो, यही मैं आज आपसे पूछ रहा हूँ। मैसेज करके आपने मेरे को बताना है 9837896896। स्टूडियो का नंबर तो मैंने आपको बता ही दिया है, इस नंबर पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं आज की सुबह 9837896896। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, 9:37 हो गए, आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। मेरे साथ बोलेंगे आप, बजाते रहिए, ये देखिए आपने बोल दिया गुनगुनाते रहिए, वेरी नाइस। यही चीजों को जो है आपने नोट करके रखना है और बाकी इसी स्टेशन पर जो है आपने टिके रहना है, क्योंकि ये है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। फिर से बोलेंगे हम, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए, और ये गाना सुनते हुए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक है, बहुत ही खूबसूरत गाना है, और ये गाना आपको बहुत ही आनंद देने वाला है, बहुत प्यारा ट्रैक है। चलो जी अब सुनवाते हैं।

0: आप सर दर्द
1: बसंती इनके सामने मत नाचना।
2: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना। समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7060022430।
3: आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
4: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
5: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
4: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
6: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

0: अरे मुंडा फॉर्म।
1: आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 18.6 आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। ये वो स्टेशन है जो आपको जोड़ता है दिल से दिल तक। बंदे राम आनंद है। शुक्रवार का दिन है, फ्राइडे मॉर्निंग है। एब्सोल्युटली आज 5 जून हो गई है यार। आज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाया जाता है, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस। आपसे पूछ रहा हूँ, आपके बचपन का कौन सा फेवरेट पेड़ है जिसको देख के आप फ्लैश बैक में चले जाते हुए सबसे ज्यादा चढ़े हो, जिस पेड़ पर आप, वो कौन सा पेड़ था जरा बताओ। ये गाना सुनो, मैं थोड़ा डांस करके आता हूँ, आप भी वॉल्यूम बढ़ाओ, सुनते जाओ।

क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन गाना। और इस गाने के बाद वेलकम बैक यू वंस अगेन। आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6, बातें वही जो आपका दिल चाहता है सुनना। आगे बढ़ते हुए आप सभी का दिल से थैंक यू करना चाहेंगे। बड़े सारे संदेश पहुंच गए हैं, 9:46 भी हो गया है स्टूडियो की घड़ी में। मेरे पास किसी ने बाहर का वीडियो भी शेयर किया है। हाई गुड मॉर्निंग आनंद, हाउ यू? आई एम गुड। एंड मेरे पास मैसेज आया है ये अवधेश चौहान का, साथ में इन्होंने लिखा है अवंतिका कॉलोनी MDA से मैसेज कर रहा हूँ। आनंद जी, जामुन का पेड़ बचपन में बहुत पसंद था और आज भी मुझे बहुत पसंद है, और मैंने अपने जीवन में काफ़ी जामुन के पेड़ लगाए हैं और आज भी मुझे जो है वो बहुत खुशी देते हैं और उसके फल मुझे आज भी मिलते हैं। वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया, सो ब्यूटीफुल। मैं अपनी बुआ जी के घर जाता था, उनके घर पे एक जामुन का पेड़ खड़ा था, एंड जब मॉनसून आते थे जामुन जो उस टाइम पे बड़ी आ जाती है ना, ब्लैक वाली जामुन, हो उस पे चढ़ के जामुन खाना भाई साहब गजब। इवन मैं तो बहुत बार गिरा भी हूँ यार पेड़ों से। हाय गुड मॉर्निंग, संदीप सागर मेरे साथ जुड़े हैं, ये लिखते हैं गुड मॉर्निंग सर, नीम का पेड़ जिसे देखकर मैं बड़ा हुआ और वो मेरा बहुत फेवरेट वाला है। आगे बढ़ते हैं, गुड मॉर्निंग आनंद जी, आप कैसे हैं? आई एम वेरी गुड सर, आई होप आप भी अच्छे होंगे। नंबर के 4 डिजिट हैं इनके, 2503। हेलो सर, गुड वाला मॉर्निंग, आप कैसे हैं? नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग सभी सुनने वालों को, और आज पर्यावरण दिवस की सभी को शुभकामनाएं, आपको भी हैप्पी वर्ल्ड पर्यावरण दिवस। देखिए आज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे है, एंड ये लिखते हैं हम सभी को जो है, हम सभी देशवासियों को पेड़ जरूर लगाने चाहिए और अपना ख्याल रखना चाहिए। ललिता जी थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये लिखती हैं कि आपका शो हम रेगुलरली सुनते हैं, मैसेज तो नहीं कर पाते लेकिन बहुत आनंद आता है। मैंने बचपन में नीम का पेड़ और अमरूद के पेड़ और साथ में ये लिख रही हैं गुलहर के पेड़ लगाए थे और मैंने वो देखे भी हैं और आज भी मैं जब उत्तराखंड जाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। क्या बात है, वेरी गुड। और इनको इन्होंने पेड़ भी लगाए हैं, लेकिन यार नीम का पेड़ तो अलग ही होता है, गुलहर का पेड़ तो फूल का पेड़, वो भी बहुत बड़ा हो जाता है। देखिए बचपन में सबसे ज़्यादा मैंने आम के पेड़ और अमरूद के पेड़ पे हमने बहुत खेल खेले हैं और हम बहुत ज़्यादा उन पेड़ों पे चढ़ते थे। अरे वाह क्या बात है, आम के पेड़ की तो बात ही अलग है। शबीना खान जुड़ गई हैं अहमदनगर से, लिखती हैं आनंद सर गुड मॉर्निंग, कैसे हालचाल हैं? ये लिखती है कि अपने बर्थडे पर हमें एक छोटा सा पेड़ डेफिनेटली लगाना चाहिए और हमें उस पेड़ का ध्यान भी रखना चाहिए और अपने पर्यावरण को सेफ रखना चाहिए। बिल्कुल, और पर्यावरण को सेफ रखने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा पानी का बचाना। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू वाटर सेफ। आपको क्या करना है ना, आपने पानी को बचाना है। जितना हम पानी बचाएंगे वो पानी उतना अच्छा होगा, उतना बढ़िया होगा। पानी जितना सेफ होगा एनवायरमेंट उतना अच्छा होगा, है ना। पेड़ पौधों के साथ साथ पानी को भी बचाना है, अपने एनवायरमेंट को बचाने के लिए जो है पानी का सेफ करना भी बहुत ज़रूरी, क्योंकि आजकल पानी की वेस्टेज बहुत ज़्यादा है। मेरे पास मैसेज पहुंच गया है यहाँ पर, गुड मॉर्निंग, कैसे हालचाल हैं आपके? मौसम बहुत सुहाना हो रहा है। हेलो जी गुड मॉर्निंग, आपके लिए पराठा भेज दिया है, आप प्लीज़ खा लीजिएगा। ये उमा शंकर सिंह और अवंतिका अर्चित का मैसेज आ रहा है, रुद्रपुर उत्तराखंड देवभूमि से जुड़े हैं। एक बड़ी प्यारी सी फोटो शेयर की है कि देखिए

मौसम बदल गया, मेरे यहाँ सुहाना हो गया है वेदर। वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। इनके पिक्चर में मैं देख रहा हूँ आसपास का माहौल बड़ा खूबसूरत लग रहा है। वेरी नाइस। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, आप कैसे हैं? चमन लाल साहब जी, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। 9:49 हो गए दोस्तों स्टूडियो की घड़ी में। आप लोग भी बता सकते हैं आपका फेवरेट पेड़ कौन सा है। आज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिस पर हम आपसे ढेर सारी बातचीत कर रहे हैं इस स्टेशन ऑफ द नेशन पर। अब आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी है जो देनी है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें आज हम मनाते हैं। आज बहुत सारे और भी दिवस हैं जो हम सेलिब्रेट करते हैं, वो भी आपको फटाफट से बता देता हूँ इसी स्टेशन पर, क्योंकि आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो। कहेंगे एक बार फिर से मेरे साथ, बजाते रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे। इसको बोलने की आदत डाल लो यार। बहुत बढ़िया, एक मैसेज मेरे पास पहुंच गया है। हेलो सर, गुड मॉर्निंग, आपको सुनकर सच में बहुत आनंद आता है। और इस वक्त हम अपने ऑफिस निकल रहे हैं और आपको अपने फ्रेंड्स के साथ सुनते हुए जा रहे हैं। बहुत ही मज़ा आ रहा है, क्या बात है, थैंक यू सो मच यार। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं और हमारा शो इंजॉय कर रहे हैं। के एंड सुनिधि चौहान की आवाज, अनु मलिक साहब का म्यूजिक, बेहतरीन गाना निकाल दिया मैंने आपके रेडियो सेट पर। इसको सुनेंगे, अभी लौट कर आता हूँ इमीडिएटली। 9:50 हो गए हैं।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना। समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7066002430। अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
2: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
1: पर पापा।
2: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
1: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
3: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
1: मॉर्निंग। बिल्कुल जी, आप बिंदास मॉर्निंग सुन रहे हैं आरजे आनंद के साथ। और फाइनली मेरा जाने का समय हो गया है, बिकॉज जाएंगे नहीं तो आएंगे कैसे। और आज विश्व पर्यावरण दिवस पर हमने आपसे ढेर सारी बातचीत करी, बहुत सारे लोगों ने हमें अपनी अपनी प्यारी प्यारी बातें बताई, प्यारे प्यारे सजेशंस दिए। मैंने भी आपको कुछ टिप्स दिए हैं, आज अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया होते हैं और डेफिनेटली हमें और आपको फॉलो करना चाहिए। दोस्तों पर्यावरण दिवस से जुड़ी कुछ बातें। ये दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 1972 में की गई थी। श्रोताओं इसी दिन को वृक्षारोपण, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण से जोड़े गए और इसके साथ ही साथ कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। श्रोताओं ये दिवस हमें प्रकृति के संरक्षण और सतत विकास का एक संदेश देता है। तो ये आज का दिन अपने आप में बहुत ही स्पेशल है। हम तो इतना ही कहना चाहते हैं, आइए सब मिलकर पेड़ लगाएं और प्रण लें कि भविष्य को बेहतर पर्यावरण दें। अपने आसपास की चीज़ों से प्यार कीजिए, अपने प्राकृतिक से प्यार कीजिए, अपने आसपास के पेड़ पौधों से प्यार कीजिए और उनका स्पेशल ध्यान रखिए। जैसे हम अपना ध्यान रखते हैं, अपने आसपास की चीज़ों का ख्याल रखते हैं, वैसे ही हमें अपने आसपास के पेड़ पौधों का भी ध्यान रखना चाहिए, है ना। अपने आसपास के गार्डन में जब हम घूमने के लिए जाते हैं, पार्क में घूमने जाते हैं, तो वहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि कोई पेड़ सूखा है तो आप उसको पानी ज़रूर दीजिएगा। चलिए श्रोताओं आगे बढ़ेंगे। अभी एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपने मुझे इसका जवाब दिया तो हो सकता है आज आप बन जाएं मेरे शो के सुपरस्टार। एक बहुत ही खूबसूरत डायलॉग प्ले कर रहा हूँ, कौन सी फिल्म का है ये आपने आइडेंटिफाई करना है आज की सुबह। एंड आई एम श्योर आप इसका जवाब मुझे डेफिनेटली पहुंचा देंगे, ये डायलॉग कौन सी फिल्म का है। सो शुरू करें।
4: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं, ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: व्हाट्सएप करके बताओ जरा मुझे, ये जो वक्त है ना, वक्त जो हम आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा टाइम है। ये कौन सी फिल्म का डायलॉग है, फिर से सुनो।
4: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं, ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, बहुत ही कमाल का डायलॉग है और बहुत ही अच्छी स्टार कास्ट है। आई एम श्योर आप ये डेफिनेटली पकड़ लेंगे कौन सी फिल्म का डायलॉग है, बिकॉज मेरे लिसनर, मेरे जो श्रोता हैं बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा फिल्मी शिल्मी हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेशन रखते हैं, आई नो दैट। इसलिए आज की सुबह आपके लिए बहुत ही ईजी एक क्वेश्चन निकाल के लाया हूँ एंड आई एम रियली श्योर आप मुझे इसके जवाब ऐसे चुटकियों में दे दोगे, है ना। आज हमारे सीएम साहब का बर्थडे हम मना रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ जी आज 54 साल के हो गए, उनका बर्थडे मना रहे हैं हम अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का। ढेर शुभकामनाएं। और आपको थोड़ी देर पहले मैंने एक क्लू दिया था कि भैया हिंट दिया था कि अगर आप चलते हैं तो उसके फायदे होते हैं, यानी कि रोज चलने के फायदे। देखिए अगर आप एक मिनट चलते हैं तो इससे आपका रक्त प्रभाव बढ़ता है, 5 मिनट चलते हैं तो आपका मूड बेहतर होता है, 10 मिनट अगर आप वॉक करते हैं चलते हैं तो आपका तनाव कम हो जाता है, 15 मिनट अगर आप चलते हैं तो ब्लड शुगर घटती है, 30 मिनट अगर आप चलते हैं तो जो चर्बी है वो खत्म होने लगती है, 45 मिनट चलने से सोचने की आदत थोड़ी कम हो जाती है और 60 मिनट चलने से खुशी और जो खुशी के हार्मोन्स हैं वो बढ़ते हैं और आपकी बॉडी पूरी तरीके से अच्छी होती है, आपका बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बहुत बढ़िया होता है। एक अपडेट दे रहा था रेलवे स्टेशनों पर अब जो है ट्रेन में मिलने वाले खाने की क्वालिटी अब और भी बेहतर होगी, क्योंकि भैया आपको बता दें अब जो है AI कैमरों से जो है खाना बनाने की किचन पर सख्त निगरानी रखे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, अब AI कैमरे हैं जो अब हर एक चीज़ को फीचर करेंगे। निगरानी व्यवस्था को पहले से ज़्यादा मजबूत कर दिया गया है। इसके लिए बेस किचन में AI आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया गया है। इसके जरिए देश भर के किचन में बनने वाले खाने की प्रक्रिया राउंड द क्लॉक निगरानी उसकी की जा रही है। मतलब अब जो ट्रेन में आपके खाना आता है वो AI कैमरा पकड़ लेगा कि भैया आपके खाने में कोई मक्खी कॉकरोच और किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप आनंद के साथ हैं, सुन रही हैं आपके शहर का मॉर्निंग मैगजीन शो। कल हम आपको मूंग की दाल का एक डोसा बनाने सिखाते हैं, बड़ा हेल्दी सा, क्योंकि आज मैं ट्राई करूंगा, कल आपको बताऊंगा। अगर आज मेरा सक्सेसफुल बन गया ये डोसा, ये चीला, तो कल मैं डेफिनेटली आपको बनाना सिखाऊंगा, जिससे खाकर ना आपको बहुत सारा फायदा होने वाला, आपकी बॉडी फुल ऑन बढ़िया आपका साथ देने वाली, एनर्जेटिक रहने वाली। आज मैं ट्राई करने वाला हूँ, कल आपको बताने वाला हूँ। फिलहाल आपको बता दें नेटफ्लिक्स को जो है भैया पछाड़ दिया है। यूट्यूब बना है भैया सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला प्लेटफॉर्म, नेटफ्लिक्स से भी ज़्यादा नंबर वन पे आ गया है। दुनिया भर में रोज़ाना जो है सबसे ज़्यादा लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। अब नेटफ्लिक्स जो है ये भी पीछे हो गया है, यूट्यूब जो है अब सबसे आगे बन चुका है। टीवी से भी ज़्यादा देखे जाने वाला, नेटफ्लिक्स से भी ज़्यादा देखे जाने वाला बना है यूट्यूब। भाई जा कैसा पॉपुलर प्लेटफॉर्म जहाँ पर हर कोई अपना टाइम को स्पेंड करना चाहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैंने आज जो डायलॉग पूछा है उसका जवाब दीजिए। 10:02 हो गए, आनंद के साथ हैं आप, बस एक फाइनल लास्ट मौका है आपके पास, जल्दी से बताओ ये डायलॉग जो है वो कौन सी फिल्म का है, आइडेंटिफाई करना है।
4: ये जो वक्त है ना यार जो हम काट रहे हैं, ये बहुत अच्छा टाइम है, देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: व्हाट्सएप करके बताओ कौन सी फिल्म का ये कौन सा डायलॉग है। अगर आपने दिया सही जवाब तो आप बनेंगे ना मेरे शो के सुपरस्टार। फटाक से मुझे मैसेज करो 9837896896, ये मेरे स्टूडियो का नंबर है। आप कोई एक्सक्यूजेस या कोई बहाना मेरे को नहीं चलेगा बाबू मेरे को मैसेज करने का इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। चलो अभी गाना सुनने का फटाक से, इस गाने को सुनते हुए आगे बढ़ते हैं और जल्दी से लौट कर आते हैं इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो। हम भी कहते हैं, आप भी कहिए दिल से, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास। चलो जी ये गाना और भी खास।

0: अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।
1: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
2: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर, 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
3: कॉल 8826213131।
4: आवश्यक सूचना, 400 KB बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास UP कॉर्पोरेशन के मझोला 400 KB उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
5: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट TB, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।
6: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
7: हाँ मेरी कसम,
6: मिस कर दिया तो रीलोड।
8: चाय चाय चाय,
6: सुनिए बिंदास मॉर्निंग्स आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।

गुड मॉर्निंग है, शुक्रवार की सुबह है, शुक्र है कि आज शुक्रवार है। शुक्राना कीजिए उन दो लोगों का जो आपकी जिंदगी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, यानी कि आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके प्यारे दोस्त हो सकते हैं, आपके नेबर्स हो सकते हैं, आपके वो अच्छे लोग हो सकते हैं जिनके साथ आपको एक पॉजिटिव वाइब्स आती है। आप गॉड भी हो सकते हैं, जिनको आप बहुत दिल से मानते हैं, वो अल्लाह, गुरु भाई, गुरु खुदा, भगवान, जिसको भी आप मानते हैं, शुक्राना करना बहुत जरूरी है ना। तो अगर आज की सुबह आपके पास सब कुछ है, एवरीथिंग, शुक्राना कीजिए ना ऊपर वाले का, शुक्रिया अदा कीजिए। जो लोग आपको समय समय पे हेल्प करते हैं, आपका साथ देते हैं, आपको हर एक बुरे मुसीबत में आपके साथ खड़े होते हैं, आपको निकाल के बाहर ले आते हैं, उन लोगों का शुक्राना कीजिए। आगे बढ़ते हैं, कॉम्प्लीमेंट देना बहुत जरूरी है जिंदगी में।

0: और अभी फिलहाल आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को। आज की सुबह बहुत ही अल्टीमेट आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था, 10:09 हो गया, मैंने कहा था जरा बताओ कौन सी फिल्म का डायलॉग है।
1: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं, ये बहुत अच्छा टाइम है, देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
0: यही आपने जो है मेरे को मैसेज करके बताना था और तमाम सारे लोगों ने जो है मुझे मैसेजेस किए हैं, थैंक यू सो मच आपके मैसेजेस के लिए, आई एम सुपर हैप्पी। और अभी हमने एक लकी वन को शॉर्टलिस्ट किया है, आइए जरा उनसे बात करते हैं। जी नमस्ते, अपना नाम बताएं। सुप्रभात, रेडियो की वॉल्यूम कम कर दें सर अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज।
2: जी सर।
0: जी अपने बारे में बताएं, आपका नाम बताएं।
2: जी मेरा नाम संदीप सागर नाम है सर।
0: संदीप सागर कहाँ रहते हैं सर आप?
2: ग्राम सेहल।
0: अच्छा ओके, मुरादाबाद। अच्छा अच्छा ओके ओके। और बताइए भैया, सब बढ़िया चल रहा है जिंदगी में?
2: जी सब बढ़िया चल रहा है, आपकी दुआ है, आपका प्रोग्राम सुनते हैं।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, कैसा लगता है आपको प्रोग्राम?
2: सर बहुत अच्छा लगता है, हम तो रात को भी सुनते हैं आपका।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलिए बहुत अच्छी बात है। और सब घर परिवार में बढ़िया है सर?
2: जी सर सब बढ़िया है।
0: और बताइए मौसम कैसा हो रहा है बाहर?
2: मौसम तो सर बारिश का हो रहा है ऐसा लग रहा है
0: कि जैसे बारिश होने वाली है।
2: जी
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए सर, अच्छा जो मैंने अभी वो एक डायलॉग प्ले किया था वो कौन सी फिल्म का था, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? हेलो हेलो हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद कोई ग्लिच था। जी सर वो कौन सी फिल्म है? हेलो,
2: जब मैं मोटा हुआ।
0: जब मैं मोटा हुआ, ये कौन सी फिल्म है? या जब भी मैट मूवी का नाम आप बता रहे हैं?
2: हाँ जी सर यही तो है।
0: अच्छा नहीं, मेरे को शायद गलत सुनाई दिया। कोई बात नहीं सर। अच्छा अच्छा सर मुझे ये बताइए आप, हेलो
2: जी हेलो,
0: इसमें कौन सी हीरोइन है आप मुझे बताओ, करीना कपूर है या काजोल है? आपने पिक्चर तो देखी है ना?
2: ध्यान नहीं है, मैंने बहुत टाइम पहले देखी थी।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, आप नई फिल्में देखना पसंद करते हैं या पुरानी?
2: सर मैं देखने तो पुरानी करता हूँ।
0: अच्छा पुरानी करते हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन आपने जो मैसेज किया वो एकदम सही किया है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत बधाई हो। तमाम लोग आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं आप?
2: बस इतने कहना चाहते हैं आपका शो बहुत अच्छा लगता है।
0: अरे वाह क्या बात है, हमें भी बहुत अच्छा लगा जब आपने ये बोला। अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही जो है प्रोग्राम सुनते रहिए, ठीक है सर? नमस्कार भैया, थैंक यू सो मच। एब्सोल्युटली दिस इज द राइट आंसर, जब भी मैट इज द करेक्ट आंसर। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, बहुत सारे लोगों को ध्यान में नहीं था, लेकिन ये जब भी मैट मूवी का डायलॉग था।
1: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं,
0: करीना कपूर शाहिद कपूर
1: पिक्चराइजेशन, देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। इस डायलॉग को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे यार आप लोग? बिल्कुल कोई बात नहीं, होता है यार, बड़े बड़े शहरों में अक्सर छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। कोई नहीं, चलिए एक बढ़िया गाना छोड़ के जा रहा हूँ, 10:12 हो गए, फिर मिलेंगे इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। ऐसी कड़क बातों के लिए, कड़क जानकारियों के लिए सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। बहारुलहसन सिद्दीकी साहब जुड़ गए हैं मेरे साथ अमरोहा से। गुड मॉर्निंग जी, कैसे हालचाल है? शिखा जी वंस अगेन जुड़ चुकी हैं सही जवाब के साथ। मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी, डॉक्टर सैयद शारिक अली जी लिखते हैं, गुड मॉर्निंग जी आपका शो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो मच आपकी मोहब्बत के लिए। ये ईदगाह गेट से हमारे साथ जुड़े हैं शफी अहमद अंसारी, रईस दूल्हा अंसारी लिखते हैं, गुड मॉर्निंग हाउ यू आनंद जी, आज हम आपके ऑफिस आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए। अरे बिल्कुल स्वागत है आपका, इस्तकबाल करते हैं आपका, आइए ना। गौरव ठीलर जी नवीन नगर से जुड़ते हैं, लिखते हैं, हेलो आनंद जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, आपका जो कार्यक्रम है बहुत ही अच्छा लगता है, जानकारियां आप बहुत ही बेहतरीन लेकर आते हैं, और एफएम मुरादाबाद सुनने वाले सभी श्रोताओं को विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गौरव ठीलर जी नवीन नगर से आप जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुलदीप गुप्ता जी धौली बाराबंकी लखनऊ से जुड़े हैं, लिखते हैं, सर आपका जवाब हमें मालूम नहीं है। जब भी मैट मूवी का डायलॉग था, हेलो जी गुड मॉर्निंग, शाहिद एंड करीना पर पिक्चराइजेशन था ये डायलॉग, थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या है? मुझे आपका नाम नजर नहीं आ रहा है बॉस। इनके नंबर की 4 डिजिट है 3938। नूर साहब अगर आप हैं तो थैंक यू। गुड मॉर्निंग आनंद जी, कैसे हाल चाल है? जहाँ तक पेड़ पर चढ़ने की बात है तो मुझे मैंगो के पेड़ पर चढ़ना अच्छा लगता था, क्योंकि उसकी हाइट कम होती थी, उस पर हम बहुत ही अच्छे से चढ़ जाते थे। ऑल राइट, ये लिखते हैं, आम के पेड़ के अलावा हम किसी भी पेड़ पर चढ़ ही नहीं, हमसे चढ़ा ही नहीं जाता था। और जहाँ तक छाया की बात है तो क्या बात है यार, बहुत ही बढ़िया, ये बहुत अच्छा लिखते हैं रिजवान खान साहब। आपकी बातों से मुझे बहुत कुछ महसूस हो रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो लिखा। आज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के मौके पे आपसे बात कर रहे थे। बाकी लिखते हैं, सर मूवी तो देखी है लेकिन जवाब मुझे कंफर्म नहीं याद आ रहा है। कोई बात नहीं रिजवान जी, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। ललिता कश्यप जी सही जवाब के साथ जुड़ी हैं। विकी सागर जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, रेडियो वाला आनंद को गुड मॉर्निंग पहुंचा रहे हैं। कश्मीर से महराजुद्दीन जुड़े हैं, कुछ टेक्स्ट मैसेज आए थे लेकिन टाइम बहुत कम है इसलिए नहीं पढ़ पा रहा हूं, गाइस माफी चाहता हूं। और व्हाट्सएप भी आ रहे हैं धड़ाधड़। बारिश हो रही है आपके संदेशों की, लेकिन अभी के लिए इजाजत चाहेंगे। आपसे फिर मिलेंगे इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे, कल होगी मेरी आपकी मुलाकात। आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए। सुनते रहिए आनंद को। नेहा स्वाति मेरे साथ जुड़ गए हैं गुड मॉर्निंग पहुंचाते हुए। चमन लाल साहब पुतली घर रोड से जुड़ चुके हैं गुड मॉर्निंग। एंड साथ में गायत्री नगर से जुड़ी हैं शबीना, एक और हमारी नई श्रोता, गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं हमारे पास। ये कौन है? लड्डू जी, थैंक यू सो मच यार। चलिए गाइस बाय बाय, फ्राइडे है, वीकेंड है, एंजॉय कीजिए, मौसम अच्छा हो रहा है, ख्याल रखिए अपना। अगर आपको लग रहा है बारिश होने की संभावना है तो छाता जरा अपने पास रखें बॉस। बाकी ख्याल रखें अपना, मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें और ढेर सारा पानी पीते रहें। बाय बाय, और अपने एनवायरमेंट को बढ़िया और हेल्दी रखने के लिए पेड़ लगाते रहें यार। बाय।

0: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना। समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060022430। अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
2: अरे बेटा, बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
1: पर पापा।
2: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
1: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद। Thank you.

0: सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान है, अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
1: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
2: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
1: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।

0: आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
2: अरे भैया, नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

म्यूजिक मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादी अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग माय डियर लिसनर्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ और आप सभी का फेवरेट शो लेकर मैं हाजिर हूँ, मॉर्निंग मसाला, जहाँ पर ढेर सारी बातें भी होती हैं, इन्फॉर्मेशन भी होती है, एंटरटेनमेंट भी होता है और आपकी और हमारे दिल की बातें भी होती हैं। दोस्तों, फ्राइडे का बहुत ही खूबसूरत सा दिन है और दोस्तों, आज का दिन सिर्फ कैलेंडर का एक और दिन नहीं है, ये एक फ्रेश वाइब, एक न्यू एनर्जी और एक हैप्पी वीकेंड फीलिंग्स लेकर आता है। तो दोस्तों, जिंदगी को ना इतना भी सीरियस मत लीजिए, इतना भी सीरियस मत बनाइए, कभी कभी फ्राइडे की तरह बस मुस्कुराइए, रिलैक्स कीजिए और लाइफ की छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय कीजिए। और दोस्तों, आज अपने दिन को पॉजिटिव रखिए, फेस पर स्माइल रखिए और यही याद रखिए कि वीकेंड सिर्फ एक दिन दूर है। जी हाँ, जो फ्राइडे है और जैसे ही फ्राइडे आता है तो वीकेंड की वाइब आनी स्टार्ट हो जाती है। एंड बहुत सारे हमारे जो लिसनर्स हैं जिनका सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो आज ही प्लान करते हैं कि फ्राइडे नाइट में हम क्या स्पेशल करने वाले हैं, कहाँ घूमने जाने वाले हैं, क्या कुछ खास होने वाला है। दोस्तों से बातें करते हैं कि चलिए कहीं घूमने का प्लान करते हैं, कहीं बाहर चलते हैं वीकेंड पर। तो अपने आप में ना वीकेंड की एक अलग ही वाइब होती है, एक अलग ही एक्साइटमेंट रहती है हमारे मन में, राइट ना। और आज क्या स्पेशल है सब कुछ आपको धीरे धीरे पता लगेगा ऑनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। दोस्तों, आप भी मेरे साथ यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं, उसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना होगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। मुस्कुराइए, मैं क्या जी की हाल चाल दस दो मैनू। ओहो हो, आज तो बड़े ही सोने लग रहे, तो उसे सुबह सुबह नजर ना लग जाए। चलिए दोस्तों, एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक मैं आपको सुनवाती हूँ यहाँ पर जावेद अली जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज़ में, एंड फ्रॉम द मूवी पुष्पा। और ये ट्रैक बहुत ही प्यारा सा है, तो आप सभी के लिए आज की सुबह एंजॉय कीजिएगा। मैं बस लौट कर आती हूँ इस ब्यूटीफुल ट्रैक के इस पर। गुड मॉर्निंग एवरीवन।

हेलो हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और सच में दोस्तों, आप इतने प्यारे प्यारे संदेश भेजते हैं ना, तो हम आपके दीवाने हो ही जाते हैं। एंड दोस्तों, अभी आपने ये ब्यूटीफुल ट्रैक एंजॉय किया आज की मॉर्निंग। रशीद देसाई की खूबसूरत सी आवाज में प्यारा सा ट्रैक, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही खास है, क्योंकि आज हम मना रहे हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, यानी विश्व पर्यावरण दिवस, जिसे प्रकृति ने हमें साफ हवा दी, मीठी बारिश दी, खुशबू, खूबसूरत पेड़ पौधे और जीने के लिए इतना प्यारा संसार दिया। आज का दिन उन्हीं के नाम है। लेकिन दोस्तों, अगर हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, जैसे पेड़ लगाना, पानी बचाना, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करना, तो हम अपनी आने वाली जनरेशन को एक बेटर एंड हेल्दी फ्यूचर दे सकते हैं। तो दोस्तों, याद रखिए, प्रकृति हमारी जरूरत को पूरा कर सकती है, लेकिन लालच को नहीं। तो आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए। और उनकी अच्छे से देखभाल भी कीजिए। और दोस्तों, आज खुद से एक छोटा सा प्रॉमिस जरूर करिए कि हर साल कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं और अपने एनवायरनमेंट को क्लीन और ग्रीन बनाए रखें। उसके लिए आपको, जैसे अभी कोई स्पेशल डे होता है, तो आप उस पर एक पेड़ जरूर लगाएं। और अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पर आपकी जो ब्यूटीफुल मैसेज आए हैं उनको भी मैं क्विकली शामिल करती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह मुझे लगता है कि आप इतने प्यार से मैसेज भेजते हैं, और जब हम उनको शामिल करते हैं तो आपकी जो खुशी से चेहरा खिल उठता है ना, ये हमें बहुत ही प्यारा लगता है। और खुशी चाहती है कि आप हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहें, खुश रहें। और चलिए, ये सिलसिला शुरू करते हैं आपके खूबसूरत संदेशों का। और हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले मैसेज आया हुआ है, हेलो खुशी मैम, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। आपकी आवाज़, बोलने का अंदाज बहुत ही प्यारा है। और ये खूबसूरत सा मैसेज पहुँचाती हैं ललिता कश्यप जी, नवीन नगर मुरादाबाद से। और ये कहती हैं कि आज पर्यावरण दिवस है, सभी को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको भी। थैंक यू सो मच मैम। और ये कहती हैं कि आज हमारे देश के यूपी के सीएम जी का बर्थडे है। हां जी, आज श्री योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन है। यूपी की मुख्यमंत्री जी का, और ये बधाइयां दे रही हैं। हमारी ओर से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे सीएम साहब को, और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं वो। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है प्रिया जी का, और ये हमें मैसेज पहुंचाती हैं प्रकाश नगर से। कहती हैं, गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग, हम तो आपका इंतजार करते रहते हैं 10 बजे से कि कब खुशी मैम आएंगे और कब हम उनकी आवाज सुनेंगे। थैंक यू प्रिया, मैं आ चुकी हूँ एंड आपके लिए ढेर सारी इन्फॉर्मेशन लेकर बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं। एंड एक और मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है ईदगाह मुरादाबाद से शफी अहमद अंसारी जी का, साथ में इनके दोस्त भी हैं रईस दूल्हा अंसारी जी। और ये कहते हैं, गुड मॉर्निंग मैम, आप कैसे हैं? मैं बहुत ही अच्छी हूँ सर, उम्मीद करते हैं आप भी अच्छे ही होंगे। और सर कहते हैं कि खुशी जी, आज हम आपसे मिलने ऑफिस आ रहे हैं। अरे वाह, बिल्कुल मोस्ट वेलकम है सर आपका। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है नवीन नगर मुरादाबाद से गौरव टीलर जी का, और ये कहते हैं, खुशी जी जय श्री राम, गुड मॉर्निंग आपको भी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग।

कोई फायदा नहीं है। और रिश्ते बहुत ही खूबसूरत होते हैं, एंड अगर आपके पास अच्छे रिश्ते हैं तो उनको संभाल कर रखिए, चाहे वो दोस्ती का हो या फैमिली का हो या फिर जीवन साथी का हो। चलिए, एक बहुत ही प्यारा सा गीत मैंने आज की मॉर्निंग यहाँ पर चुना है लता मंगेशकर जी की आवाज में, इसको आप सुनिएगा। बस मैं लौट कर आती हूँ, आप कहीं मजा आइए, दिल से मुस्कुराइए और अपने संदेश भी मुझे पहुँचाइएगा।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।
2: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
3: अरे बेटा, बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
2: पर पापा।
3: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
4: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
5: टायर लो, सोना जीतो।
6: क्या?
5: जी हाँ,
7: चावला टायर
5: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
7: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
8: अपोजिट
7: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
8: ऑफर वैलिड टिल 10th जून, TNC अप्लाई।
4: सुबह सुबह रेडियो ऑन ना करने से पहले
9: माँ, मुझे कुछ दिखाएंगे जरा माँ?
4: अरे तो भाई, चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले।
9: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
4: तो भाई साहब, आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यूनिंग कीजिए आपकी शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
10: क्या बात है सर, क्या बात है सर।

हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। श्रोताओ, बहुत ही प्यारा सा गाना अभी आपने सुना फ्रॉम द मूवी गदर से। एंड गड्डी लेके तो तुसे भी जा रहे हो मैंने पता है जी, लेकिन हाँ, अगर आप अभी कार ड्राइव कर रहे हैं तो मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ सर सीट बेल्ट ज़रूर बांध लीजिएगा और ड्राइव करते वक्त फ़ोन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि एक छोटी सी गलती ना हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। क्योंकि कहते हैं ना कि नज़र हटी दुर्घटना घटी, तो इसीलिए जब भी आप ड्राइव करें तो इस वक्त फ़ोन का इस्तेमाल ना करें एंड सामने ही फोकस होना चाहिए आपका। और हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर वक्त हुआ है 10:58। मैं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी।

और दोस्तों आपके लगातार यहाँ पर का संदेश आ रहे हैं तो उनको भी हम जल्दी से शामिल करते हैं। और यहाँ पर हमें मैसेज भेजा है ललिता कश्यप जी ने, बोलते हैं कि मैम अपना जुकाम सही करो, दवाई ले लीजिए। मैम हमने दवाई ले ली है और मतलब बहुत सारी चीज़ें मैंने की हैं ताकि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ, लेकिन गला है कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना हमारे बारे में पूछा और हमारी इतनी केयर की, दिल से शुक्रिया। गले ने इस बार कह दिया है कि खुशी जी बहुत ज्यादा बातें करती हैं, बहुत ज्यादा बोलती हैं, तो अब थोड़ा सा रेस्ट तो हमें दे दीजिएगा। ये ठीक ही होने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन हाँ उम्मीद तो है कि जल्दी से ठीक हो जाए। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है दुर्गेश सैनी जी का और ये कहते हैं जय श्री राम मैम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं बहुत ही अच्छी हूँ। और ये अपने मैसेज पहुँचाते हैं कल्याणपुर मुरादाबाद से, और इन्हीं की रिक्वेस्ट पर अभी हमने गाना बहुत ही प्यारा सा सुना फ्रॉम द मूवी गदर से उदित नारायण जी की खूबसूरत सी आवाज में। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, मैडम जी हमारा नमस्कार स्वीकार कीजिएगा, आपका कार्यक्रम हम सब सुन रहे हैं। ये मैसेज हमें उमा शंकर जी पहुँचाते हैं, उमा शंकर सिंह जी रुद्रपुर देवभूमि उत्तराखंड से, और कहते हैं आपके लिए पनीर की पराठे भेज दी है मैम, आप इनका गर्मा गर्म पराठों का लुफ्त उठाइए। अरे धन्यवाद सर, आपने कहा समझ लीजिए हमने खा लिया, आप इनका लुफ्त उठाइए, बस हम तो दीदार कर सकते हैं। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है आरजी खुशी जी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, एंजॉय द ब्यूटीफुल प्रोग्राम, लाजवाब प्रस्तुति, शानदार प्रोग्राम। एंड ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं अजीत कसाना जी, साथ में माया देवी जी हैं, ऋतिक हैं और आदित्य कसाना जी हैं, ग्राम पोस्ट लदावली से ये मैसेज पहुंचाते हैं। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट मैसेज हमें मिला है जिला अमरोहा नई बस्ती पते खालसा से बहारुल हसन सिद्दीकी जी का, और साथ में इनकी पूरी फैमिली भी है, ये भी इस समय कार्यक्रम को सुन रहे हैं और अपना संदेश एवरी डे हमें पहुंचा देते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी कुछ खूबसूरत गीत सुनते हैं और आपके जो संदेश आए हैं उनको भी हम जल्दी से शामिल करेंगे। एंड एक सवाल भी मैं आपसे पूछने वाली हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है आज की सुबह, और मुझे यकीन है कि हमारे जो जितने भी श्रोता इस वक्त सुन रहे हैं वो फटाफट से जवाब पहुँचाएंगे, लेकिन पहले ही गाना इंजॉय कीजिएगा आप दोस्तों। हो गया है तुझको तो प्यार सजना, बहुत ही प्यारा सा ट्रैक है एंड फ्रॉम द मूवी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इस प्यारे से गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी गौरव टेलर जी ने नवीन नगर मुरादाबाद से, तो चलिए सुनते हैं कुछ खूबसूरत गीत, उसके बाद बातचीत करेंगे आप सभी के साथ।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: हाय दयन एनर्जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।
5: सुबह सुबह रेडियो ऑन ना करने से पहले
6: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
5: अरे तो भाई चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले।
6: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
5: तो भाई साहब आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यून इन कीजिए आपकी शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
7: क्या बात है सर, क्या बात है सर।

हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ और शो चल रहा है, आप सभी का फेवरेट जानते हैं ना आप, मॉर्निंग मसाला। जी हाँ, जहाँ पर बातें भी होती हैं और साथ साथ बहुत सारी जानकारियाँ भी होती हैं। और दोस्तों, आज मैं यहाँ पर ना एक ट्रैक प्ले कर रही हूँ, ठीक है। आपको मुझे बताना है कि इस ट्रैक में कौन सी अभिनेत्री हैं, जी हाँ, किन पर ये गाना फिल्माया गया है। बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे श्रोता पहचान जाएंगे। तो शुरू करते हैं सिलसिला।

हाँ जी दोस्तों, आपको बताना है कि इस गाने में कौन सी एक्टर्स हैं, उनका नाम आपको मुझे बताना है। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मोबाइल नंबर है 9837896896। इस नंबर पे आपको मैसेज करना है, चाहे आप टेक्स्ट मैसेज करें या व्हाट्सएप मैसेज करें, डिपेंड आपके ऊपर करते हैं। एंड अगर आप अपना वॉइस नोट भी पहुंचाएंगे तो और भी अच्छी बात है। बताइएगा मुझे कि ये ट्रैक जो मैंने प्ले किया है कौन सी एक्टर्स पर फिल्माया गया है, एंड आपको उनका नाम मुझे बताना है। मैं एक बार फिर से प्ले करती हूँ ये ट्रैक, जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही खूबसूरत सा ये ट्रैक है।

हाँ हाँ आप डांस करने के लिए तैयार हो गए, मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे बताना है आपको एक सिंपल सा, आपको काम करना है, अपने फोन उठाना है और टाइप करना है हमारा व्हाट्सएप नंबर 9837896896। मुझे आप बताइए कि जो ये गाना मैंने प्ले किया है इसमें कौन सी एक्टर्स हैं, उनका नाम क्या है आपको मुझे बताना है। जी हाँ, उनका रियल नेम क्या है आपको मुझे बताना है। फटाफट से आप अपने संदेश पहुँचाइए, हम इंतज़ार कर रहे हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही कहते हैं कि कमाल की अभिनेत्री हैं, बहुत ही खूबसूरत एक्टर्स हैं, इनका नाम आपको मुझे बताना है। एंड हम इंतज़ार कर रहे हैं और हमें पूरा यकीन है कि आप अपने संदेश फटाफट से पहुंचाएंगे। और यहाँ पर कुछ और मैसेज आए हैं तो उनको भी मैं क्विकली शामिल करती हूँ। क्या पहुंचाते हैं आज की सुबह हमारे और श्रोता। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी का, साथ में इनके फ्रेंड्स भी हैं सैयद शारिक अली जी, महराज अंसारी जी, बाबू अंसारी जी, और ये कहते हैं गुड मॉर्निंग खुशी जी, आप कैसी हैं? वेरी गुड मॉर्निंग सर, हम बहुत ही अच्छे हैं, आप सबकी दुआएं हैं। और कहते हैं कि आपका शो सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है, शुक्रिया सर आपका बहुत बहुत। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है खुशी मैडम जी, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग, आई एम फाइन। ये मैसेज हमारे पास आया है मौसीम अंसारी जी का, साथ में सरताज अंसारी जी हैं, शाहिद अंसारी जी हैं और सदाम अंसारी जी का मैसेज हमारे पास आया है। काशी बनारस से, और इन्होंने एक बड़ी खूबसूरत सी लाइनें लिखी हैं, कहते हैं कि वक्त का इशारा समझिए, नदी तब तक बहती है जब तक रास्ता मिलता है, जिस दिन रास्ता पत्थर से भर जाता है वहीं खुद ही मोड़ ले लेती है, उसे शिकायत नहीं होती ना ही शोर मचाती है। इंसानी रिश्ते भी कुछ ऐसे ही होते हैं, जब सामने वाला जवाब देना छोड़ दे, सुनना छोड़ दे, आपकी मौजूदगी से बचने लगे तो समझ जाइए कि वहाँ बदल चुका है, कि वह बदल चुका है। तब खुद को साबित करने की कोशिश मत कीजिए, सफाई देना भी बेकार होता है, सबसे बेहतर यही है कि इज्जत के साथ पीछे हट जाइए, क्योंकि जहाँ ठहरना पड़ता है वहाँ रिश्ता नहीं बोझ बन जाता है। एग्जैक्टली सर, क्योंकि रिश्ते में ना एक तरफ से नहीं होता है, रिश्ता दोनों तरफ से निभाया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों को एक दूसरे को समझना चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। अगर सामने वाला अपना टाइम आपको दे रहा है तो आपको भी टाइम देना चाहिए। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है विकी सागर जी का हिमगिरी मुरादाबाद से, कहते हैं गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। तो चलिए दोस्तों, अपने जवाब हमें पहुंचाइएगा, और हमारे पास जवाब भी लगातार आ रहे हैं, उनको भी हम शामिल करेंगे। लेकिन एक खूबसूरत सा गीत यहाँ पर आपको सुनवाते हैं, उसके बाद आपसे बातचीत करेंगे। और भी दोस्तों, आप कहीं मत जाइए, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और आप सभी के जो यहाँ पर संदेश आए हैं उनको भी शामिल करेंगे। एंड जिस एक्टर के बारे में हमने पूछा, एक्टर्स के बारे में आपसे मालूम किया है, आप उनके बारे में बताइएगा, उनका नाम बताएगा कि जो गाना मैंने प्ले किया है उसमें कौन सी फीमेल एक्टर्स हैं, उनका क्या नाम है आपको बताना है। बस इतना सा सिंपल सा काम करना है, देखते हैं कि हमारे लिसनर्स कितने एक्टिव हैं। और ये प्यारा गाना सुनिएगा।

0: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
1: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।
2: टायर लो, सोना जीतो।
3: क्या?
2: जी हाँ,
4: चावला टायर
2: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
4: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड,
5: अपोजिट
4: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
5: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।
6: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
7: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
8: कॉल 8826213131।

हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग. आप सभी का स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर. और अभी आपने बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक सुना फ्रॉम द मूवी जानी दुश्मन से. एंड इसमें बहुत ही खूबसूरत एक्टर्स नजर आए हैं, एक्टर और एक्टर्स. जी हाँ दोस्तों, एंड जिनकी हमने बात की थी, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही कमाल की अभिनेत्री हैं, एंड जिनकी आज हम बात कर रहे हैं. दोस्तों आज की इस खूबसूरत सी सुबह में हम बात कर रहे हैं कि ऐसी अदाकारा की जिनकी मुस्कान ने 90s के दौर को और भी रंगीन बना दिया था. जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रंभा जी की, जिनका असली नाम है विजय लक्ष्मी. और दोस्तों 5 जून 1976 को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में जन्मी रंभा ने साल 1952 में 1992 में तेलुगु फिल्मों से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी. और फिर देखते ही देखते वो साउथ इंडियन सिनेमा से लेकर बॉलीवुड तक दर्शकों के दिलों पर छा गईं. अपने फिल्मी सफर में उन्होंने 100 से अधिक साउथ इंडियन फिल्में और करीब 17 बॉलीवुड फिल्मों में काम किया. उनकी चुलबुली अदाएं, शानदार डांस और स्क्रीन प्रेजेंस ने उन्हें उस दौर की सबसे पसंदीदा अभिनेत्री में से शामिल कर दिया. रंभा ने सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि लोगों की यादों में भी अपनी एक खास जगह बनाई है. दोस्तों आज भले ही वो ग्लैमर्स की दुनिया से थोड़ा दूर हैं, लेकिन अपनी फैमिली और बच्चों की परवरिश में खुशहाल जिंदगी जी रही हैं. और आज रंभा जी का जन्मदिन है, तो हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं. और हमारे पास राइट आंसर भी बहुत प्यारे प्यारे यहाँ पर आए हुए हैं. हमें राइट आंसर सबसे पहले पहुंचाती हैं ललिता कश्यप जी नवीन नगर मुरादाबाद से. कहती हैं हंशी मैम, आज हीरोइन एक्टर्स का आज रंभा जी का बर्थडे है, तो हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं. एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको. नेक्स्ट मैसेज हमारे पास पूजा जी का आया है विकास नगर से, और ये कहती हैं गुड मॉर्निंग खुशी मैम, कैसे हैं आप? लगता है आपको जुकाम अभी भी ठीक नहीं हुआ है, क्योंकि आपकी आवाज में वो झलक रहा है. अभी भी आपकी आवाज बैठी बैठी सी लग रही है. हाँ जी, अभी पहले से राहत है, लेकिन पहले बहुत दर्द हो रहा था, अभी तो ठीक है गला. और ये भी राइट आंसर के साथ जुड़ती हैं, कहती हैं कि मैम एक्टर्स जिन एक्टर्स के ऊपर आपने जो ट्रैक अभी प्ले किया था, जो फिल्माया गया है, वो रंभा जी हैं और उनका रियल नाम विजय लक्ष्मी है. थैंक यू सो मच पूजा, आपने अपना राइट आंसर पहुंचाया है. और हमारे पास बहुत सारे टेक्स्ट मैसेज भी आए हैं, तो उनको भी मैं क्विकली शामिल करती हूँ. क्या क्या पहुंचाते हैं हमारे प्यारे प्यारे से लिसनर्स. एंड हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, हाय नमस्ते मैम, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ. इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, बट नमस्ते पहुँचाया है. एंड नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर मुस्कान का आया है, और ये मैसेज मंजूला से अपना पहुँचाती हैं. कहती हैं गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग, आई एम गुड डियर. तो चलिए दोस्तों कुछ और खूबसूरत गीत आपको सुनवाते हैं. जिस ट्रैक के बारे में हम बात कर रहे थे, वो खूबसूरत सा गाना यही है. आप सब सुनिएगा और मैं लौट कर आती हूँ. आप कहीं मत जाइए, बस ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए. और हाँ, अपनी सेहत का भी अच्छे से ख्याल रखिए.

0: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन
1: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद
2: कॉल 8826213131।
3: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
4: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
4: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
5: टायर लो सोना जीतो।
6: क्या?
5: जी हाँ,
7: चावला टायर
5: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए।
7: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क चावला टायर्स कांट रोड
8: अपोजिट
7: मधुबनी पार्क मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
8: ऑफर वैलिड टिल 10th June। TNC अप्लाई।
9: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
10: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

अगर मैं आपको ये कहूँ कि लोगों के साथ बैठना, उनकी जिंदगियों के बारे में जानना और उन्हें आगे के लिए सही सलाह देना, ये आने वाले समय का एक बहुत बड़ा करियर होने वाला है, तो आपको बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इस काम में तो आप ऑलरेडी अच्छे हैं और ये सब काम तो आप करते रहते हैं, तो फिर आप इसमें एक बड़ा करियर क्यों नहीं इमेजिन करते? आप अपने आप को इस करियर में एक बड़े लेवल पर लेकर क्यों नहीं जाते? अगर आपको ऐसा लगता है कि इंसानों को सुनना, उनकी जिंदगियों के बारे में समझना, उनकी सेंटिमेंट्स को समझना, उन्हें सही सलाहें देना, और लोग आपके साथ रिलेट भी करते हैं, आप उनके साथ एम्पेथाइज भी कर पाते हैं, तो आप अपने आप को एक बड़े करियर में इंटर कर सकते हैं। और इसके लिए अगर आपको ज़रूरत है कि ये काम कैसे होगा, इसके लिए क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए, क्या प्रोफेशनल फ्रेमवर्क है, क्या टूल्स, क्या टेक्निक्स, कैसे इस चीज़ की शुरुआत होती है, कैसे क्लाइंट्स आते हैं, कैसे लोग आते हैं, तो इन सभी मामलों में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आप मुझसे जुड़िए अपने 3 घंटे के मास्टर क्लास में, और वहाँ मैं आपको बताऊँगा कि क्या आप एक कोच बनने के लिए राइट फिट हैं, और अगर आप एक राइट फिट हैं तो कितना टाइम, कितना एनर्जी, कितना पैसा आपको खर्च करना होगा इन कामों को सीखने के लिए, और कैसे और कितना बड़ा करियर आप इस एरिया में अपना बना सकते हैं। इन केस यू डोंट नो मी, दिस इज विकास चौधरी, आई एम अ रिलेशनशिप कोच एंड इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट। पिछले 9 वर्षों से मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और एक बहुत बड़ा नेटवर्क, एक बहुत बड़ा एम्पायर मैं कोचिंग की दुनिया में अपना खड़ा कर चुका हूँ, और मैं भी आपको मदद कर सकता हूँ कि कैसे आप भी अपनी लेगेसी को कोचिंग इंडस्ट्री में क्रिएट करें। अभी मुझसे जुड़ने के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें और रजिस्टर करें खुद को और

0: कि क्या आप इसके लिए एक सही इंसान हैं। थैंक यू।
1: क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया शरीर को लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़के

0: भर लो, थोड़ा सा जी लो, थोड़ा थोड़ा मर लो।
1: दुनिया में आए हो तो लव कर लो, दुनिया में आए हो तो लव कर लो, थोड़ा सा जी लो, थोड़ा थोड़ा मर लो।
0: हाँ, थोड़ा सा जी लो, थोड़ा थोड़ा मर लो।

हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अमेजिंग ट्रैक अभी आपने एंजॉय किया, कविता कृष्णमूर्ति जी की बड़ी खूबसूरत सी आवाज में प्यारा सा ट्रैक। और दोस्तों कुमार सानू जी दे रहे थे साथ। एंड देखिए यहाँ पर वक्त हुआ है साथियों 11:56। और दोस्तों इस गर्मी के मौसम में अपना और अपनों का खास ख्याल रखें। घर से बाहर निकलें तो पानी की बोतल साथ जरूर रखें, क्योंकि हाइड्रेशन इज द रियल समर सुपर पावर। बहुत ज़्यादा ऑयली और जंक फूड से थोड़ा डिस्टेंस बनाइए। और मौसमी फल जैसे तरबूज, खीरा, आम और नींबू, पानी को अपनी डेली रूटीन में शामिल कीजिए। और हाँ, धूप चाहे कितनी भी तेज हो, मुस्कान हमेशा कूल रखिए, क्योंकि हाइड्रेशन बॉडी के साथ पॉजिटिव माइंड भी बहुत ज़रूरी है। टेक केयर, स्टे फ्रेश एनर्जी, योर ब्यूटीफुल समर डेज। दोस्तों फ्राइडे का एक खूबसूरत सा दिन है, तो आप इंजॉय करें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। और हमारे पास एक और खूबसूरत सा मैसेज आया हुआ है। ये कहते हैं खुशी दीदी जी को हमारा नमस्कार। ग्राम चमोरा जिला संभल से ब्रजेश जी का मैसेज हमारे पास आया है। और आपको भी नमस्कार सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना संदेश पहुंचाया। इन्होंने एक प्यारे सी गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी है, तो दोस्तों इस खूबसूरत से गाने के साथ मैं लेती हूँ आपसे जाने की अनुमति। मिलेंगे आपको हम संडे को, तब तक के लिए रखिएगा अपना ध्यान। नहीं, 3 बजे भी मिलने वाले हैं भाई, सी यू सून, उनसे बातचीत करेंगे अगेन, आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप कहीं मचाइए, दिल से मुस्कुराइए। और हाँ, अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एवरीवन।

0: के बाद समिति ने सर्वसम्मति से एलएएफ के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
1: स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को भी 4.6% से बढ़ाकर 5.1% किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री लगभग 2,970 करोड़ रुपए के विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
2: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4 लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुँच में सुधार होगा। जनकल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 2400 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 जून को नागरिक अलंकरण समारोह में इस वर्ष के 65% व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इससे पहले पिछले महीने श्रीमती मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में 66% व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे। इस वर्ष राष्ट्रपति ने 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कारों सहित कुल 131 पद्म पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह आज जम्मू में एक नए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना के औपचारिक घोषणा करेंगे। ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में मौसम पूर्वानुमान और आपदा तैयारियों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें बेंगलुरु विकास मंत्रालय देने का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें जल संसाधन मंत्रालय दिया गया, इसलिए उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहलों ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते में स्थायी रूप से ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जाना चाहिए। घरेलू शेयर बाजार में संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज वृद्धि का रुख रहा। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 121 अंक के उछाल के साथ 74,461 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani.

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: टायर लो सोना जीतो।
2: क्या?
1: जी हाँ,
3: चावला टायर
1: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
4: अपोजिट
3: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभकारी। पिछले दो एपिसोड में हमने HPV वैक्सीन को लेकर डर, अफवाह, पीरियड्स और बांझपन की बात की। आज हम एक और जरूरी सवाल पर आते हैं। ठीक है, मान लिया कि टीका जरूरी है, सुरक्षित है और अफवाहों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आम परिवार क्या करे, कहाँ जाए, कितना खर्च होगा, क्या सरकारी अस्पताल में मिलेगा, क्या पहले रजिस्ट्रेशन होगा और क्या सिर्फ बेटी का टीका ही काफी है या फिर घर की बड़ी महिलाओं को भी कुछ करना चाहिए। इस सारे सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ फिर से है टीकन देवी और सुनीता। सुनीता, अब आपका मन कैसा है?
1: अब पहले जैसा डर नहीं है, पर अब चिंता दूरी है। प्रक्रिया की, कहाँ जाए, किस से पूछे, कागज क्या लेंगे, भीड़ होगी या नहीं, लौटना ना पड़ जाए, हमारे जैसे परिवारों में यही व्यवहारिक बातें भी बड़ा फर्क डालती हैं।
2: बिल्कुल, और सही स्वास्थ्य सेवा तभी काम आती है जब वह लोगों की पहुंच के अंदर हो, समझ में आए और लोग बिना शर्म बिना डरे सेवाओं का लाभ उठा सकें। इसलिए आज हम सिर्फ क्या नहीं कैसे की बात करेंगे।
0: तो सबसे पहले सीधी सूचना, उपलब्ध सरकारी सामग्री में साफ बताया गया है कि HPV वैक्सीन 14 वर्ष की लड़कियों के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध है, यानी पैसा नहीं होना सही इलाज के लिए वादा नहीं है, सुरक्षा जेब की मोहताज नहीं है, यही सरकार द्वारा निशुल्क सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की बुनियादी सोच है।
1: यह बात मेरे दिल को छू गई लगी, क्योंकि सच कहूं अगर यह बहुत महंगा होता तो शायद हम टाल देते, पर हम जैसे घरों में बीमारी से ज्यादा कभी कभी इलाज का खर्चा डराता है।
2: और यही कारण होता है कि मुफ्त उपलब्धता कोई छोटी बात नहीं, ये बराबरी की बात है। इसका मतलब ये है कि रोकथाम सिर्फ शहरों के बड़े निजी अस्पताल या पैसे वालों तक सीमित ना रहे, गाँव, कस्बे, कम आय वाले परिवार, सबकी बेटियां सुरक्षा पाएं।
0: लेकिन सिर्फ मुफ्त कहना काफी नहीं, लोगों को रास्ता भी साफ चाहिए। तो टीकन भाभी, कोई परिवार क्या क्या कर सकता है?
2: पहला रास्ता, अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल या सरकारी मेडिकल कॉलेज में जानकारी ले। दूसरा, यदि स्कूल से सूचना आए तो स्कूल से पूछें कि कैंप कहाँ और कब लगेगा। तीसरा, अपने इलाके की आशा, NM या स्वास्थ्य कार्यकर्ता से बात करें। चौथी बात, जहाँ लागू हो UWIN डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण और अपॉइंटमेंट की जानकारी ली जा सकती है। पांचवा, यदि कोई बात समझ ना आए पूछने में शर्म ना करें, स्वास्थ्य सेवा सवाल पूछने वालों के लिए ही है।
1: UWIN का नाम तो सुना है, पर सबको मोबाइल चलाना थोड़ी आता है।
2: बिल्कुल सही, इसीलिए डिजिटल सुविधा एक रास्ता है, एकमात्र रास्ता नहीं। अगर मोबाइल, इंटरनेट, OTP ये सब मुश्किल लगे तो सीधे स्वास्थ्य केंद्र जाओ या आशा से मदद लो, तकनीकी मदद के लिए, छाटने के लिए नहीं।
0: यह बिंदु बहुत अहम है। भारत जैसे समाज में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स उपयोगी हैं, लेकिन उनमें वर्ग, लिंग और पहुंच की असमानताएं भी होती हैं। इसलिए सेवा का ऑफलाइन रास्ता हमेशा मजबूत रहना चाहिए।
1: हाँ, हमारे यहाँ तो कई घरों में मोबाइल भी पति के पास रहता है, ऊपर से ऐप डाउनलोड, नाम लिखना, अंग्रेजी पढ़ना सब आसान नहीं।
2: तो फिर सीधा रास्ता अपनाओ, स्वास्थ्य केंद्र जाओ, यही तो सरकारी व्यवस्था का मतलब है, जनता को दरवाजे पर सुविधा मिले।
0: जरा दृश्य बता दें, सुनीता, टीकन भाभी और मैं आपका दोस्त सरकारी केंद्र पहुंच गए हैं। सुनीता के मन में हिचक है और उन्हें लग रहा है लोग क्या कहेंगे, क्या पूछेंगे, कहीं डांट ना दें। लेकिन कई परिवारों को भी यही स्थिति होती है। तो अब आप जरा अपना अनुभव श्रोताओं के साथ साक्षात करें।
1: मैं तो सच कहूँ, पहली बार गई तो लगा कोई कहेगा इतनी देर से क्यों आई या पहले जानकारी क्यों नहीं ली, पर जब वहाँ बैठी NM बहन ने ठीक से समझाया तो आधा डर वहीं उतर गया।
2: यही तो भरोसा बनता है। स्वास्थ्य व्यवस्था का चेहरा सिर्फ इमारत नहीं, वहाँ बैठा इंसान भी होता है। अगर वह सम्मान से बात करें तो सेवा का असर दो गुना हो जाता है।
0: और यही एक भी सीख है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सिर्फ इंजेक्शन या दवा नहीं, संवाद, सम्मान और भरोसा भी है, खासकर महिलाओं और किशोरियों के लिए।
1: एक और बात समझ में आई, हम बेटी के टीके के लिए गए थे पर वहाँ महिलाओं की जांच की भी बात हुई। पहले तो लगा यह अलग मुद्दा है, फिर समझ आया कि नहीं, यह जुड़ा हुआ है।
2: बिल्कुल जुड़ा हुआ है। अधिकार संदेश साफ कहते हैं, सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम में दो चीजें महत्वपूर्ण हैं, कम उम्र की लड़कियों के लिए समय पर HPV वैक्सीन और महिलाओं के लिए नियमित स्क्रीनिंग। इसका मतलब ये नहीं कि टीका सब कुछ अकेले कर देगा, इसका मतलब ये है कि सुरक्षा की एक श्रृंखला है। पहला कदम टीका, बाद के वर्षों में जांच और समय पर पहचान।
0: और उपलब्ध सरकारी संचार में यह भी कहा गया है कि महिलाओं के लिए सर्वाइकल जांच नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में निशुल्क उपलब्ध हो सकती है, तथा समय पर पहचान जीवन रक्षक हो सकती है। यानी घर की बड़ी महिलाओं को यह नहीं सोचना चाहिए कि यह तो लड़कियों की बात है, इससे क्या लेना।
1: यही बात मेरे मन को लगी, मैं बेटी के साथ गई थी पर वापस आते वक्त लगा कि मुझे खुद भी अपनी जांच के बारे में पूछना चाहिए। हम औरतें अक्सर यही सोचते हैं, अभी क्या जरूरत है, सब कुछ लक्षण होने तक देखेंगे, पर जब तक देर हो जाए तो।
2: इसीलिए जागरूकता जरूरी है, जो बीमारी रोकी जा सकती है उसे चुप्पी और देर के भरोसे ना छोड़ा जा सके।
0: अब बात करते हैं उस घरेलू तनाव की जो अक्सर फैसले के रास्ते में आता है। मान लीजिए माँ तैयार है पर दादी कहती हैं हमारे जमाने में यह सब नहीं था। पति कहता है देख लो मुझे नहीं पता। पड़ोसन कहती है सरकारी चीज है, संभल कर जरा। ऐसे में क्या करें।
1: यही तो हुआ मेरे साथ, एक तरफ बेटी का भविष्य, दूसरी तरफ घर की अलग अलग आवाजें। फिर लगा कि अगर मैं हर किसी को खुश करने लगूंगी तो शायद सही फैसला कभी नहीं ले पाऊंगी।
2: इसीलिए निर्णय की दूरी साफ रखो, घर की राय सुनो पर अंतिम आधार प्रमाण हो। जो बात डॉक्टर, मंत्रालय, वैज्ञानिक, जागरूकता सामग्री और विश्वसनीय स्रोत कह रहे हैं वही प्राथमिक होनी चाहिए। परिवार का डर सम्मान के लायक है पर झूठ का आधार नहीं।
1: और अब मुझे यह भी लगता है कि एक माँ को सिर्फ भावुक कहकर किनारे नहीं कर देना चाहिए। वह सवाल पूछ रही है, इसका मतलब वह जिम्मेदार है।
2: सही कहा, सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में माताओं की भूमिका केंद्रीय होती है, लेकिन उन्हें जानकारी और सहारा दोनों चाहिए, सिर्फ निर्देश नहीं।
0: यह बात नीति निर्माताओं, स्वास्थ्य कर्मियों और संचार कार्यकर्ताओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। यदि अभियान में सम्मानजनक संवाद नहीं होगा तो अफवाह खाली जगह भर देगी। यदि परिवार को सिर्फ आदेश मिलेगा, समझ नहीं, तो भरोसा नहीं बनेगा। इसलिए ऐसे सेल के जैसे कार्यक्रम जहाँ सवाल छोटे नहीं माने जाते।
1: टीकन भाभी, जब मैं केंद्र गई थी वहाँ किसी ने कहा कि पहले रजिस्टर हो जाओ फिर तारीख मिलेगा, किसी ने यू विन कहा, मुझे लगा फिर वही मुश्किल।
2: पर तुमने पूछा ना?
1: हाँ पूछा, तब समझ आया कि विकल्प है, अगर ऑनलाइन मदद मिले तो ठीक है, नहीं तो केंद्र पर ही जानकारी मिल सकती है। पहले मैं पूछने से डरती थी, अब नहीं।
2: यही नागरिक समझ है, मुझे नहीं आता कह देना हार नहीं है, मुझे समझाइए कहना अधिकार है।
0: यह बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने। श्रोताओं ध्यान से सुन लीजिए, स्वास्थ्य सेवाओं में जानकारी मांगना झिझक की नहीं अधिकार का विषय है, खासकर उन समुदायों के लिए जो अक्सर औपचारिक संस्थानों में से दूरी महसूस करते हैं।
1: और एक बात, जब मैंने सुना कि यह लड़कियों के लिए मुफ्त है तो मन में एक राहत आई, पर साथ ही एक दर्द भी है। कितनी बार महिलाएं और लड़कियां ऐसे चीजों से सिर्फ इसलिए वंचित रह जाती हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि सुविधा उनके लिए है।
2: यही सूचना असमानता है, सुविधा होती है पर खबर पहुंचती नहीं, या खबर पहुंचती है तो उसके साथ अफवाहें भी पहुंच जाती हैं। इसीलिए जानकारी को सिर्फ जानकारी देना काफी नहीं, उसे समझ में आने वाली भाषा में भरोसे वाले माध्यम से पहुंचाना भी जरूरी है।
0: और यही कारण है कि सामुदायिक रेडियो, स्थानीय स्वास्थ्य संवाद आशा कार्यकर्ता, स्कूल, महिला समूह, ये सब इतनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। एक दिल्ली वाला संदेश तभी असर डाल करता है जब वह गांव की बोली, कस्बे की चिंता और घर की रसोई तक पहुंचे।
1: हम जैसे घरों में तो रेडियो की बात मोबाइल से ज्यादा भरोसेमंद लगती है, क्योंकि यहाँ कोई हमारे ही जैसे लोगों की भाषा में बात करता है।
2: हाँ, क्योंकि ये उपदेश नहीं, साथ चलने वाली बातें होती हैं।
0: अब एक उपयोगी सूची बना लेते हैं। यदि आपकी बेटी 14 वर्ष की है तो आप क्या करें? पहला, निकटतम सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, PHC, CHC, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जिला अस्पताल या स्कूल कैंप की जानकारी लें। दूसरा, आशा, ANM या डॉक्टर से पूछें कि HPV वैक्सीन कहां और कब उपलब्ध है। तीसरा, यदि उपलब्ध हो तो UWIN पर पंजीकरण की जानकारी लें। चौथा, किसी भी फॉरवर्ड, वीडियो या बिना स्रोत के दावे की अंतिम सच को ना माने। पांचवा, बेटी से खुलकर बात करें, उसे बताएं कि यह सुरक्षा का कदम है। छठा, घर की 30 वर्ष से ऊपर की महिलाओं के लिए सर्वाइकल स्क्रीनिंग के बारे में भी पूछें। सातवा, किसी भी झिझक या भ्रम को लेकर वापस सवाल पूछने से ना हिचकें।
1: यही सूची में लिख लेना चाहती हूँ, क्योंकि बातों में बहुत कुछ भूल जाती हूँ, पर लिखी चीजें साथ रहती हैं।
2: लिखो और चाहो तो दीवार पर चिपका दो। जैसे राशन की सूची लगती है, वैसे ही सेहत की सूची भी लगे।
0: बहुत सुंदर बात कही, क्योंकि स्वास्थ्य भी घरेलू योजना का हिस्सा होना चाहिए, कोई आकस्मिक घटना नहीं।
1: ईकन, अब मैं बेटी के टीके लेकर तैयार हूँ, पर एक अजीब सी बात है, पहले जो डर था अब उसी की जिम्मेदारी आ गई है। लगता है अब मुझे औरों को भी बताना चाहिए।
2: यही तो सार्वजनिक भलाई है, जब एक घर समझता है तो अगला घर थोड़ा आसान हो जाता है। तुम अपनी पड़ोसन से कह सकती हो, मैंने जाकर पूछा, मुझे ये जानकारी मिली। ये उपदेश नहीं, अनुभव साझा करना है।
1: मैं अपनी जानी को भी कहूँगी कि अपनी जांच के बारे में पूछे। वे हमेशा कहती हैं, हमारे लिए कौन सा समय है। अब मैं कहूँगी, समय नहीं बताना, निकालना पड़ता है।
2: सही, और ये सिर्फ बीमारी से लड़ने वाली बात नहीं, अपने जीवन की कीमती पहचान की बात है।
0: यही बुनियादी संदेश है, महिलाओं की सेहत फुर्सत का विषय नहीं है, बेटियों की रोकथाम और माताओं की जांच दोनों परिवार की मुख्य जिम्मेदारी है, अतिरिक्त बोझ नहीं।
2: और मैं यही कहूँगी, सरकारी दरवाजा तभी अपना लगता है जब हम उस तक जाने की हिम्मत करें। डर, संकोच और क्या कहेंगे को पीछे छोड़ो, पूछो, समझो, फिर फैसला करो।
1: और मेरी तरफ से, मैं अब सिर्फ अपनी बेटी को टीका दिलवाने नहीं जाऊंगी, मैं अपने घर की महिलाओं की जांच की बात भी उठाऊंगी, क्योंकि सुरक्षा आधी अधूरी नहीं होनी चाहिए।
0: बहुत सही, यही सेहत सही लाभ करी, एक सवाल से शुरू होकर पूरे परिवार की समझ तक पहुंचना। यदि आपकी बेटी 14 वर्ष है, अपने नजदीक सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जानकारी लें, और यदि आपके घर में 30 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं हैं तो सर्वाइकल स्क्रीनिंग के बारे में अवश्य पूछें। अगले कार्यक्रम तक याद रखिए, सही जानकारी, समय पर कदम, सम्मानजनक संवाद, यही असली सुरक्षा है। अंत से पहले आज की मुख्य बातें। एक, 14 वर्ष की लड़कियों के लिए HPV वैक्सीन नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध है। दूसरा, जहां सुविधा हो UWIN पर पंजीकृत और अपॉइंटमेंट की जानकारी ली जा सकती है। जहां ना हो सीधे स्वास्थ्य केंद्र या आशा ANM से संपर्क करें। तीन, डिजिटल सुविधा मदद के लिए है, बाधा के लिए नहीं। चौथा, सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम में किशोरियों का टीकाकरण और वयस्क महिलाओं की नियमित स्क्रीनिंग दोनों महत्वपूर्ण हैं। पांचवा, परिवार की राय सुनिए, पर अंतिम निर्णय प्रमाणित जानकारी और डॉक्टर की सलाह पर टिकाइए। छठा, सवाल पूछना शर्म नहीं, अधिकार है। सातवा, जो सुविधा आपके लिए बनी है उसके बारे में जानकारी लेना। सातवा, जो सुविधाएं आपके लिए बनी है उसके बारे में जानकारी लेना, यह आपकी ताकत है। और साथियों, यह एक बात और जोड़ना जरूरी है, जब हम कहते हैं कि सेवा सरकारी केंद्र पर उपलब्ध है तो उसका मतलब सिर्फ जाइए और इंजेक्शन लगवा लीजिए नहीं होता है। इसका मतलब भी है कि नागरिक को सेवा के बारे में स्पष्ट सूचना मिले, सम्मान मिले और उसके सवालों को हल्के में ना लिया जाए। सार्वजनिक स्वास्थ्य तभी मजबूत होगा जब स्वास्थ्य जवाबदेह हो और लोग उस जुड़ने का भरोसा रख। सार्वजनिक स्वास्थ्य तभी मजबूत होगा जब व्यवस्था जवाबदेही हो और लोग उससे जुड़ने का भरोसा रखें।
2: और जवाबदेही तो दो तरफ से होती है। व्यवस्था को समझना चाहिए और लोगों को पूछना चाहिए। कई बार हम बिना पूछे ही मान लेते हैं कि यह हमारे बस की बात नहीं, यही दूरी कम करनी है।
1: अब मुझे लगा कि यह सिर्फ मेरी बेटी का मुद्दा नहीं है, हमारे पूरे मोहल्ले का मुद्दा है। क्योंकि अगर एक घर जानकारी से जुड़ा है और दूसरा अफवाह से, तो फर्क साफ दिखेगा।
2: बिल्कुल, और यही वजह है कि जागरूकता अभियान सिर्फ पोस्टर लगाकर पूरे नहीं होते, उन्हें बातचीत बनानी पड़ती है। आंगन में, स्कूल में, महिला समूह में, रेडियो पर, तभी देश जीत रहता है।
0: यह बिंदु विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है जहां भाषा, डिजिटल पहुंच और स्वास्थ्य संस्थानों के साथ दूरी जैसे चुनौतियां हों। हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि सूचना जारी हो गई इसलिए काम पूरा हो गया। नहीं, इसका असली काम तब पूरा होगा जब घर की महिलाएं कहें, मुझे समझ में आ गया है।
1: सही कहा, पहले मुझे भी सिर्फ इतना पता था कि कोई नया टीका है। अब मुझे पता है क्या है, कहाँ मिलेगा, किससे पूछना है और अपने लिए क्या पूछना है।
2: यही बदलाव है, अधूरी खबर से पूरी समझ तक।
0: एक और अंतिम व्यावहारिक बात, यदि किसी कारण से पहली बार केंद्र जाकर पूरी जानकारी ना मिले, या भीड़ हो या कोई स्टाफ उपलब्ध ना हो, तो हार मत मानिए, दोबारा जाइए, आशा से पूछिए, उच्चतर केंद्र की जानकारी लीजिए। सार्वजनिक सुविधा का उपयोग करना धैर्य भी मांगता है, लेकिन उसके बिना बराबरी नहीं आती।
1: अब मैं यह भी समझ गई हूँ कि एक बार लौट आने का मतलब छोड़ देना नहीं होना चाहिए।
2: बिल्कुल नहीं, सेहत का काम धक्का देकर नहीं, ठहर कर करना पड़ता है।
0: और शायद यही इस पूरे सिलसिले का सबसे बड़ी सीख है, सुरक्षा एक घटना नहीं, प्रक्रिया है। जानकारी, सवाल, सेवा, टीका, जांच और सामूहिक जिम्मेदारी, इन्हीं से भविष्य सुरक्षित होता है। हम सब मिलकर आज ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
2: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
0: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
2: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
1: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
0: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
2: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा, तभी भारत समृद्ध बनेगा।
0: सेहत सही तो लाभ कई।
1: सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6। अब मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में।

0: टायर लो सोना जीतो।
1: क्या?
0: जी हाँ,
2: चावला टायर
0: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
4: अपोजिट
3: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: ऑफर वैलिड टिल 10th June। TNC अप्लाई।
5: हाय दयन एनर्जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
6: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं बाराती भी सजने आते हैं।
7: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
6: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।

0: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।
1: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
2: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर, 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद,
3: कॉल 8826213131।
4: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़, रेडियो बजाते रहो, गुनगुनाते रहो, और मैं हूं आपका दोस्त आरजे राज। एक बार फिर हाजिर हूं आपके पसंदीदा साप्ताहिक शो सेहत सही लाभ कई में के एक खास एपिसोड के साथ। दोस्तों आज है 5 जून, यानी विश्व पर्यावरण दिवस। इस साल की थीम है वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। क्या आप जानते हैं ये दिन हर साल संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है ताकि हम सभी पर्यावरण की रक्षा के लिए मिलकर कदम उठा सकें। इस बार संयुक्त राष्ट्र हमें प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या पर गंभीरता

0: हमारे गांव बल्कि पूरी दुनिया के लिए अहम है और सभी समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन फिर भी प्लास्टिक का इस्तेमाल कम नहीं हो रहा।
1: ये तो सोचने वाली बात है, प्लास्टिक तो जैसे दीमक बन गया है। सुबह उठते ही प्लास्टिक का टूथब्रश, प्लास्टिक के दूध की थैली, प्लास्टिक का टिफिन बॉक्स, प्लास्टिक बैग में बाजार से सब्जी, स्नैक्स, चिप्स, बिस्किट, सब प्लास्टिक पैकेजिंग में आता है। और सोचिए, ये सारे पैकेट जिसमें हम सब्जी ले आते हैं या कोई और सामान, उसे तो एक बार इस्तेमाल करके हम फेंक देते हैं, लेकिन ये प्लास्टिक सैकड़ों सालों तक सड़ता नहीं है और हमारी सेहत पर बुरा असर डालता है।
0: और ये सिर्फ इंसान के लिए नहीं बल्कि जानवरों, पर्यावरण और प्रकृति के लिए भी खतरनाक है। यही प्लास्टिक हमारी नदियों, नालों और खेतों में जमा हो जाता है। जानवर इसे खाकर बीमार पड़ जाते हैं। गौशाला में भी कई गायों के पेट से प्लास्टिक की थैलियां निकाली हैं। सोचिए, जब जानवरों का हाल इतना बुरा है तो हमारे लिए कितना नुकसानदायक होगा।
1: प्लास्टिक की बोतलें, पैकेट, जाल जैसी चीजें समुद्र में जा रही हैं और वहाँ रहने वाली मछलियों, कछुओं और पक्षियों की जिंदगी खतरे में डाल रही हैं। हर साल लाखों समुद्री जीव प्लास्टिक निकलने या उसमें फंसकर मर जाते हैं।
0: जहाँ एक तरफ इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है, वहाँ सालों से इसके खिलाफ मुहिम भी चलाई जा रही है। मुझे याद है, जब हम बच्चे थे तो स्कूल में हमें नारे लगवाने के लिए रेलियों में भेजा जाता था, धरती माँ करे पुकार, प्लास्टिक से साफ रखो इसका दरबार। हम तो घर घर जाकर लोगों के घरों से प्लास्टिक की थैलियाँ भी इकट्ठा करते थे। एक एनजीओ उन्हें हमारे स्कूल से ले लेती। इस काम के लिए हमें टी शर्ट भी मिलती थी। उस समय जब हम सोचते थे कि ये सिर्फ स्कूल के बच्चों का काम है, लेकिन आज समझ आता है कि पर्यावरण की रक्षा ना स्कूल के बच्चों की ना एनजीओ की है, हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: और बच्चों की बात करें तो छोटे सांप सैयद सिंह भी तो अब अपने स्कूल में ग्रीन ब्रिगेड के हेड हैं। उसने तो पूरे गांव में हर घर में जाकर सबको समझा दिया, अब प्लास्टिक की थैलियां नहीं लानी, सामान लेना है, अपने कपड़ों के झोले ले जाओ और उसी में सामान लाओ। आप ही के कदमों पर चल रहा है आपका बेटा।
0: हाँ जी, उसका जोश देखकर अच्छा लगता है। पर सच बताऊं तो उसकी 5 जून की स्पीच में भी मैंने उसकी काफी मदद की है। रिसर्च है कि उसमें मेरे साथ, लेकिन असली पूरी बस्ती को समझाने की चुनौती उसी ने ली है। अभी तो हर दुकान और ठेले वाले के पास जाने का बीड़ा उठाया है इन बच्चों ने।
1: बिल्कुल भाभी, वैसे एक बात बताइए, आपने तो इस विषय पर काफी रिसर्च कर ली है, ये विश्व पर्यावरण दिवस शुरू कब हुआ?
0: इसकी शुरुआत 1972 में हुई थी, जब स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। तभी से हर साल 5 जून को ये दिन मनाया जाता है, ताकि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए लोगों को जोड़ा जा सके। हर साल एक नई थीम अनाउंस होती है
1: और इस साल की थीम है प्लास्टिक प्रदूषण। हमने कुछ बातें तो की हैं, लेकिन आखिर प्लास्टिक हमारी सेहत के लिए इतना खतरनाक क्यों है?
0: देखिए, प्लास्टिक की सबसे बड़ी समस्या है कि ये जल्दी नष्ट नहीं होता। एक बार बना तो सैकड़ों साल बना रहेगा और जब ये टूटता है तो माइक्रो प्लास्टिक बनता है, जो मिट्टी, पानी और हवा में मिल जाता है और अब तो हमारे शरीर में भी घुस गया है।
1: शरीर में प्लास्टिक, भाभी ये तो डराने वाली बात है।
0: हाँ, सच्चाई तो यही है। जब हम प्लास्टिक की बोतलों में पानी पीते हैं या प्लास्टिक कंटेनरों में खाना गर्म करते हैं, तो उससे निकलने वाले केमिकल हमारे शरीर में जाते हैं। इससे हार्मोन गड़बड़ हो सकते हैं, बांझपन, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं।
1: और ये माइक्रोप्लास्टिक आखिर होता क्या है?
0: बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में होते हैं। ये नमक, शहद, दूध या यहाँ तक कि हवा में भी पाए जाते हैं। जब जानवर इन्हें निगल लेते हैं तो वह बीमार पड़ते हैं, और जब हम वो मछली खाते हैं या दूध पीते हैं तो ये हमारे शरीर में पहुँचता है।
1: और कई गाँव में लोग प्लास्टिक जलाते हैं, कुछ महिला तो इसे ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल करती हैं।
0: ये तो और भी खतरनाक है। प्लास्टिक को जलाने से निकलती हैं जहरीली गैस डाइऑक्सिन, फिरॉन जैसे, ये फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है, बच्चों की ग्रोथ पर असर डालती है, और अगर बारिश हो रही हो तो ये गैस पानी में घुलकर जमीन और फसलों को भी प्रदूषित कर देती है।
1: तो समाधान क्या है भाभी?
0: समाधान है रिफ्यूज, रिड्यूस, रिसाइकल, रियूज। रिफ्यूज यानी जो प्लास्टिक जरूरी नहीं उसे लेने से मना कर दो। रिड्यूस मतलब जितना कम इस्तेमाल हो सके उतना कम करो। रियूज एक ऐसी चीज को बार बार उपयोग में लाओ। रिसाइकल, प्लास्टिक को सही तरीके से इकट्ठा करके रिसाइकल करो।
1: और प्लास्टिक बैंक की बात आपने की थी।
0: हाँ, प्लास्टिक बैंक एक ऐसा ढांचा है जिसमें लोग अपना प्लास्टिक डाल सकते हैं।
1: मैं समझ नहीं पा रहा कि ये बैंक कैसे हो सकता है, क्या आप समझा सकती हैं कि ये असल में क्या है?
0: बिल्कुल, आप एक

0: ऐसे मजबूत पिंजरे जैसे संचारण की कल्पना कीजिए जो आमतौर पर पहले लोहे की जाल या बांस से बनी होती हैं। इसमें एक छोटा सा मुंह होता है जहां लोग अपना प्लास्टिक कचरा डाल सकते हैं। इस ढांचे को प्लास्टिक बैंक कहा जाता है। इसे प्रमुख सार्वजनिक जगहों पर लगाया जा सकता है जैसे स्कूल, मंदिर, बाजार या पंचायत कार्यालय के पास, ताकि गांव का हर व्यक्ति आसानी से इसका उपयोग कर सके। जैसे बैंक में पैसे को सुरक्षित रखते हैं, वैसे ही प्लास्टिक कचरे को एक जगह इकट्ठा करके उसे सड़कों पर फैलाने, नालियों में जाने और गायों जैसे जानवरों की गलती से खा लेने से रोकता है। और सीमेंट का बेस देकर बनाया जाए तो बारिश में भी टिकाऊ रहेगा।
1: ओ, तो सिर्फ प्लास्टिक बैंक लगाना ही काफी नहीं, बल्कि ये भी सुनिश्चित करना होगा कि इसका सही उपयोग हो और इनकी देखभाल होती रहे। इसके सही इस्तेमाल के लिए ग्राम पंचायतों को आगे आना होगा। पंचायत के साथ मिलकर जागरूकता फैलाकर और इस पहल को अपनाकर समुदाय भी इसमें अहम भूमिका निभा सकता है।
0: पंचायत ही क्यों, जैसे मैंने कहा, स्कूल, कॉलेज, बैंक, सरकारी और प्राइवेट दफ्तर कोई भी लगा सकता है, लेकिन भर जाने पर इन्हें खाली करना और उस प्लास्टिक को रिसाइकल या इस्तेमाल के लिए कदम उठाना जरूरी है।
1: लेकिन पंचायतों को क्या करना चाहिए?
0: पंचायतों को खुद आगे आकर लोगों को जोड़ना चाहिए। महिला मंडली, युवक मंडली और स्कूल मिलकर इसे आंदोलन को बढ़ा सकते हैं।
1: और महिलाएं भी क्या इस काम में भाग ले रही हैं?
0: हाँ, बहुत से स्वयं सहायता समूह अब इस पर काम कर रहे हैं। हमारी समिति ने भी अब तय किया है, अब से कपड़े के थैले ही चलेंगे। हमारे SHG की महिलाएं कपड़े के झोले बनाकर बेच रही हैं और प्लास्टिक बोतलें इकट्ठा करके रिसाइकल यूनिट को दे रही हैं।
1: और क्या ग्रामीण क्षेत्रों में कोई और समाधान अपनाए जा रहे हैं?
0: हाँ, कई गांवों में तो ग्रे वाटर यानी बर्तन और कपड़े धोने का पानी रसोई बगीचे में दिया जाता है। इससे सब्जियां भी उगाते हैं और पानी की बर्बादी भी नहीं होती।
1: और सरकार क्या कर रही है?
0: सरकार ने 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया है। स्वच्छता भारत मिशन में प्लास्टिक कचरे का प्रबंध प्लास्टिक से सड़कें बनाना और कंपनियों को EPR के तहत अपनी पैकिंग वापस लेने की जिम्मेदारी सौंपी है।
1: भाभी, कोई और उदाहरण है आपके पास जो प्रेरणा दे सके?
0: तमिलनाडु के कुछ जिलों में प्लास्टिक से दीवारें बनाई जा रही हैं जो गर्मियों में इंसुलेशन देते हैं, और कुछ जगह पर बांस के पेड़ों के नीचे कूड़े केंद्र बनाए गए हैं ताकि बदबू ना फैले।
1: और बच्चों का रोल?
0: बच्चों को शुरुआत सिखाना होगा कि प्लास्टिक जहर है। हमारे स्वस्थ सिंह अब स्कूल में स्टील की बोतल और टिफिन ले जाता है और भी बच्चों को प्रेरित किया है उसने। यही आदत बदलाव लाएगी।
1: बहुत सही कहा भाभी, लेकिन कई लोग के मैसेज आ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, क्या कहें उन्हें?
0: श्रोताओं, छोटा छोटा बदलाव ही बड़ा परिवर्तन लाता है। आप ये तो आज से ही शुरू कर सकते हैं। बाजार जाते समय थैला साथ रखें, प्लास्टिक बोतल दोबारा इस्तेमाल ना करें, बच्चों को टिफिन और पानी स्टील के बर्तन में दें, गीला और सूखा कचरा अलग अलग करें, प्लास्टिक बैंक की पहल को समर्थन दें।
1: प्लास्टिक बैन का मुद्दा तो पंचायत के चुनाव में भी उठाया जाना चाहिए।
0: बिल्कुल, जब लोग वोट मांगने आए तो उनसे पूछिए क्या आप प्लास्टिक के खिलाफ काम करेंगे, क्या गांव में कूड़ा प्रबंध की व्यवस्था बनाएंगे।
1: दोस्तों, जब तक जनता की भागीदारी नहीं होगी कोई भी योजना पूरी नहीं हो सकती। सरकार और संस्थाएं तभी सफल होंगी जब हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे और एक प्लास्टिक फ्री माहौल के प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे।
0: सोचिए, क्या हम ऐसा भविष्य चाहते हैं जहां हर नदी, हर खेत, हर शरीर में प्लास्टिक भरा हो, या फिर ऐसा भविष्य जहां हमारी धरती मुस्कुराए, हवा शुद्ध हो और पानी निर्मल हो। दोस्तों, प्लास्टिक नहीं, प्रकृति से प्यार करो, धरती माँ को अब और न बीमार करो।
1: वाह भाभी, यही भावना हमें चाहिए। तो साथियों, आज विश्व पर्यावरण दिवस पर हम सब 4R को अपनाने का संकल्प लें, यानी प्लास्टिक को रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल करें। हम अपनी आदतों में छोटे छोटे बदलाव लाकर बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। तो चलिए, आज हम सब मिलकर एक शपथ लेते हैं।
0: मैं शपथ लेती हूँ, मैं प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करूंगी, अपने परिवार और गांव को स्वच्छ बनाए रखने के लिए 4R का पालन करूंगी और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करूंगी।
1: साथियों, यही हमारी असली सेवा है। इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पर्यावरण बचाइए, प्लास्टिक से दूरी बनाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं लेता हूँ अभी के लिए अलविदा। आप सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 MHz, रेडियो बजाते रहो, गुनगुनाते रहो। जल्दी मुलाकात करेंगे एक और नई एपिसोड के साथ, एक नई बात के साथ जो आपकी सेहत के लिए हो सकती है लाभदायक।

0: कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत तटस्थ रखा गया है।
1: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
0: बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। उद्योग संगठन एसोचैम ने RBI के रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा है कि यह विकास को गति देगा और उद्योग जगत को मजबूती प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक विशाल जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे।
2: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4-लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुँच में सुधार होगा। जनकल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 24 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ESIC अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचा यात्रा गति पकड़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एयर ट्रंक ने भारत में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने और 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ये देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। गृह मंत्री अमित शाह त्रिपुरा के अगरतला में BSF के जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की हर सीमा की भौगोलिक और सुरक्षात्मक चुनौतियां अलग अलग हैं, इसलिए सभी सीमाओं पर एक जैसी रणनीति के बजाय स्मार्ट मॉडल अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पर्यावरण को लेकर कई कदम उठाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अनामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अनामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें बेंगलुरु विकास मंत्रालय देने का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें जल संसाधन मंत्रालय दिया गया। उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इससे झलकती है। नागालैंड सरकार ने राज्य में तंबाकू या निकोटीन युक्त सभी खाद्य उत्पादों के निर्माण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर 1 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध पान मसाला, सुगंधित और स्वादयुक्त चबाने योग्य उत्पादों के साथ साथ तंबाकू या निकोटीन युक्त किसी भी अन्य खाद्य पदार्थ पर लागू होता है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज गिरावट का रुख रहा। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 86 अंक फिसल कर 74,274 पर, जबकि निफ्टी 43 अंक लुढ़क कर 23,374 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ के शहर का अपना सामुदायिक रेडियो और आपका फेवरेट प्रोग्राम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। एक बार फिर से लेकर हाजिर हो गया हूँ मैं आपका दोस्त आनंद और मेरे साथ हैं
1: आरजे रीना।
0: यस दोस्तों, तो दोस्तों आज हम बात करेंगे विकास की, विरासत की और उन स्वादों की जो हमारी मिट्टी की खुशबू अपने अंदर समेटे हुए हैं।
1: और आज हम पहुँचे हैं पूर्वांचल के धड़कन यानी गोरखपुर में, जहाँ की बोली में अपनापन है और खाने में देसी स्वाद का जादू।
0: बिल्कुल, और आज का हमारा विषय है एक ऐसा व्यंजन जो गरीब से लेकर अमीर तक, छात्र से लेकर अधिकारी तक और हर किसी की पहली पसंद बन चुका है।
1: जी हाँ दोस्तों, आज बात होगी पूर्वी उत्तर प्रदेश के सबसे मशहूर देसी व्यंजन लिट्टी चोखा की।
0: वाह, नाम सुनते ही जैसे देसी घी की खुशबू हवा में घुल गई हो।
1: और अब इस स्वाद को नई पहचान देने जा रही है योगी सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन कुंजीन यानी ODOC योजना।
0: जिस तरह ODOP योजना ने प्रदेश के पारंपरिक उत्पादों को देश दुनिया तक पहुंचाया है, उसी तरह अब ODOC योजना जिलों के पारंपरिक व्यंजनों को ग्लोबली पहचान दिलाने जा रही है
1: और गोरखपुर जिले की पहचान के रूप में चुना गया है स्वाद और सेहत का अनोखा संगम लिट्टी चोखा।
0: दोस्तों लिट्टी चोखा सिर्फ एक व्यंजन नहीं है बल्कि पूर्व यूपी की संस्कृति, गाँव की मिट्टी और देसी जीवन शैली का हिस्सा है।
1: सही कहा, पहले गाँव में जब खेतों में काम खत्म होता था तो शाम को चूल्हे पर कड़े की धीमी आंच में लिट्टी सेकी जाती थी। पूरा परिवार एक साथ बैठकर उसे चोखा और घी के साथ खाता था।
0: यानी लिट्टी चोखा सिर्फ खाना नहीं बल्कि परिवार, अपनापन और परंपरा का स्वाद है।
1: और सबसे खास बात, यही स्वाद जितना लाजवाब है उतना ही सेहतमंद भी।
0: तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं आखिर लिट्टी बनती कैसे है।
1: सबसे पहले गेहूं के आटे को अच्छे से गूंधा जाता है, फिर उसके अंदर भरा जाता है चने का सत्तू।
0: लेकिन ये कोई साधारण भरावन नहीं होता, इसमें मिलाया जाता है अजवाइन, मुगरेला, लहसुन, हरी मिर्च, अचार का मसाला, नींबू और सबसे जरूरी देसी सरसों का तेल।
1: उफ, सोच कर ही भूख बढ़ जाए।
0: फिर इसी भरी हुई लिट्टी को कंडे यानी उपले की धीमी आंच पर धीरे धीरे सेका जाता है। लिट्टी को बार बार पलटा जाता है ताकि हर तरफ से वो सुनहरी और कुरकुरी हो जाए।
1: और जब गर्म गर्म लिट्टी तैयार होती है तो उसे देसी घी में डुबो दिया जाता है। घी की खुशबू और सत्तू का स्वाद, यही तो इसकी असली पहचान है।
0: अब बात करते हैं इसके साथ ही यानी चोखे की।
1: चोखा बनाने के लिए भुने हुए बैंगन, उबले आलू और टमाटर को अच्छे से मैश किया जाता है।
0: फिर उसमें डाला जाता है प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, धनिया, नमक और कच्चे सरसों के तेल की धार।
1: यही सरसों का तेल चोखा को वो देसी फ्लेवर देता है जो हर निवाले को खास बना देता है।
0: और दोस्तों जब गरम लिट्टी को तोड़कर उसमें चोखा भरकर खाया जाता है तो स्वाद सीधे दिल तक पहुंच जाता है।
1: यही वजह है कि गोरखपुर में लिट्टी चोखा हर वर्ग के लोगों की पसंद बन चुकी है।
0: छात्र संघ चौराहा, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, मेडिकल कॉलेज रोड, तारामंडल क्षेत्र, हर जगह आपको लिट्टी चोखे की दुकानें नजर आ जाएंगी।
1: छात्र हो, कामकाजी लोग, रिक्शा चालक, व्यापारी या पर्यटक, हर कोई बड़े चाव से लिट्टी चोखा खाता है
0: क्योंकि ये स्वादिष्ट भी है, पेट भरने वाला भी है और जेब पर भी भारी नहीं पड़ता।
1: और दोस्तों एक समय था जब लिट्टी चोखा सिर्फ ठेले और रेहड़ी पर मिल जाता था,
0: लेकिन अब वक्त बदल चुका है। आज गोरखपुर में आधुनिक आउटलेट्स खुल चुके हैं,
1: यानी देसी स्वाद अब मॉडल स्टाइल में भी लोगों को खूब पसंद आ रहा है।
0: कुछ आउटलेट्स में तो मिट्टी के कुल्हड़ में चोखा परोसा जाता है ताकि ये ग्राहकों को पूरा देसी अनुभव मिल सके।
1: और सोशल मीडिया के दौर में भी तो लोग पहले फोटो खींचते हैं फिर लिट्टी खाते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा अर्जेरीना।
1: इतना ही नहीं, अब दूसरे शहरों में फ्रेंचाइजी की मांग भी आने लगी है।
0: यानी लिट्टी चोखा अब सिर्फ गोरखपुर तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि

0: कि देश और दुनिया में भी अपनी पहचान बनाएगा।
1: सरकार भी इस दिशा में लगातार काम कर रही है।
2: सबसे पहले हमें अपना नाम बता दें।
3: मेरा नाम विकास श्रीवास्तव है मैम।
2: विकास जी, आपका ये प्रतिष्ठान कब से गोरखपुर में स्थापित है?
3: ये हमारा जो है 15 जनवरी से हम लोगों ने इसको ओपन किया है।
2: जी जी, तो बाटी चोखा ही क्यों?
3: बाटी चोखा क्या है कि हम लोगों ने पूर्वांचल की चीजों को देखा है और जो सबसे ज्यादा चलने वाली चीजें हैं, जैसे कि पूर्वांचल में बाटी चोखा एक रिलेटेड है अपने मट्टी की खुशबू को लेते हुए हम लोगों ने इस चीज को किया है। बाटी चोखा का कॉन्सेप्ट किया है। हर जगह जो है आजकल देखा जाए तो व्यंजन तो बहुत है, चाइनीज है, इंडियन है, कई चीजें मिल जाती हैं, जो अपनी मिट्टी की चीजें नहीं मिल पाती, इसलिए हम लोगों ने बाटी चोखा का कॉन्सेप्ट दिया कि भाई कुछ अपना किया जाए उसको।
2: जी जी, अच्छा, जहाँ इतने सारे चाइनीज विदेशी व्यंजन अब उपलब्ध हैं, तो आपको ये थोड़ा रिस्क नहीं लगा कि बाटी चोखा पे हम इतना बड़ा शोरूम बना रहे हैं, क्या हमारे पास कस्टमर्स आएंगे?
3: नहीं, इस दरअसल था ऐसा, लेकिन फिर मैंने ये अपना सोचा गया कि देखिए हमारा जो भी है, जो भी यहाँ रहते हैं, जो भी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं पूर्वांचल की मिट्टी से ही जुड़े हैं। आज भले वो कहीं भी रहें, किसी दुनिया के किसी भी कोने में, लेकिन वो उठे ही हैं देहात से। तो इसीलिए हमने बस इसको जो है इस पे जोर दिया गया है।
2: शहर में कई सारे बाटी चोखा के प्रतिष्ठान हैं, तो आपका स्पेशल क्या है?
3: हमारा देखिए स्पेशल क्या है कि हमारा जो बाटी चोखा है वो सॉफ्ट है
2: जी।
3: आप कई जगह खाई होंगी बाटी चोखा, तो जो उसकी परत होती है बहुत टाइट होती है, बच्चे नहीं खा सकते हैं। आप हमारे यहाँ खाएंगी तो बच्चे भी बहुत आराम से उस चीज को खा लेते हैं। हमारे यहाँ जो भी बाटी चोखा है बहुत सॉफ्ट होता है, एकदम मुलायम, वो हर तबके के, चाहे वो बूढ़े हों, बच्चे हों, सबको पसंद आएगा हमारा।
2: जी
4: जी, ये बताइए कि आपके यहाँ जो कस्टमर्स आते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा संख्या किसकी रहती है, युवा की रहती है या फिर फैमिली ज्यादा आती है?
3: तो ये हमारे यहाँ जो भी है फैमिलियाँ ज्यादा आती
4: हैं। फैमिली ज्यादा आती
3: जी मैम।
2: हमारे जो माननीय
3: माननीय
2: के द्वारा ये प्रोजेक्ट चलाया गया, एक जनपद एक व्यंजन,
3: हाँ, एक जनपद एक व्यंजन
2: जी, जिसके तहत हम आके आपसे बात कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे हमारे महाराज जी के लिए?
3: महाराज जी के लिए तो क्या कहा जाए, महाराज जी तो खैर अपने आप में खुद ही बहुत अच्छे सीएम है वो, और अगर उन्होंने कोई चीज पहल की है तो बहुत अच्छी पहल की है।
1: और दोस्तों, ODOC योजना सिर्फ व्यंजनों को पहचान दिलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे जुड़े कारीगरों, रसोइयों, छोटे दुकानदारों और उद्यमों को भी सीधे लाभ मिलने वाला है।
0: बिल्कुल, सरकार इस योजना के तहत लिट्टी चोखा बनाने और बेचने वाले लोगों को प्रशिक्षण, कौशल विकास और व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य कर रही है।
1: स्वयं सहायता समूह महिलाओं, उद्यमियों और युवाओं को भी इस पहल से जोड़कर स्वरोजगार के नए अवसर सृजित किए जा रहे हैं, ताकि स्थायी स्तर पर रोजगार को बढ़ावा मिल सके।
0: साथ ही बेहतर ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग की सुविधा के माध्यम से छोटे विक्रेताओं और पारंपरिक व्यंजन तैयार करने वाले लोगों को बड़े बाजारों तक पहुँचने का अवसर मिल सके।
1: इससे उनकी आय में वृद्धि होगी और स्थानीय खाद्य व्यवसायों को नई पहचान मिलेगी।
0: यानी ODOC योजना स्वाद को दुनिया तक पहुंचाने की पहल नहीं है, बल्कि स्थानीय कारीगरों, दुकानदारों और उद्यमों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम है।
1: पर्यटन विभाग भी अब प्रमुख आयोजनों और पर्यटन स्थलों पर लिट्टी चोखा के विशेष स्टॉल लगने जा रहे हैं।
0: यूपी दिवस के समारोह में भी लिट्टी चोखे का स्टॉल लोगों को आकर्षण का केंद्र बना देता है।
1: और सच कहें तो लिट्टी चोखा सिर्फ एक व्यंजन नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की एक स्वादिष्ट मिसाल है,
0: क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाली हर चीज देसी और प्राकृतिक होती है।
1: गेहूं, सत्तू, सरसों का तेल, बैंगन, टमाटर, सब कुछ स्थायी किसानों और बाजारों में आता है।
0: यानी इस एक व्यंजन से किसान, हलवाई, दुकानदार और छोटे कारोबारी सभी को रोजगार मिलता है।
1: यही तो है ODOC योजना की सबसे बड़ी ताकत, स्थानीय स्वाद को वैश्विक पहचान देना।
0: दोस्तों, आज फास्ट फूड के दौर में लोग फिर से देसी और हेल्दी खाने की तरफ लौट रहे हैं,
1: और लिट्टी चोखा इस बदलाव का सबसे बेहतरीन उदाहरण बन चुका है।
0: देसी स्वाद, देसी खुशबू और देसी मिट्टी का एहसास, सब कुछ एक ही प्लेट में।
1: तो अगर आप कभी गोरखपुर आए तो यहाँ का लिट्टी चोखा जरूर खाइए,
0: क्योंकि एक बार जो इसका स्वाद चख ले वो इसे कभी नहीं भूल पाता।
1: और योगी सरकार की ODOC पहल अब इस स्वाद को दुनिया के हर कोने तक पहुँचाने की तैयारी में है।
0: तो दोस्तों, आज हमने जाना कैसे लिट्टी चोखा सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की संस्कृति, परंपरा और आत्मनिर्भरता की पहचान है,
1: और कैसे ODOC योजना स्थानीय व्यंजनों को नया बाजार, नई पहचान और नए अवसर दे रही हैं।
0: इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश के एक नए सफर में। नमस्कार।
5: तो दोस्तों, आप सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
6: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेकर आया है सुरक्षित मातृत्व और हाई रिस्क प्रेगनेंसी की बेहतरीन सुविधा। डॉक्टर सुदीप कौर स्त्री प्रसूति एवं बाचपन रोग विशेषज्ञ के साथ यहां मिलता है एडवांस लेबर रूम, NICU, ICU, हाई BP, शुगर, हार्ट किडनी प्रॉब्लम वाली प्रेगनेंसी का सफल इलाज, साथ ही ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी की विशेषज्ञ सलाह, IUI से लेकर हर सुविधा और 24/7 ब्लड बैंक भी उपलब्ध है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्रेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
2: आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। आनंद के साथ हैं आप और आज आनंद अकेला नहीं है। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। जी हाँ श्रोताओं, एक बार फिर से एक नए प्रोग्राम में हम हाजिर हो गए हैं और कुछ नया नया लेकर आए हैं एक बार फिर से। और आज सोच बदलो का जो टॉपिक है बहुत ही खूबसूरत है। आज का विषय है क्या कहेंगे लोग। अक्सर मैं और आप यही सोचते हैं ना कुछ भी करने से पहले कि यार अगर हमने ये किया तो लोग क्या सोचेंगे, वो किया तो लोग क्या सोचेंगे। हम लोगों के बारे में इतना सोचते हैं कि उनके बारे में सोच सोच के ना अपना फ्यूचर, टाइम, अपना एनर्जी सब कुछ आप कर लेते हैं। और इसी पर जो है बात करने के लिए मैंने एक नई मेहमान को स्टूडियो में आमंत्रित किया है और एक हमारी प्यारी सी होस्ट एंड दोस्त हैं और एक और दोस्त हैं, तो मतलब कुल मिला के 4 लोगों के टॉपिक पे 4 लोग आए हैं अपनी अपनी राय देने। सो सबसे पहले तो वेलकम, हाउ आर यू, कैसे हैं आप?
3: मैं बहुत बढ़िया हूँ आरजे, और मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है। कई बार मैं आ चुकी हूँ और आज मुझे ऐसा लग रहा है मैं पहली बार ही आई हूँ। हर बार मुझे एक न्यू फीलिंग आती है और मुझे हर बार लगता है कुछ नया है।
2: क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये नया जब हम आप लोग FM पे आते हो तो हमें भी लगता है कि हमारे साथ भी कुछ नया है। आपको देख के लग रहा है कि आज एक नई मेहमान है, मतलब कुछ नया है।
3: कुछ नया है
2: बिल्कुल। अपने बारे में थोड़ा बताओ हमारे सुनने वालों को।
3: मैं शैली सिंह, मैं प्रिंसिपल रही हूँ RSM पब्लिक स्कूल
2: जी
3: छजलैट, और रिसेंटली मैंने लास्ट ईयर जो जॉब स्विच करी कुछ कारणवश, और मैं जिम ट्रेनर भी हूँ। योगा जिम मेरा पैशन है, योगा मेरा मैं खुद के लिए करती हूँ, हाउसवाइफ हूँ अभी तो फिलहाल मैं।
2: तो आज का जो ये प्रोग्राम है इसका नाम है सोच बदलो, जैसे कि इसका नाम ही बताता है कि सोच को बदलना बहुत जरूरी है। आजकल हमारा युवा पीढ़ी सब लोग अपने मोबाइल तक ही सीमित रह गए, सबको मोबाइल में घुसने की आदत है, तो मुझे लगता है कि मोबाइल से बाहर निकल के सोच बदलने की जरूरत है, राइट? और हमारे साथ कुमकुम भी है, रीना भी है, तो आप लोगों का भी स्वागत है। आप लोग भी थोड़ा हेलो हाय करो इस प्रोग्राम में। हेलो बोलिए जी, सोच बदलो में आपका स्वागत है।
4: थैंक यू सो मच आरजे आनंद
2: जी।
4: मैं कुमकुम, आप सबकी प्यारी दोस्त, फिर से आपका एक और बार स्वागत करती हूँ मैम हमारे नए शो में
2: जिसका नाम है सोच बदलो।
4: जिसका नाम है सोच बदलो।
2: रीना जी आप कुछ बोलेंगी?
5: हेलो एवरीवन, मैं आरजे रीना, आप सभी मुझे जानते हैं और हम ढेर सारी बातें करने वाले सोच बदलो के ऊपर।
2: बिल्कुल जी, तो सोच बदलो में जैसे कि हमने आज टॉपिक उठाया है क्या कहेंगे लोग, तो सबसे पहले श्रोताओं आपको भी पता है जैसे कि मैंने आते ही जिक्र किया, हम अक्सर कोई भी चीज करते हैं तो हमारे दिमाग में हमारे जहन में एक ही बात आती है कि लोग क्या कहेंगे। तो शैली जी इस पे आपका क्या कहना है, क्या आपको लगता है कि ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि हर दुनिया का दूसरा इंसान यही सोचता है कुछ भी करने से पहले?
3: पहले तो मैं शैली सिंह आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। और 4 लोग क्या कहेंगे, ये ना बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे जितनी बात की जाए वो कम है। 4 लोग उस समय कहाँ होते हैं कि जब हमारे बच्चे की फीस नहीं जा रही होती है।
2: करेक्ट।
3: वो 4 लोग तब कहाँ होते हैं जब हमारे घर का चूल्हा नहीं जल रहा होता है। वो 4 लोग तब कहाँ होते हैं जब हमारे घर का कोई सदस्य हॉस्पिटल में होता है। वो 4 लोग तब कहाँ होते हैं जब हम बिल्कुल अकेले होते हैं और हमारे पास कोई नहीं होता जिनसे हम अपनी फीलिंग शेयर कर पाए। वो 4 लोग तभी क्यों आते हैं जब हम प्रोग्रेस कर रहे होते हैं, हमारे बच्चे अच्छी से पढ़ाई कर रहे होते हैं, हम ग्रो कर रहे होते हैं, वो 4 लोग तभी क्यों आते हैं?
2: करेक्ट।
3: तभी उनमें हमें हर चीज में कमियां क्यों दिखाई देती हैं? उससे पहले लाचार बेचार उनके सामने बने रहो तो उनके लिए अच्छे हैं। अगर आपने थोड़ा सा भी अपने मन की कर ली तो आप वहीं पे पूरे।
2: तो मतलब आपका कहने का ये है कि कुल मिला के इन 4 लोगों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, जब जब ये चीजें होती हैं तो ये 4 लोग गायब होते हैं, जब आपकी प्रोग्रेस शुरू होती है तो ये लोग।
3: उन 4 लोगों के बारे में नहीं सोचना है, वो 4 लोगों के बारे में आपको ये सोचना है कि अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है ठीक है, और आपके वो लोगों के कहने पे आप अपने बच्चों को घर नहीं भेज रहे हो पढ़ने के लिए, तो आप 4 लोगों की मत सुनिए। 4 लोग ये कह रहे हैं कि आप इसको बच्चे को अपनी अच्छी ये वाला कॉलेज खुद से बता रहे हैं कि यहाँ पे आपके
2: एडवाइस
3: कर रहे हैं कि, तब सुनिए आप उनकी। हमारे हेल्थ इश्यूज का कोई अगर हमें अच्छा सजेशन दे रहा है तब सुनिए आप उन लोगों की। हमारे घर में कोई बेरोजगार बच्चा है, उसे रोजगार दिला रहे हैं, तब सुनिए आप उनकी।
2: सही कहा आपने, बिल्कुल शैली जी आप बिल्कुल अच्छा कह रही हैं। और दोस्तों ये बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल फैक्ट है। मुझे भी ऐसे लगता है कि जब बात चार लोगों की आती है तो हम इतना ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं कि हम बहुत सारी चीजें खुद की खुद ही भूल जाते हैं, और जब एक्चुअल में हमें इन लोगों की जरूरत होती है तब ये लोग आते नहीं है, जब हमें इनकी जरूरत नहीं होती तब ये लोग आके टांगड़ आते हैं, है ना। बट ये चार लोग आज तक किसी को समझ में नहीं आए हैं, मुद्दे की बात यह है। क्यों कुमकुम, कभी तुम्हें लगा कि ये चार लोग तुमने देखे हैं कभी कहीं?
4: नहीं, वो चार लोग आपको हर जगह दिख जाएंगे, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन चार लोगों के सामने कैसे बिहेव करते हैं और किस तरह की से उनकी बातें अपने ऊपर लेते हैं।
2: और तुम रीना, तुम्हें क्या लगता है चार लोगों के बारे में?
5: मेरा मानना ये है कि चार लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, बस आप अपने ऊपर फोकस करो, अपने करियर पर ध्यान दो, क्योंकि जब आप चार लोगों की बात सुनोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे।
2: जी हाँ दोस्तों, चलिए एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो प्रोग्राम है सोच बदलो। थोड़ी देर में लौट कर आते हैं कुछ और खास बातों के साथ।

0: एक बार फिर से वेलकम बैक है आप सभी का। आपने ट्यून इन किया है एफएम मुरादाबाद और प्रोग्राम है सोच बदलो। श्रोताओं, जब भी कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, अपना सपना पूरा करना चाहते हैं या जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारे मन में एक ही सवाल आता है, क्या कहेंगे लोग? अगर मैं असफल हो गया तो लोग मुझ पर हंसेंगे, अगर लोग मुझ पर हंसेंगे तो मुझे बड़ी बेइज्जती होगी, मुझे बड़ी शर्म आएगी। कई बार तो ऐसा भी हो सकता है कि मुझे ऐसा लगेगा मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया है। कई बार लोगों के चक्कर में हम जो चीज हम करना चाहते हैं एक्चुअली वो कर नहीं पाते हैं, और इसी पर हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत है। तो शाली जी, क्या मुझे लगता है कि मुझे तो लगता है ऐसा कि लोगों को सोच बदलने की जरूरत है, आपको क्या लगता है, क्या हमें चार लोगों के बारे में सोचना चाहिए या अपना फ्यूचर अपना करियर सेट करने के बारे में सोचना चाहिए?
1: मेरा क्या सभी का मानना यही होना चाहिए कि चार लोगों को साइड करो, अपने करियर पे, अपने फैमिली पे और अपने आप पे फोकस करो, अपनी ग्रोथ के लिए फोकस करो। क्योंकि जब आपके पास एवरीथिंग होगा ना, पैसा पावर सब होगा, वो चार लोग आपके घर में ही बैठे नजर आएंगे और रोज नजर आएंगे।
0: बिल्कुल सही कहा, बहुत ही अच्छा बोला आपने शैली जी। डरते रहेंगे जो लोगों की बातों में आएंगे, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे जो लोगों की बातों में आएंगे। तुम्हें क्या लगता है कुमकुम?
2: मुझे भी यही लगता है कि जो लोग ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, उनको यही सोचना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे वो साइड में रख दिया जाए और खुद के सपनों की तरफ हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए।
0: ग्रेट जी, शैली जी कुछ कह रही हैं आप?
1: वो एक सॉन्ग है, राजेश खन्ना जी का है शायद, मेरे ख्याल से उसमें वही है कुछ।

0: कहेंगे।
1: ग्रेट, वेरी वेरी नाइस, बहुत अच्छा। चलिए अब जब शैली जी ने इतनी खूबसूरत आवाजों में इस गाने को गाई दिया, इतनी ब्यूटीफुल आवाज में, तो अब इस गाने को सुनी लेते हैं, फिर थोड़ी सी देर में लौट कर आते हैं सोच बदलों में।

0: इस गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत अभिनंदन। तो रीना, आपको क्या लगता है सोच बदलो प्रोग्राम के जरिए आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगी? क्या सच में उन्हें भी सोच बदलने की जरूरत है, चार लोगों को लेकर जो लोग सोचते हैं हम और आप अक्सर सोचते रहते हैं? मुझे नहीं पता तुम सोचती हो नहीं, मैं कभी कभी सोच लेता हूँ।
1: नहीं नहीं यार, मैं अक्सर सोचती हूँ और मुझे लगता है कि चार लोगों की जरूरत जब आपको पड़ती है वो आपके साथ नहीं खड़े होते, बल्कि जब आपको जरूरत नहीं होती तब आपके साथ रहते और बोलते यार तूने मुझे बताया क्यों नहीं, मैं तेरे साथ था, बस यार बताना चाहिए था ना। मतलब वो सहानुभूति देते हैं, आपको दिखाते कि मैं तेरा साथ हूँ, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ेगी तो वो आपके साथ नहीं आएंगे, बहाना बना लेते हैं कि यार मेरे पास कुछ काम है मैं भी नहीं आ सकता। तो ये है, तो बस आप अपने ऊपर ध्यान दो, बाकी दुनिया बोलने सुनने के लिए है।
0: बहुत अच्छा बोला रीना आपने, और मुझे भी लगता है श्रोताओं, देखिए सोच बदलने के साथ साथ ना अपने इरादों को भी बदलिए और लोगों की बातों को छोड़ के अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए, क्योंकि मुझे लगता है लाइफ आपकी है तो डिसीजन भी आपके होने चाहिए। क्यों शैली जी?
2: बिल्कुल, आजकल का जो सोशल मीडिया का जमाना है आप उसमें देखिए हमारी कितना फ्रेंड सर्कल फैला पड़ा है, कितना दोस्त है, ठीक है। लेकिन जब आप परेशान होंगे आपके मोबाइल में एक नंबर नहीं मिलेगा कि आप उसको डायल करें और कहें यार मैं बहुत परेशान हूँ आ जा।
0: करेक्ट,
2: वो एक नंबर नहीं होगा आपके पास।
0: बिल्कुल, और मुझे ऐसे लगता है कि चार लोगों को ना हम ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया पे भी आजकल वो चीज नहीं डालते हैं जो हमारी पसंद की है, वो डालते हैं जो लोगों को पसंद आए।
2: बिल्कुल,
0: है ना, वो इसलिए ताकि कोई डिप कमेंट ना कर दे। तो आजकल सोशल मीडिया की दुनिया में भी हम चार लोगों का सोच रहे होते हैं, जबकि हमारा अपना अपना खुद का प्रॉपर्टी है सोशल मीडिया। भाई अगर मेरा अकाउंट है तो मेरा अपना प्रॉपर्टी है, मैं उसका राजा हूँ, तो मुझे क्यों दुनिया के बारे में सोचना? जो मुझे अच्छा लगे मैं तो वो डालूंगा ना, बट फिर भी हम वहां भी लोगों का सोच रहे होते हैं कि नहीं यार अगर हमने ये चीज डाल दी तो इस पे लोगों के क्या कमेंट होंगे। स्पेशली लेडीज को मुझे लगता है बहुत जरूरत है सोच बदलने की, मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है। आप क्या कहेंगी?
2: मैं तो इस चीज को आनंद
0: एक्सेप्ट नहीं करती,
2: फेस करती हूँ रोज।
0: ओके, फेस कर,
2: मतलब जब से मेरी जब से मैं बड़ी हुई हूँ मैंने फेस करा, क्योंकि मैंने कभी लोगों की सुनी ही नहीं,
0: मतलब इसका
2: और मैं जब सुनी ही नहीं हूँ तो आज मेरे बच्चे सेटल हो रहे हैं, मैं ग्रो कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड और मेरा जो हस्बैंड का सपोर्ट है ना वो बहुत ज्यादा है। वो भी कहते हैं जो सही है वो सुनो, जो गलत है उसे मत सुनो।
0: करेक्ट करेक्ट, मुझे लगता है कि श्रोताओं सोच बदलनी सिर्फ लेडीज को नहीं जेंट्स को भी होगी, और जब तक हम सोच नहीं बदलेंगे तब तक चीजें अपनी जगह पे सेट नहीं होंगी। और यही हमारा भी एक मकसद है इस प्रोग्राम के जरिए कि हम आपको एक सही और सटीक मैसेज दे सकें, और ताकि हमारे आसपास में जो हमारे समाज में लोग हैं जब तक उनकी सोच नहीं बदलेगी तब तक चीजें सेटल नहीं होंगी। तो सोच बदलों का एक छोटा सा मकसद यही है कि हमें अपनी सोच को भी बदलना पड़ेगा समय के साथ साथ। जैसे हम अपना खान पान चेंज करते हैं, जैसे मौसम चेंज होता है, वैसे ही सोच का चेंज होना भी बहुत जरूरी है। क्या लगता है आपको मैम, जरूरी है ना?
1: मैं एक बात कहती हूँ, सुनो
0: प्लीज।
1: तुमने देखा होगा जब इंसान सामने होता है ना हम उसकी तारीफ नहीं कर पाते हैं, जब वही इंसान हमसे दूर चला जाता है हम फिर बोलते हैं यार वो इंसान था बहुत अच्छा, लेकिन कभी हमने उसके सामने नहीं बोला होगा। तो आप इतना क्यों सोचते हो यार किसी के बारे में, हम क्यों सोचे किसी के बारे में?
0: करेक्ट करेक्ट,
3: आप दोनों मैम की बातों से मुझे एक बात मेरी बहुत अच्छी याद आई कि जैसे मैं अपने कॉलेज टाइम में थी मैं भी बहुत सोचती थी कि चार लोग क्या कहेंगे, बट अब जब शादी के बाद मैंने अपनी सोच को बदला है कि लोगों को छोड़ो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दो, लोग तो कहेंगे जो कहना है, उनका काम है कहना। बट जब से उन चार लोगों में से कुछ ऐसे चार लोगों से मैं मिली हूँ जो मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि एक तो आप ही हो गए आज ही आनंद,
0: आपकी शादी होगी बताया नहीं था आपने मुझे, ये मेरे को आज ही पता चला है। अच्छा आगे बोलो
3: जी। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पीछे रह के खंजर भौंकने का काम करते हैं, तो उन लोगों से बच के मैं इन लोगों में आई हूँ। कुछ चार लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको पीछे खींचेंगे, कुछ चार लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको आगे बढ़ाएंगे।
0: करेक्ट, सही कहा है।
1: तो आप उनके साथ रहिए जो आपको आगे बढ़ाते हैं।
2: ये बात बहुत अच्छी है कि चार लोग बुरे ही नहीं होते हमेशा, हाँ, चार लोग
1: अच्छे भी होते हैं,
2: चार लोग केवल निगेटिव नहीं पॉजिटिव भी होते हैं।
0: क्या बात है, इसी इन्हीं पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं। एक और छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद लौट कर आते हैं। आप सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो
1: एफएम मुरादाबाद 89.6।

0: श्रोताओं, इस गीत के बाद आप सभी का स्वागत है और अब हमारा जाने का समय हो गया है। लेकिन जाने से पहले हम चार लोग हैं तो हम चार लोगों की एक एक मैसेज तो होनी चाहिए सोच बदलो प्रोग्राम को लेकर। जी शैली जी, आपका क्या संदेश होगा हमारे तमाम सुनने वालों के लिए?
1: मेरा संदेश तो सबसे पहले महिलाओं के लिए है कि सबसे पहले उन्हें बदलने की जरूरत है। हमारी बेटी या हमारा बेटा कहाँ जाएगा, किसके साथ शादी करेगा, कैसे पढ़ेगा, तो पहले वो अब जो घर की लीडर है वो है, उन्हें सोच बदलिए कि आपने बच्चों को दूसरे के ऊपर मत छोड़िए, उनको अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगता है, जो आपके बच्चों को ठीक लगता है वो करने दीजिए।
0: करेक्ट। और आप कुमकुम क्या कहेंगी?
2: मैं भी यही कहना चाहूंगी कि जैसे कि मैम ने कहा महिलाओं के लिए, मैं पुरुषों के लिए कहना चाहूंगी कि जो भी हस्बैंड है ना, वो अपनी वाइफ को जब सपोर्ट करते हैं तो वो आसमान छूती हैं, तो उनको पूरा सपोर्ट कीजिए और वो आगे

0: पीछे बातें होती रहेंगी। इनफैक्ट मैं तो ये भी जानता हूँ कि जब आप आगे बढ़ते हो ना तो आपको अच्छे लोग भी मिलते हैं। जैसे शैली जी ने कहा, नेगेटिव भी चार लोग नहीं होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। तो उन पॉजिटिव लोगों को तलाशिए, वो आपको जरूर आपके आसपास मिल जाएंगे। और बाकी चार पॉजिटिव लोग हम भी हैं, हमें आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, हम भी आपके साथ हैं। फिलहाल यहाँ से लेते हैं अब जाने की इजाजत। थैंक यू सो मच गाइज, आप हमारे प्रोग्राम में आए, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू कुमकुम। थैंक यू रीना। ओके चलो जी, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड पे इसी चैनल पर। तब तक के लिए सुनते रहिए
1: 89.6 FM रेडियो मुरादाबाद।
0: क्या बात,
2: रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।
0: चलिए गाइस, बाय बाय।

0: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
1: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
2: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर, 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
3: कॉल 8826213131।
4: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: नमस्कार श्रोताओ, आप सुन रहे हैं विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी रेडियो की जुबानी। आज नवरात्रि का चौथा दिन है। शक्ति की आराधना का यह पावन पर्व हमें नारी के दिव्य स्वरूपों से परिचित कराता है। नवरात्रि के इस चतुर्थ दिवस पर हम पूजन करते हैं माँ कुष्मांडा की, जिन्हें सृष्टि की आदि शक्ति और ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। माँ कुष्मांडा का स्वरूप हमें यह संदेश देता है कि सृजन, सकारात्मकता और ऊर्जा से ही नई संभावनाओं का जन्म होता है, और आज का उत्तर प्रदेश इसी सृजनशील शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार ने विकास की एक नई दिशा तय की है, जहां हर क्षेत्र में नवाचार, आत्मनिर्भरता और प्रगति को बढ़ावा मिल रहा है। आज प्रदेश की महिलाएं सिर्फ भागीदारी ही नहीं बल्कि विकास की अंगदूत बन चुकी हैं। चाहे वह स्वरोजगार हो, स्टार्टअप हो या फिर समाज में नेतृत्व की भूमिका, हर क्षेत्र में उनका योगदान है प्रदेश की प्रगति को नई ऊर्जा दे रहा है। विभिन्न योजनाओं और प्रयासों के माध्यम से एक ऐसा वातावरण तैयार हुआ है जहां महिलाएं अपने सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ रही हैं, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के साथ। तो आइए माँ कुष्मांडा की सृजन शक्ति और ऊर्जा से प्रेरणा लेकर हम सभी मिलकर विकास और नारी सशक्तिकरण के इस सफर को और गति दें। मैं हूँ आपका दोस्त आरजे राज और आप सुन रहे हैं विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी रेडियो की जुबानी। बने रहिए FM मुरादाबाद के साथ, जानने के लिए कि कैसे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चल रहा उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण विकास मिशन यानी UPSRLM उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में मील का पत्थर साबित हो रहा है।
1: कहते हैं कि जब कोई आपकी सहायता करते हैं तो उन्हें धन्यवाद करने में देरी नहीं करनी चाहिए। फिर चाहे वो मदद किसी दोस्त ने की हो या फिर रिश्तेदार ने या फिर खुद सरकार ने।
0: साथियों, विनय कुमारी का गांव घाटमपुर कानपुर में स्थित है, जहां के लोग बहुत सीधे साधे और जमीन से जुड़े हुए हैं। यहां आज भी पेड़ पौधे और धरती माता पूजी जाती हैं और यहां के निवासी प्रकृति को ही अपना सर्वत्र मानते हैं।
1: मैं 10वीं कक्षा में थी तब से मेरी रुचि खेती में बढ़ गई थी। स्कूल में मास्टर जी जब जीव ज्ञान पढ़ाते थे तो पूछे गए सवालों का जवाब देने के लिए मेरा हाथ सबसे पहले उठ जाता था।
0: 12वीं में अच्छे अंकों से पास होने के बाद विनय कुमारी ने BSc एग्रीकल्चर में दाखिला लिया और अपनी रुचि को पेशे में बदलने का निश्चय किया।
1: जहां मेरे साथ के सभी सहपाठी बड़े शहर में नौकरी करने को इच्छुक थे, मेरी मनसा अपने गांव के लिए कुछ करने की थी। पर अपनी कोशिश में मैं अकेली नहीं थी, मेरे साथ की थी मेरी सहेली किरण, जो क्लास में तो मुझसे जूनियर थी लेकिन जानकारी और समझदारी में आगे। उसने ही मुझे उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में बताया।
0: दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन यानी UPSRLM ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूह SHG के माध्यम से जोड़कर बैंकिंग सखी, सोलर शॉप और मधुमक्खी पालन जैसी योजनाओं द्वारा आर्थिक आत्मनिर्भरता प्रदान करता है। आज यह योजना उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के 826 ब्लॉकों में मौजूद है, 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को सशक्त बना रही है।
1: जैसे ही किरण ने मुझे इस योजना के बारे में बताया, हम दोनों ने जन सेवा केंद्र गए और सरकारी दफ्तरों से भी विस्तार में जानकारी ली। इसके बाद से तो हम दोनों सखियों ने ठान लिया था कि अपने साथ साथ गांव की हर एक महिला को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है।
0: श्रोताओं, हमारे देश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग अक्सर अपने पैसे निकालने या बैंक खातों की जानकारी अपडेट करने के लिए पास के शहरों में स्थित बैंक शाखाओं पर जाते हैं, जिससे वित्तीय सेवाओं तक पहुँचने की लागत बढ़ जाती है। ऐसा माना जाता है कि ग्रामीण महिलाएं अक्सर बैंकिंग लेन देन के लिए रिश्तेदारों या दोस्तों पर निर्भर रहती हैं। इसके अलावा गरीब लोग अक्सर बिचौलियों की भीड़ में परेशान रहते हैं। कई बार ये बिचौलिए गरीबों के फायदे के लिए लेन देन की प्रक्रिया को आसान बनाने का वादा करते हैं और बाद में धोखाधड़ी भी करते हैं। प्रौद्योगिकी की प्रगति और बैंकिंग सुविधाओं की पहुँच बढ़ने के बावजूद भारत में ग्रामीण निवासियों के लिए बैंकिंग सेवाओं में सुधार की गुंजाइश है और ऐसी चुनौतियों को खत्म करने के लिए ही प्रदेश सरकार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन चला रही है।
1: इस योजना के अंतर्गत हमें ट्रेनिंग दी गई, जिसमें हमें जैविक कृषि के कई पहलुओं को समझा और रासायनिक खादों का दुष्प्रभाव, बेस्ट डिकम्पोजिशन का महत्व, समय समय पर खेतों की मिट्टी की जांच एवं संतुलित उर्वरक प्रबंध मिशन, खेती और उन्नत बीजों के माध्यम से पैदावार में बढ़ोतरी करना, सरकारी सब्सिडी और कृषि यंत्रों में संबंधित तमाम तरीके की जानकारी प्राप्त की। मैंने अपने गांव में बजरंग बली सहायता समूह और किरण के महालक्ष्मी सहायता समूह बनाया और हम दोनों ने अपने अपने गांव की महिलाओं को अपने साथ जोड़ा।
0: दोस्तों, इस योजना के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट BC सखियों की नियुक्ति हेतु दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुरूप उत्तर प्रदेश सरकार ने BC सखी कार्यक्रम या मिशन एक ग्राम पंचायत एक BC सखी को अपनाया है, जिसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूह SHG की महिला सदस्यों को प्रशिक्षित और प्रमाणित करना है। SHG की यह अवधारणा महिलाओं पर केंद्रित सबसे बड़े ऋण और बचत कार्यक्रमों में से एक है, जिसका उद्देश्य वित्तीय निर्णयों में महिलाओं की भूमिका और स्थिति को बेहतर बनाना है। इसके बाद BC सखियां उन क्षेत्रों में भी बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर सकती हैं जहां बैंक की शाखाएं मौजूद नहीं हैं।
1: जब हमने अपने स्तर पर थोड़ी और जानकारी प्राप्त की तो पता चला कि इस कार्यक्रम के तहत BC सखियों को बैंक सेवा व्यवसाय की स्थिरता करने में मदद करने के लिए 6 महीने तक प्रति माह 4,000 की राशि प्रदान की जाती है। व्यवसाय बढ़ाने पर BC सखियों को उनके द्वारा किए गए लेन देन की राशि के आधार पर कमीशन का भुगतान किया जाता है, जो आमतौर पर लेन देन की राशि का यानी कि 0.20% या 0.32% होता है। संभावित महिला स्वयं सहायता समूह SHG सदस्यों को जिला स्तर पर ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों RSETI या अन्य चयनित स्थानों पर BC मॉडल का प्रशिक्षण किया जाता है। RSETI में पहले से ही बैंकिंग संवाददाता प्रशिक्षण पर ही 6 दिवसीय पाठ्यक्रम उपलब्ध है, जिसे भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय MORD द्वारा अधिसूचित किया गया है। प्रशिक्षुओं के प्रत्येक बैच को 6 दिन का प्रशिक्षण किया जाता है।
0: दोस्तों, उत्तर प्रदेश में COVID-19 महामारी के लॉकडाउन के बीच मई 2020 में 58,000 BC सखियों को तैयार करने के लक्ष्य के साथ यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। वर्तमान में राज्य में 38,435 BC सखियां कार्यरत हैं, जिन्हें भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान IIBF द्वारा प्रशिक्षित और प्रमाणित किया गया है। उत्तर प्रदेश में यह मॉडल समाज के उन वर्गों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने का एक किफायती और टिकाऊ यंत्र साबित हुआ है, जो बैंकिंग सुविधाओं से वंचित है।
1: आज प्रदेश सरकार और हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की वजह से यह संभव हो पाया है कि हमारे गांव की महिलाएं अपने आप को आर्थिक और सामाजिक तौर पर सशक्त महसूस करती। हमारे जीवन को यह नई दिशा देने के लिए योगी जी को अनेक धन्यवाद।
0: श्रोताओं, कानपुर के गांव घाटमपुर की इन दो कृषि सखियों का प्रयास उनके गाँव की दूसरी महिलाओं को आत्मनिर्भरता का रास्ता दिखा रहा है। इन सखियों ने अपनी मेहनत और सरकारी सहयोग से यह साबित कर दिया है कि यदि सही मार्गदर्शन और अवसर मिले तो महिलाएं कृषि के क्षेत्र में भी बड़ी सफलता हासिल कर सकती हैं। विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी रेडियो की जुबानी। आज के लिए बस इतना ही, फिर जुड़ेंगे आपसे लेकर उत्तर प्रदेश की जनता की सफलता की दूसरी कहानियों के साथ। पर तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ FM मुरादाबाद 89.6 MHz। रेडियो बजाते रहो, गुनगुनाते रहो। नमस्कार।
2: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी रेडियो की जुबानी। नई

0: 長会。
1: एक नए इतिहास के
2: नव निर्माण के 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश बना कनेक्टिविटी का केंद्र। 22 एक्सप्रेसवे, 90 राष्ट्रीय राजमार्ग, 16,000 किलोमीटर रेल नेटवर्क, हर क्षेत्र में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर,
3: जलमार्ग, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और एयरपोर्ट निवेश विकास को दे रहे नई दिशा। रेल, रोड, जलमार्ग और एयर कनेक्टिविटी हर नागरिक को जोड़ रही है विकास से। गर्व है इस बदलते उत्तर प्रदेश पर।
2: 2 से 22 एक्सप्रेसवे, बेहतर सड़कें, तेज कनेक्टिविटी, हर शहर हर गांव जुड़ रहा है विकास से। रेल, रोड और जलमार्ग बना रहे हैं उत्तर प्रदेश को मजबूत,
3: कनेक्टिविटी से समृद्ध। यही है नए उत्तर प्रदेश की पहचान।
1: विश्वास के एक नए इतिहास के।
4: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
5: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
4: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
6: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
7: अरे भाभी, आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
6: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
8: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ के शहर का अपना सामुदायिक रेडियो और आपका फेवरेट प्रोग्राम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। एक बार फिर से लेकर हाजिर हो गया हूँ मैं आपका दोस्त आनंद और मेरे साथ हैं
1: आरजे रीना।
0: यस दोस्तों, तो दोस्तों आज हम बात करेंगे विकास की, विरासत की और उन स्वादों की जो हमारी मिट्टी की खुशबू अपने अंदर समेटे हुए हैं।
1: और आज हम पहुँचे हैं पूर्वांचल के धड़कन यानी गोरखपुर में, जहाँ की बोली में अपनापन है और खाने में देसी स्वाद का जादू।
0: बिल्कुल, और आज का हमारा विषय है एक ऐसा व्यंजन जो गरीब से लेकर अमीर तक, छात्र से लेकर अधिकारी तक और हर किसी की पहली पसंद बन चुका है।
1: जी हाँ दोस्तों, आज बात होगी पूर्वी उत्तर प्रदेश के सबसे मशहूर देसी व्यंजन लिट्टी चोखा की।
0: वाह, नाम सुनते ही जैसे देसी घी की खुशबू हवा में घुल गई हो।
1: और अब इस स्वाद को नई पहचान देने जा रही है योगी सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन कुंजीन यानी ODOC योजना।
0: जिस तरह ODOP योजना ने प्रदेश के पारंपरिक उत्पादों को देश दुनिया तक पहुंचाया है, उसी तरह अब ODOC योजना जिलों के पारंपरिक व्यंजनों को ग्लोबली पहचान दिलाने जा रही है
1: और गोरखपुर जिले की पहचान के रूप में चुना गया है स्वाद और सेहत का अनोखा संगम लिट्टी चोखा।
0: दोस्तों लिट्टी चोखा सिर्फ एक व्यंजन नहीं है बल्कि पूर्व यूपी की संस्कृति, गाँव की मिट्टी और देसी जीवन शैली का हिस्सा है।
1: सही कहा, पहले गाँव में जब खेतों में काम खत्म होता था तो शाम को चूल्हे पर कड़े की धीमी आंच में लिट्टी सेकी जाती थी। पूरा परिवार एक साथ बैठकर उसे चोखा और घी के साथ खाता था।
0: यानी लिट्टी चोखा सिर्फ खाना नहीं बल्कि परिवार, अपनापन और परंपरा का स्वाद है।
1: और सबसे खास बात, यही स्वाद जितना लाजवाब है उतना ही सेहतमंद भी।
0: तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं आखिर लिट्टी बनती कैसे है।
1: सबसे पहले गेहूं के आटे को अच्छे से गूंधा जाता है, फिर उसके अंदर भरा जाता है चने का सत्तू।
0: लेकिन ये कोई साधारण भरावन नहीं होता, इसमें मिलाया जाता है अजवाइन, मुगरेला, लहसुन, हरी मिर्च, अचार का मसाला, नींबू और सबसे जरूरी देसी सरसों का तेल।
1: उफ़, सोच कर ही भूख बढ़ जाए।
0: फिर इसी भरी हुई लिट्टी को कंडे यानी उपले की धीमी आंच पर धीरे धीरे सेका जाता है। लिट्टी को बार बार पलटा जाता है ताकि हर तरफ से वो सुनहरी और कुरकुरी हो जाए।
1: और जब गर्म गर्म लिट्टी तैयार होती है तो उसे देसी घी में डुबो दिया जाता है। घी की खुशबू और सत्तू का स्वाद, यही तो इसकी असली पहचान है।
0: अब बात करते हैं इसके साथ ही यानी चोखे की।
1: चोखा बनाने के लिए भुने हुए बैंगन, उबले आलू और टमाटर को अच्छे से मैश किया जाता है।
0: फिर उसमें डाला जाता है प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, धनिया, नमक और कच्चे सरसों के तेल की धार।
1: यही सरसों का तेल चोखा को वो देसी फ्लेवर देता है जो हर निवाले को खास बना देता है।
0: और दोस्तों, जब गरम लिट्टी को तोड़कर उसमें चोखा भरकर खाया जाता है तो स्वाद सीधे दिल तक पहुंच जाता है।
1: यही वजह है कि गोरखपुर में लिट्टी चोखा हर वर्ग के लोगों की पसंद बन चुकी है।
0: छात्र संघ चौराहा, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, मेडिकल कॉलेज रोड, तारामंडल क्षेत्र, हर जगह आपको लिट्टी चोखे की दुकानें नजर आ जाएंगी।
1: छात्र हो, कामकाजी लोग, रिक्शा चालक, व्यापारी या पर्यटक, हर कोई बड़े चाव से लिट्टी चोखा खाता है
0: क्योंकि ये स्वादिष्ट भी है, पेट भरने वाला भी है और जेब पर भी भारी नहीं पड़ता।
1: और दोस्तों, एक समय था जब लिट्टी चोखा सिर्फ ठेले और रेड़ी पर मिल जाता था,
0: लेकिन अब वक्त बदल चुका है। आज गोरखपुर में आधुनिक आउटलेट्स खुल चुके हैं,
1: यानी देसी स्वाद अब मॉडल स्टाइल में भी लोगों को खूब पसंद आ रहा है।
0: कुछ आउटलेट्स में तो मिट्टी के कुल्हड़ में चोखा परोसा जाता है ताकि ये ग्राहकों को पूरा देसी अनुभव मिल सके।
1: और सोशल मीडिया के दौर में भी तो लोग पहले फोटो खींचते हैं फिर लिट्टी खाते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा अर्जेरीना।
1: इतना ही नहीं, अब दूसरे शहरों में फ्रेंचाइजी की मांग भी आने लगी है।
0: यानी लिट्टी चोखा अब सिर्फ गोरखपुर तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि देश और दुनिया में भी अपनी पहचान बनाएगा।
1: सरकार भी इस दिशा में लगातार काम कर रही है।
2: सबसे पहले हमें अपना नाम बता दें।
3: मेरा नाम विकास श्रीवास्तव है मैम।
2: विकास जी, आपका ये प्रतिष्ठान कब से गोरखपुर में स्थापित है?
3: ये हमारा जो है 15 जनवरी से हम लोगों ने इसको ओपन किया है।
2: जी जी, तो बाटी चोखा ही क्यों?
3: बाटी चोखा क्या है कि हम लोगों ने पूर्वांचल की चीजों को देखा है और जो सबसे ज्यादा चलने वाली चीजें हैं, जैसे कि पूर्वांचल में बाटी चोखा एक रिलेटेड है, अपने मट्टी की खुशबू को लेते हुए हम लोगों ने इस चीज को किया है, बाटी चोखा का कॉन्सेप्ट किया है। हर जगह जो है आजकल देखा जाए तो व्यंजन तो बहुत है, चाइनीज है, इंडियन है, कई चीजें मिल जाती हैं जो अपनी मिट्टी की चीजें नहीं मिल पाती। इसलिए हम लोगों ने बाटी चोखा का कॉन्सेप्ट दिया कि भाई कुछ अपना किया जाए उसको।
2: जी जी। अच्छा, जहाँ इतने सारे चाइनीज विदेशी व्यंजन अब उपलब्ध हैं, तो आपको ये थोड़ा रिस्क नहीं लगा कि बाटी चोखा पे हम एक इतना बड़ा शोरूम बना रहे हैं, क्या हमारे पास कस्टमर्स आएंगे?
3: नहीं, दरअसल था ऐसा, लेकिन फिर मैंने ये अपना सोचा गया कि देखिए हमारा जो भी है, जो भी यहाँ रहते हैं, जो भी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं पूर्वांचल की मिट्टी से ही जुड़े हैं। आज भले वो कहीं भी रहें, किसी दुनिया के किसी भी कोने में, लेकिन वो उठे ही हैं देहात से। तो इसीलिए हमने बस इसको जो है इस पे जोर दिया गया।
2: शहर में कई सारे बाटी चोखा के प्रतिष्ठान है, तो आपका स्पेशल क्या है?
3: हमारा देखिए स्पेशल क्या है कि हमारा जो बाटी चोखा है वो सॉफ्ट है
2: जी।
3: आप कई जगह खाई होंगी बाटी चोखा, तो जो उसकी परत होती है बहुत टाइट होती है, बच्चे नहीं खा सकते हैं। आप हमारे यहाँ खाएंगी तो बच्चे भी बहुत आराम से उस चीज को खा लेते हैं। हमारे यहाँ जो भी बाटी चोखा है बहुत सॉफ्ट होता है, एकदम मुलायम, वो हर तबके के, चाहे वो बूढ़े हों, बच्चे हों, सबको पसंद आएगा हमारा।
2: जी
4: जी। ये बताइए कि आपके यहाँ जो कस्टमर्स आते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा संख्या किसकी रहती है, युवा की रहती है या फिर फैमिली ज्यादा आती है?
3: तो ये हमारे यहाँ जो भी है फैमिलियाँ ज्यादा आती
4: है। फैमिली ज्यादा आती
3: जी मैम।
2: हमारे जो माननीय के द्वारा ये प्रोजेक्ट चलाया गया एक जनपद एक व्यंजन,
3: हाँ एक जनपद एक व्यंजन,
2: जिसके तहत हम आके आपसे बात कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे हमारे महाराज जी के लिए?
3: महाराज जी के लिए तो क्या कहा जाए, महाराज जी तो खैर अपने आप में खुद ही बहुत अच्छे सीएम है वो, और अगर उन्होंने कोई चीज पहल की है तो बहुत अच्छी पहल की है।
1: और दोस्तों, ODOC योजना सिर्फ व्यंजनों को पहचान दिलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे जुड़े कारीगरों, रसोइयों, छोटे दुकानदारों और उद्यमों को भी सीधे लाभ मिलने वाला है।
5: बिल्कुल, सरकार इस योजना के तहत लिट्टी चोखा बनाने और बेचने वाले लोगों को प्रशिक्षण, कौशल विकास और व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य कर रही है।
1: स्वयं सहायता समूह महिलाओं, उद्यमियों और युवाओं को भी इस पहल से जोड़कर स्वरोजगार के नए अवसर सृजित किए जा रहे हैं, ताकि स्थायी स्तर पर रोजगार को बढ़ावा मिल सके।
5: साथ ही बेहतर ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग की सुविधा के माध्यम से छोटे विक्रेताओं और पारंपरिक व्यंजन तैयार करने वाले लोगों को बड़े बाजारों तक पहुँचने का अवसर मिल सके।
1: इससे उनकी आय में वृद्धि होगी और स्थानीय खाद्य व्यवसायों को नई पहचान मिलेगी।
5: यानी ODOC योजना स्वाद को दुनिया तक पहुंचाने की पहल नहीं है, बल्कि स्थानीय कारीगरों, दुकानदारों और उद्यमों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम है।
1: पर्यटन विभाग भी अब प्रमुख आयोजनों और पर्यटन स्थलों पर लिट्टी चोखा के विशेष स्टॉल लगने जा रहे हैं।
5: यूपी दिवस के समारोह में भी लिट्टी चोखे का स्टॉल लोगों को आकर्षण का केंद्र बना देता है।
1: और सच कहें तो लिट्टी चोखा सिर्फ एक व्यंजन नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की एक स्वादिष्ट मिसाल है,
5: क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाली हर चीज देसी और प्राकृतिक होती है।
1: गेहूं, सत्तू, सरसों का तेल, बैंगन, टमाटर, सब कुछ स्थायी किसानों और बाजारों में आता है।
5: यानी इस एक व्यंजन से किसान, हलवाई, दुकानदार और छोटे कारोबारी सभी को रोजगार मिलता है।
1: यही तो है ODOC योजना की सबसे बड़ी ताकत, स्थानीय स्वाद को वैश्विक पहचान देना।
5: दोस्तों, आज फास्ट फूड के दौर में लोग फिर से देसी और हेल्दी खाने की तरफ लौट रहे हैं,
1: और लिट्टी चोखा इस बदलाव का सबसे बेहतरीन उदाहरण बन चुका है।
5: देसी स्वाद, देसी खुशबू और देसी मिट्टी का एहसास, सब कुछ एक ही प्लेट में।
1: तो अगर आप कभी गोरखपुर आए तो यहाँ का लिट्टी चोखा जरूर खाइए,
5: क्योंकि एक बार जो इसका स्वाद चख ले वो इसे कभी नहीं भूल पाता।
1: और योगी सरकार की ODOC पहल अब इस स्वाद को दुनिया के हर कोने तक पहुँचाने की तैयारी में है।
5: तो दोस्तों, आज हमने जाना कैसे लिट्टी चोखा सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की संस्कृति, परंपरा और आत्मनिर्भरता की पहचान है,
1: और कैसे ODOC योजना स्थानीय व्यंजनों को नया बाजार, नई पहचान और नए अवसर दे रही है।
5: इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश के एक नए सफर में। नमस्कार। तो दोस्तों, आप सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
6: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने एफएम मुरादाबाद 89.6 पर, और शो का नाम है हेलो फरमाइश। मैं हूँ आपके साथ दोस्तों, आपकी अपनी खुशी। एंड साथियों, इस कार्यक्रम में आप भी मुझे कॉल कर सकते हैं और अपने पसंद के गीत यहाँ पर सुन सकते हैं, या फिर किसी स्पेशल को भी आप अपने डेडिकेट कर सकते हैं ट्रैक, कोई आपके जो बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली है, एंड या फिर आपका लाइफ पार्टनर, तो आप किसी को भी गाना डेडिकेट कर सकते हैं। ये गोल्डन चांस आपके पास है, आप फटाफट से हमें कॉल लगाओ, नंबर है 9837896896। और इस खूबसूरत सी दोपहर में आप सभी की दोपहर को आरजे खुशी बनाएगी और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल। एंड इस प्यारी सी मौसम में, देखिए गर्मी है, लेकिन गर्मी में जब ठंडे गाने चलते हैं ना, तो माइंड एकदम अपने आप ऑटोमेटिकली कूल हो जाता है ना। और अभी बात करते हैं अपने कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो।
0: हाँ जी सर, नमस्कार। हेलो फरमाइश, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम नरेंद्र सिंह।
0: जी जी जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मैं मानसरोवर।
0: जी बताइए सर, क्या करते हैं आप?
1: मैं गार्ड की नौकरी करता हूँ।
0: अच्छा सर, बताइएगा, और परिवार में सब कैसे हैं?
1: बढ़िया है
0: जी। बताइए सर, मानसरोवर में आप जॉब करते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो कितने घंटे आप ड्यूटी करते हैं अपनी?
1: 12 घंटे।
0: अच्छा 12 घंटे, तो सुबह कितने बजे आते हैं आप?
1: 7 बजे।
0: अच्छा शाम को 7 बजे तक?
1: हाँ शाम को 7 बजे।
0: ओके, और रेडियो भी सुनते रहते हैं?
1: रेडियो तो मैं कम से कम 1 साल से सुन रहा हूँ।
0: जी जी जी।
1: आपके प्रोग्राम में आज पहली बार लगी है।
0: पहली बार कॉल लगा है आपका?
1: जी
0: जी। बताइएगा सर, क्या फरमाइश है आज आपकी?
1: एक गाना सुना दीजिए, नाजायज फिल्म का नसरुद्दीन साने लाया है शराब के ऊपर।
0: कौन सा गीत है बताइए?
1: अभी बताता हूँ, एक मिनट होल्ड कीजिए।
0: अच्छा चलिए दोस्तों, सर अभी कह रहे हैं कि हम गाना बताते हैं आपको। कभी कभी ऐसा होता है ना दोस्तों कि हम लोग ना मतलब हमें यकीन नहीं होता कि हमारा कॉल लग जाएगा। रैंडमली हम ट्राई करते हैं और अचानक से हमारा कॉल रिसीव हो जाता है। हाँ जी,
1: दिल की तनाई से आवाज बना लेते हैं।
0: अच्छा, और ये गीत आप किनके साथ सुनना चाहते हैं सर?
1: अभी श्रोताओं के साथ और आपके साथ।
0: ठीक है, सुनवाते हैं प्यारा सा गीत, शुक्रिया। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं नरेंद्र जी की रिक्वेस्ट पर बहुत ही प्यारा सा गीत, और लौट कर आते हैं हम। तब तक आप हमें कॉल लगाइएगा, नंबर है 9837896896। रेडियो बजाते रहिए और ऐसे ही खूबसूरत गीत गुनगुनाते रहिए।

0: हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और शो चल रहा है आप सभी का फेवरेट हेलो फरमाइश। दोस्तों, यहां पर आप भी मुझे कॉल कर सकते हैं और अपने पसंद के गीत यहां पर सुनने का आपको अवसर मिलता है। 2 घंटे लाइव फोन इन कार्यक्रम होता है। और अभी आपने कुमार सानू जी की आवाज में बहुत ही प्यारा सा ट्रैक सुना। अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश जी, नमस्ते।
0: हाँ जी, आपको भी नमस्कार। क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम कार्तिक गुप्ता है, मैं लाइन पर मुरादाबाद से बोल रहा हूँ।
0: जी बताइए कार्तिक, कैसे हैं आप? काफी बहुत समय के बाद आपने कॉल किया है।
1: जी, आपने पहचान लिया है।
0: हाँ बिल्कुल पहचान लिया है, कैसे भूल जाएंगे बताइए अपने श्रोताओं को हम।
1: सही बात है,
0: हाँ
1: बहुत
0: जी।
1: टाइम हो गया, 1.5 साल हो गया शायद।
0: नहीं, 1.5 साल तो नहीं हुआ है।
1: हो गया, पहले तो भी टाइम सुनता था ना मैं।
0: हाँ, पहले आप मुझे कॉल किया करते थे, नाइट में भी कॉल किया करते थे, नाइट वाले शो में, राइट?
1: हाँ।
0: हाँ जी, हाँ जी, बताइएगा कैसे हैं आपके परिवार में सब?
1: सब बढ़िया है, शर्म बालाजी के यहाँ घूम के आए थे तो परेड चल रहे हैं।
0: अच्छा, मेहंदीपुर बालाजी महाराज जी के मंदिर।
1: हाँ,
0: तो वहाँ पे होता है ना, 41 डेज का होता है ना नियम जो होते हैं।
1: तो वो ही है, सेम 41 देगा।
0: हाँ, घर से बाहर भी नहीं जाते हैं ना
1: हाँ, इसलिए
0: जी।
1: रेडियो सुनना पड़ रहा है।
0: अच्छा, तो अच्छी बात है ना, ये अवसर आपको मिला है।
1: हाँ।
0: जी बताइएगा आप क्या सुनना चाहेंगे।
1: एक गाना है वो, तेरी झुकी नजर, सुना देना।
0: जी जी बिल्कुल सुनवाते हैं। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए,
1: थैंक यू।
0: मोस्ट वेलकम। तो चलिए विवन, सुनते हैं ये खूबसूरत सा ट्रैक, तेरी झुकी नज़र, बहुत ही प्यारा सा गाना। और मैं लौट कर आती हूँ, तब तक आप मुझे कॉल लगाइए, नंबर है 9837896896।

0: टायर लो सोना जीतो।
1: क्या?
0: जी हाँ,
2: चावला टायर
0: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
4: अपोजिट
3: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: ऑफर वैलिड टिल 10th June। TNC अप्लाई।
5: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सांसें सही, जिंदगी सही।
6: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
7: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
6: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
7: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
5: कॉल 7500153841।
8: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
9: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

0: हेलो हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। हेलो फरमाइश में आपका वेलकम है, खुशी आपके साथ है। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुई है। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश
0: हाँ जी, क्या नाम है आपका?
1: कतरा की रहने वाली हूँ। 2500 कतरा हुआ रामपुर में ही पड़ता है।
0: हाँ जी,
1: और मैं ना आपको सारे से बताने चाहूंगी मैम।
0: श्योर बताइए।
1: मैम कहते हैं कि भमरे तो करते हैं कलियों की चोरी, लेकिन दिल को चुराना काम है मेरा। भमरे तो करते हैं कलियों की चोरी, लेकिन दिल को चुराना काम है मेरा। हर शख्स को देती हूँ मोहब्बत की कली, यही तो इनाम है मेरा। बचाओ सितारे रहते हैं मेरे आंचल में, इसलिए तो क्षमा परवीन नाम है मेरा।
0: अरे वाह शमा, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने अपने नाम को बयां किया, बताया है। बताइएगा क्या करती हैं आप और क्या कर रही हैं अभी इस वक्त?
1: मैं एक रेडियो की आरजी हूँ आपकी जैसी, लेकिन आपसे तो कम हूँ। लेकिन हाँ, मैं फोन प्रोग्राम का शुरू करती हूँ।
0: ओके ग्रेट
1: और
0: यार।
1: मुझे रेडियो पर बात करना, श्रोताओं से बात करना मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है मैम।
0: हाँ, वो आपकी आवाज में झलक रहा है कि आपको पसंद है और आपकी आवाज भी बहुत प्यारी है शमा
1: और
0: जी।
1: मैं रेडियो की बहुत बड़ी दीवानी हूँ।

0: आचार्य का बहुत शेयर करती हूँ मैं।
1: ये दीवानगी ना ऐसी हमेशा बरकरार रखिएगा
0: जी।
1: तो बताइएगा आज क्या सुनना चाहते हो शमा?
0: मैं मूवी का नाम रहेगा छुपा रुस्तम और गीत के बोल रहेंगे ये चांद कोई दीवाना है कोई आशिक बड़ा पुराना है।
1: अरे वाह वाह क्या बात है।
0: ये चैनल हमें मुरादाबाद का चैनल अपने रेडियो डीएफटी बल्कि आरजो से मिला और ये नंबर आपका हमें हाजी जफर अंकल ने दिया।
1: हाँ जी सर से हमारी बातचीत होती है हेलो फरमाइश में वो भी हमें कॉल करते हैं जी।
0: मुझे बहुत ही अच्छा लगता है मैम आप लोगों से बातें करना।
1: सेम पिंच हमें भी अच्छा लगता है जब इतनी प्यारी प्यारी हमारी प्यारी सी लिसनर्स कनेक्ट होती हैं। बताइएगा
0: मैं कुछ सोचता हूँ कि नाम लेना चाहूँगी।
1: हाँ हाँ मैं
0: जाते दो लाइनें कहना चाहूँगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल श्योर बताइएगा
0: मैम। जैसे सोचता है रुकैया फातिमा और निकट फातिमा और अफरोज फातिमा और हाजी गफ्फार अंकल जी। और जाते जाते दो लाइनें कहना चाहूंगी।
1: बिल्कुल
0: मैम कहते हैं कि उनसे आई जवानी और हम जवान हो गए उनके आई जवानी और हम जवान हो गए उनको देखा और हम हैरान हो गए प्यार करना है तो करना लैला मजनू के जैसी हरे हुए कि दूजे से कुर्बान हो गए।
1: अरे वाह बहुत ही खूबसूरत शायरी है आपकी शमा।
0: थैंक यू मैम।
1: मोस्ट वेलकम। ऐसे ही अपना ख्याल रखो और शायराना अंदाज ऐसे ही बनाए रखो अपना। नेक्स्ट टाइम फिर कॉल करना हमें इंतजार रहेगा। ओके बाय टेक केयर बाय। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं शमा की पसंद पर ये प्यारा सा ट्रैक ये चांद कोई दीवाना है अलका याग्निक साथ में कुमार सानू जी की बहुत ही प्यारी सी आवाज। लौट कर आते हैं हम तब तक आप भी कॉल लगाइए मोबाइल नंबर है 9837896896।

0: हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपकी अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ। और श्रोताओं, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा ट्रैक एंजॉय किया। एंड वक्त अगर हम आपको बताएं तो दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ी में अभी समय हुआ है 3:41। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: जय श्री राम मैम।
0: आपको भी जय श्री राम। अपना नाम बताइएगा सर।
1: जी मैं दुर्गे सैनी बोल रहा था, ग्राम कल्याणपुर से।
0: जी जी बताइएगा दुर्गे सैनी जी, कैसे हैं आप?
1: जी मैम हम तो बढ़िया हैं, आपके आप बढ़िया हो, आपके परिवार में सब बढ़िया है?
0: हाँ जी हाँ जी, बहुत ही अच्छे हैं। आज तो आपकी छुट्टी है, आराम कर रहे हैं आप?
1: जी मैम।
0: जी
1: फोन लगता है हमारा।
0: हाँ, छुट्टी में आपका फोन लग जाता है। कैसे लगता है आपको छुट्टी में जब आपका कॉल लगता है?
1: बिल्कुल मैम, बस ऐसा लगता है अगर वो छुट्टी रहे।
0: अच्छा हाँ, वो तो सही कह रहे हैं।
1: काम ही ऐसा है।
0: बिल्कुल,
1: काम ही हमारे ऐसा है, क्या करा जाए।
0: बहुत बारीकी का काम है आपका। और पता है सर, जब एक दिन की छुट्टी होती है ना, तो एक दिन कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता है।
1: जी मैम, हाँ पता ही नहीं चलता बिल्कुल।
0: हाँ, आप बताइएगा आज कौन सा गाना सुनेंगे आप सर?
1: दोस्ती के ऊपर कोई गाना सुना दीजिए।
0: अच्छा ठीक है।
1: हमारा हमारा दोस्त कल जाने वाला है मुंबई,
0: अच्छा
1: बबलू सैनी।
0: हाँ जी हाँ जी, ठीक है सर। आपके दोस्तों के साथ ये प्यारा सा गीत आपको सुनवाते हैं। दोस्ती में बहुत ही खूबसूरत सा गाना है दोस्ती के ऊपर, आप इसको सुनिएगा। और दोस्तों, आप भी हमें कॉल लगाइएगा, नंबर है 9837 8 9 6 8 9 6। बहुत ही खूबसूरत सा गाना है ये, दोस्ती तेरे दम से है। और दोस्ती का रिश्ता बहुत प्यारा होता है ना दोस्तों, पता है? दोस्ती का रिश्ता ऐसा होता है कि जब दो दोस्त मिलते हैं ना, तो इतनी बातें हो जाती हैं, बातें ख़त्म ही नहीं होती हैं, वक्त गुजर जाता है। लेकिन जब दोस्त दूर होते हैं तो यादें इतनी हो जाती हैं, यादें बहुत लंबी हो जाती हैं ना। और ये प्यारा से गाना सुनिएगा, मैं लौट कर आती हूँ।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सांसें सही, जिंदगी सही।
3: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
4: अरे बेटा, बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
3: पर पापा।
4: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
5: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
6: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
5: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

0: हेलो हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हेलो फरमाइश शो में। खुशी आपके साथ है। और दोस्तों देखिए, आप अपनी पसंद की यहाँ पर गीत सुनते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना। आप सभी की चॉइस बहुत प्यारी होती है। और अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, जानेंगे उनकी क्या फरमाइश है यहाँ पर। हेलो फरमाइश। हाँ जी, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम जिया है।
0: जिया, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: बेरमपुर
0: जी। बताइएगा, क्या करते हो आप?
1: अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं।
0: अभी कौन सी क्लास में स्टडी कर रहे हैं आप? सिक्स क्लास में कर रहे हो। आगे क्या करना है लाइफ में, क्या ड्रीम्स हैं आपकी, बताइए।
1: अभी फिलहाल के लिए तो मेरा टीचर है।
0: ओके, अच्छा, तो आप स्टडी करने के बाद टीचर बनना चाहते हो, राइट?
1: यस मैम।
0: कैसा लगता है जब आपको टीचर पढ़ाती हैं? कि आप भी सोचते हैं कि मैं भी एक दिन ऐसे ही पढ़ाऊंगी? हाँ जी, बताइएगा। आज आपका कॉल लगा है, क्या फरमाइश है आपकी?
1: मैम, हमारी फरमाइश ये है मैम, रंग मूवी का कोई सा भी सॉन्ग चला दीजिए।
0: अच्छा, रंग मूवी का, ठीक है, ये ट्रैक आपको सुनवाते हैं। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए।
1: थैंक यू मैम,
0: बाय, मोस्ट वेलकम डियर। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक रंग मूवी का, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं। और जब तक आप हमें कॉल लगाएंगे नहीं, तो आपको कैसे सुकून

0: स्किन एलर्जी मस्त से नाखून बालों की समस्या टैटू हटाना कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386।
1: टायर लो सोना जीतो।
0: क्या?
1: जी हाँ,
2: चावला टायर
1: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
2: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड अपोजिट मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
3: ऑफर वैलिड टिल 10th June। TNC अप्लाई।
4: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
5: सुबह सुबह रेडियो ऑन ना करने से पहले
6: माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
5: अरे तो भाई, चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले।
6: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
5: तो भाई साहब, आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यून इन कीजिए आपकी शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
7: क्या बात है सर, क्या बात है सर।

0: हेलो हाय एवरीवन, वेलकम है आप सभी का। हेलो फरमाइश शो में, खुशी आपके साथ है। और देखिए, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा ट्रैक सुना, एंड अभी हम गाना कौन सा सुनने वाले हैं वो तो हमारी कॉलर ही बताएंगे हमसे, हमें तो उनसे ही बात करते हैं। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश, हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? ओके, क्या करते हैं सर, बताइएगा जरा अपने बारे में। आप क्या करते हैं? अच्छा, ओके सर, बताइएगा आज। हेलो फरमाइश में आपका कॉल लगा है, क्या फरमाइश है आपकी?
1: तो हमारा कल भी लगा था।
0: अच्छा, कल भी लगाता है, बताइएगा कौन सा गाना सुनेंगे आप? अच्छा ठीक है सर, ये ट्रैक आपको सुनवाते हैं, शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं प्यारा सा गीत और हमें कॉल भी लगाइएगा अभी। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896।

0: हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हेलो फरमाइश शो में। खुशी आपके साथ है और ये है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। वक्त हुआ है 4:09 और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, नमस्ते मैम
0: जी। आपको भी नमस्कार सर, अपना नाम बताइएगा।
1: रणबीर
0: जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मुरादाबाद से
0: जी। सर बताइएगा, कैसे हैं आप?
1: जी सही, आप सुनाइए।
0: हाँ जी, हम भी बहुत ही अच्छे हैं सर। बताइएगा आज क्या फरमाइश है आपकी?
1: जी फरमाइश है दोस्ताना फिल्म की।
0: जी बताइएगा।
1: जी
0: ठीक है सर।
1: हाँ मैडम
0: जी जी जी बिल्कुल कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप?
1: मैं ये कहना चाहता हूँ, स्कूल में हर दोस्त अपना लगता था।
0: हाँ
1: हर दिन एक नई कहानी होती थी।
0: बिल्कुल राइट।
1: आज सब अपने काम में व्यस्त हैं और वो दोस्ती सिर्फ याद बनकर रह गई।
0: जी
1: वो स्कूल की घंटे का इंतजार और छुट्टी होते ही बाहर भागना। आज जिंदगी की दौड़ में है, लेकिन वो खुद ही कहीं पीछे छूट गई।
0: हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
1: स्कूल में फेल होने का डर था, आज जिंदगी में हारने का डर है।
0: हाँ
1: सच कहूँ तो स्कूल की परेशानियां ही सबको आसान थी, सबसे आसान थी।
0: हाँ बिल्कुल, स्कूल की परेशानियां सबसे आसान थी। और मुझे ऐसा लगता है सर कि आज भी जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, लेकिन मुश्किलों से हारना नहीं है।
1: जी एक बात और कहना चाहता हूँ मैम।
0: जी जी
1: मैडम, कि जब हम पढ़ते थे ना स्कूल में,
0: हाँ
1: आप हो रहा हूँ, तो उस वक्त जो हमारे टीचर थे वो हमें डांटते थे तो हमें बड़ा बुरा लगता था।
0: हाँ गुस्सा भी आता था कि टीचर्स क्यों डांटते हैं हमें।
1: बचपन में लगता था नहीं लगता?
0: हाँ हाँ बिल्कुल लगता था।
1: आज अगर हम ये सोचे ना अपने दिमाग से, अगर उनके डांट नहीं सहते या नहीं खाते तो आज हम इस काबिल नहीं होते।
0: एग्जैक्टली राइट, टीचर्स और मम्मी पापा हमेशा अच्छे के लिए ही बोलते हैं
1: जी। पहले तो परमात्मा जिन्होंने हमें जन्म दिया।
0: हाँ जी।
1: दूसरे माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया, और तीसरे टीचर जिन्होंने हमें ज्ञान दिया।
0: हाँ जी बिल्कुल सही बात बोली है आपने।
1: सबसे महत्वपूर्ण आप, जो आपने हमें अपने साथ मिलने का मौका दिया।
0: थैंक यू हमें कॉल करने के लिए सर। सुनवाते हैं प्यारा सा गीत। हाँ ठीक है, ये गीत आपको सुनवाते हैं। धन्यवाद रणवीर जी, आपने हमें कॉल किया। तो दोस्तों ये प्यारा सा ट्रैक सुनते हैं और लौट कर आते हैं। तब तक आप भी प्रयास कीजिए कि आपका कॉल भी जल्दी से लग जाए। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896।

0: हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हेलो फरमाइश शो में। और दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा एक गीत सुना फ्रॉम द मूवी दोस्ताना। एंड इस खूबसूरत से गीत को गाया था किशोर कुमार, साथ में मोहम्मद रफी साहब जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन जुड़ी है हमारे साथ, क्या उनका नाम है, उन्हीं से जानते हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश,
0: हाय दी। हाँ जी, कैसे हाल चाल है आपकी?
1: जी मेरे हाल चाल ठीक है, आप बताओ आप कैसी हो?
0: मैं भी ठीक हूँ, आप अपना नाम बताइएगा।
1: दीदी मैं अफरोज फातिमा बोल रही हूँ।
0: अफरोज फातिमा जी बताइएगा कैसे हाल चाल है, स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा है हमें। अच्छा, ईद से पहले? अच्छा, ईद के बाद हुई है। बॉडी में वीकनेस आ जाती है ना, और सब फिर बहुत सारे काम आप खुद आके लिए मैनेज करते हैं घर के। अच्छा, तो अभी पहले से बेटर फील कर रहे हो ना? चलो बहुत अच्छी बात है, हम दुआ करते हैं आप जल्दी से ठीक हो जाओ।
1: और आप बताइए कि आप कैसी हो?
0: हाँ जी मैं तो ठीक हूँ, आप बताइएगा क्या फरमाइश है आज आपकी? खूबसूरत से गीत किनके साथ सुनना चाहते हो आप? ओके, और कुछ शायरी वगैरह कुछ कहना चाहते हो, करना चाहते हो? क्या बात है, दोस्ती के रिश्ते में ऐसा ही होता है। हाँ यही प्रॉब्लम होगी, फोन जब खराब होता है तभी फोन नहीं लग पाता है। अच्छा तो टेंशन मत लीजिए, बात हो जाएगी आपकी। ओके

0: What makes Bittrex?
1: टायर लो सोना जीतो।
2: क्या?
1: जी हाँ,
3: चावला टायर
1: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
4: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क चावला टायर्स कार्ड रोड
5: अपोजिट
4: मधुबनी पार्क मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
5: ऑफर वैलिड टिल 10th June। TNC अप्लाई। अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
6: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
5: पर पापा।
6: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
5: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
7: बसंती इनके सामने मत नाचना।
5: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

0: हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हेलो फरमाइशो में। खुशी आपके साथ है और ये है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 और शो चल रहा है हेलो फरमाइश, जहां पर आप अपनी पसंद के गाने सुन सकते हैं दोस्तों। एंड आप किसी को डेडिकेट भी कर सकते हैं ट्रैक। तो आप कौन से गाने सुनना चाहते हैं इस वक्त मुझे बताइए, मुझे कॉल लगाइए, नंबर है 9837896896। और अभी बात करते हैं अपने अगले फरमाइश करता जी के साथ, कौन कहाँ से कनेक्ट हुए हैं। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: नीरज कुमार।
0: नीरज कुमार जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: लोधीपुर मुरादाबाद जवाहर नगर
0: जी। बताइएगा क्या करते हैं सर?
1: अभी तो कुछ नहीं, बच्चों को देखना
0: जी। बताइएगा क्या सुनना चाहते हैं आज, क्या फरमाइश है आपकी सर?
1: मैं बारिश कर दूं पैसे की जो तो हो जाए मेरी।
0: अच्छा, और ये ट्रैक किन के लिए सुनना चाहते हैं आप?
1: मैडम, पूजा मैडम।
0: अच्छा, पूजा मैडम के लिए। ठीक है सर, सुनवाते हैं प्यारा से गाना।
1: धन्यवाद,
0: मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं प्यारा सा गाना, मैं बारिश कर दूं पैसों की जो तो हो जा मेरी। बहुत ही प्यारा सा ट्रैक, अक्षय कुमार जी और साथ में कैटरीना कैफ बड़ी ही खूबसूरत नजर आए थे इस फिल्म में, गाना भी बहुत प्यारा है। तो सुनते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं। तब तक आप मुझे कॉल लगाओ, नंबर है 9837896896।

0: हेलो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हेलो फरमाइश शो में। खुशी आपके साथ है। और आप भी, आपने बहुत ही प्यारा सा ट्रैक सुना, मैं बारिश कर दूँ पैसों की जो तू हो जा मेरी। भैया आज के टाइम में पैसा भी ज़रूरी है, क्योंकि मैंने भी ऐसा देखा है, लाइक अगर पैसा होता है तो हर इंसान आपका अपना होता है, अगर पैसा नहीं है तो अपने भी पराए हो जाते हैं आज के टाइम में। पहले के टाइम में पैसा इतना मैटर नहीं करता था, लाइक पहले रिश्ते बहुत अहमियत रखते थे। आज के टाइम में रिश्ते अहमियत रखते हैं, पर आजकल पैसों को लेकर ज़्यादा होता है कि अगर पैसा उसके पास है, कोई ज़्यादा रिच है तो उसी से लोग दोस्ती बनाना चाहते हैं, और कोई इंसान दिल का बहुत अच्छा है लेकिन उसके पास उतना पैसा नहीं है तो लोग उसके साथ रहना कम पसंद करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पैसा जो है ना, वो आती जाती माया है, क्योंकि वो हमेशा किसी के पास नहीं रुकती है। और अच्छे इंसान जो होते हैं ना, वो ज़िंदगी में आपको बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो जब अच्छे लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं ना, तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है। और पैसा तो आप मेहनत करके कमा ही लेंगे दोस्तों, क्यों, जब आप कोई आपके अंदर स्किल होगी तो आप पैसा कमा ही लेंगे। लेकिन अच्छे इंसानों को कैसे कमाओगे? जो इंसान एक बार आपसे रूठ जाएगा, दूर चला जाएगा, उसको वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए रिश्तों को अपने पास संभाल कर रखिए और मेहनत कीजिए, जो आप चाहते हैं लाइफ में सब कुछ आपको मिल जाएगा। अभी बात करते हैं अपने कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं और जानेंगे उनकी क्या फरमाइश है। हेलो फरमाइश।
1: हेलो, नमस्कार मैम।
0: जी आपको भी नमस्कार, अपना शुभ नाम बताइएगा सर।
1: मैं जिला मुरादाबाद ग्राम बीजना से रिजवान खान बात कर रहा हूँ मैम।
0: जी बताइएगा रिजवान खान जी, कैसे हैं आप?
1: जी मैम बहुत अच्छा है, आप बताओ आप कैसे हो?
0: हाँ जी हम भी अच्छे हैं, आपकी दुआएं हैं। आप बताइएगा आज कॉल किया है आपने, क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: ये रफी साहब की आवाज़ में मैम सॉन्ग है, मेरी तस्वीर लेकर क्या करोगे।
0: अच्छा, और ये खूबसूरत गीत किनके साथ सुनना चाहते हो आप?
1: और फैमिली मेंबर्स बेटा है आरिज रजा खान, असद रजा खान और
0: आप। अच्छा ठीक है सर, सुनवाते हैं प्यारा सा गाना आपको। शुक्रिया कॉल करने के लिए,
1: धन्यवाद।
0: मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए श्रोताओं, सुनते हैं सर की पसंद का प्यारा सा ट्रैक, लौट कर आते हैं हम। तब तक आप भी मुझे कॉल लगाइएगा, नंबर 9837896896। रेडियो बजाते रहिए और ऐसे ही खूबसूरत गीत गुनगुनाते रहिए।
2: मेरी तस्वीर लेकर क्या करोगे तुम, मेरी तस्वीर लेकर, मेरी तस्वीर लेकर, दिल दिल गिर लेकर, लुटी जागीर लेकर, जली तकदीर लेकर क्या करोगे क्या।

रुतबा हो इश्क में तो इम्तिहान लो, मेरी तस्वीर न लो मेरी जान लो, कहो जाने वफा अब क्या कहोगे क्या करोगे।

0: तीर लेकर क्या करोगे क्या करोगे तुम मेरी।
1: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
2: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
3: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
2: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
4: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
5: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
4: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
6: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
7: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7060002430। सुबह सुबह रेडियो ऑन न करने से पहले
8: माँ, मुझे कुछ दिखाएंगे जरा माँ।
7: अरे तो भाई चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले।
8: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
7: तो भाई साहब, आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यून इन कीजिए आपकी शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
9: क्या बात है सर, क्या बात है सर।

0: बिल्कुल दोस्तों, ऐसी ही बात होती है जब एक बार आप ऑन कर लेते हैं ना फिर मुरादाबाद 89.6, फिर इससे दिल को दूर करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये दिल के सबके करीब रहता है। आप ही के अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होस्ट आरजी खुशी। और दोस्तों अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से और जानेंगे उनकी क्या फरमाइश है यहाँ पर। एंड अगर आप भी कॉल करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, मोबाइल नंबर है 9837896896। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश
0: जी सर, क्या नाम है आपका? वेरी गुड इवनिंग, नाम बताइए।

0: बहुत खूबसूरत गीत सुना है आपने।
1: कुछ लाइनें बोलना चाहता हूँ।
0: जी जी जी बिल्कुल सुनाइएगा सर।
1: मोहब्बत करने वाले बहुत होंगे, कोई तुझसा कोई मुझसा ना होगा,
0: वाह वाह वाह क्या बात
1: तेरे
0: है।
1: आने के इंतजार में हम बैठे थे तन्हा तन्हा, तेरे आने के इंतजार में हम बैठे थे तन्हा तन्हा, एक खूबसूरत हवा के झोंके ने तेरे आने की खबर दी थी।
0: अरे वाह बहुत खूबसूरत लाइनें हैं आपकी सर।
1: हमारे दोस्त हैं
0: हाँ जी बताइएगा।
1: मिर्जा मुरादाबाद से, रईसुल अंसारी करूला मुरादाबाद से, इरशाद हुसैन अंसारी, सैयद सारिक अली, महराज अंसारी, बाबू अंसारी मुरादाबाद से, अंसार हुसैन चंबल से, छोड़े अंसारी जामा मस्जिद अकबानपुर से, मोहम्मद आरिफ खान करूला मुरादाबाद से, कासिम अली
0: जी
1: सलीम अंसारी,
0: जी
1: यही सब लोग सुनना चाहते हैं और जितने भी हमारे भाई बहन लिसनर
0: हाँ
1: यही
0: जी
1: सब
0: हाँ
1: सुनना है
0: जी
1: उनके लिए और आपके लिए।
0: ठीक है सर, शुक्रिया कॉल करने के लिए। सुनवाते हैं आपकी पसंद का
1: थैंक
0: प्यारा
1: यू।
0: सा गीत। मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए श्रोताओं सुनते हैं प्यारा सा ट्रैक, मेरे महबूब मेरी सनम, शुक्रिया मेहरबानी करम। बहुत ही प्यारा सा ट्रैक, उदित नारायण साथ में अलका याग्निक जी की बड़ी प्यारी सी आवाज़। और इस ट्रैक के बाद लौट कर आते हैं हम श्रोताओं।

0: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू माय ब्यूटीफुल पीपल्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब बहुत ही अच्छे होंगे। और हेलो फरमाइश में आरजी खुशी आपका पूरे दिल से स्वागत करती है। साथियों, अभी हमारे साथ हमारी कॉलर जुड़ी हैं, बड़ी स्वीट सी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हेलो फरमाइश। हाय, गुड इवनिंग, कैसे हो आप?
1: वेरी गुड इवनिंग, हम ठीक हैं, आप बताइए आप कैसी हैं?
0: हाँ जी, आई एम फाइन, बताइएगा अपना शुभ नाम।
1: हम भावना बोल रहे हैं नैनीताल से।
0: ओके, भावना नैनीताल से बात कर रही है, तभी मैं सोचू कि इतनी ठंडी हवाएं क्यों आ रही हैं। ओहो,
1: ये हमने सोचना तो हमें भी लगा कि आपकी खुशी मैम क्यों बीमार हुई है, तो हमने पूछने का कारण।
0: अच्छा, अभी इसलिए आपने कॉल किया, राइट?
1: जी, हमने कहा एक बार पूछ लेते हैं कि आप क्यों बीमार हुई है।
0: हाँ तो हाँ बिल्कुल। भावना, अभी तो हम पहले से ठीक है, लाइक पहले बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, अभी तो ठीक हो गई है।
1: अच्छा अच्छा और वहाँ पर सब ठीक है, सभी आपकी फैमिली में?
0: हाँ जी हाँ जी, ऑल गुड, सब बढ़िया। आप बताओ, आपके परिवार में सब ठीक है?
1: सब बढ़िया है। और बताइए मुरादाबाद का मौसम कैसा है?
0: मुरादाबाद का मौसम ठीक है, अच्छा है। आप बताओ नैनीताल का वेदर कैसा है? वहाँ तो कूल होगा अभी मौसम?
1: हाँ, यहाँ पे तो कूल है, सुबह बारिश थी।
0: अच्छा, और अभी बारिश बंद हो गई है?
1: अभी बारिश में।
0: अच्छा, कभी ऐसा मतलब मौसम होता है जब आप नॉर्मली कपड़े पहनते हैं, लाइक सिंपल वाले, जैसे अभी मौसम, क्योंकि ज्यादातर तो नैनीताल का वेदर ठंडा ही होता है, तो गर्म ही कपड़े पहनने पड़ते हैं ना?
1: हाँ, पहले था मई, अप्रैल मई और जून के बीच में, अब तो फिर उतनी गर्मी रहती कहाँ है, क्योंकि तो बारिश हो जाती है ना।
0: हाँ,
1: गर्मियों में भी
0: बारिश हो जाती है तो फिर मौसम ठंडा हो जाता है।
1: मौसम ठंडा हो जाता है, बीच में थी गर्मी, अब तो फिर ठंड हो चुकी।
0: अच्छा, तो आप बताइएगा भावना, आज क्या सुनना चाहोगे आप?
1: आज हम सुनना चाहेंगे चोरी चोरी दिल सुनना चुराएंगे।
0: वो तो आपने पहले से ही चुरा रखा है।
1: अच्छा जी।
0: हाँ जी, अब चुराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चोरी तो एक ही बार होती है। हाँ, लेकिन क्या करें, अब आप इतने प्यारे हो, हम इतने प्यारे हैं, आप हमारा दिल चुरा लेते हो, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम चोरी करने देते हैं, आपको परमिशन दे दी हमने।
1: क्या होता है ना, जो चीज पसंद आती है ना, चोरी उसी की होती है।
0: हाँ, ये बात भी है।
1: हाँ, भी जो चीज अच्छी होती है ना, उसी की चोरी होती है।
0: तो भावना, कुछ और कहना चाहोगे आप जाते जाते?
1: कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन
0: लेकिन
1: बस इतना कहेंगे, आप खुश रहे, मस्त रहे, हमेशा आपके सारे सपने पूरे हो जाएं।
0: थैंक यू सो मच एंड सेम पिंच, हम भी यही चाहते हैं।
1: जहाँ आप जाओ और जो भी आपको सुने उसे सुकून फील हो,
0: कोशिश तो पूरी करते हैं,
1: और आपकी मेहनत बरकत बन के लौट आए।
0: थैंक यू,
1: यूनिवर्स हमेशा आपको सपोर्ट करे।
0: थैंक यू सो मच।
1: और क्या कहें।
0: और बस प्यारी सी स्माइल कर दो, काफी है भावना। ऐसे ही मुस्कुराती रहो आप भी, और हम भी चाहते हैं कि आपके सारे ड्रीम्स पूरे हो जाएं, एंड आप हमसे मिलने मुरादाबाद भी आओ, हम ये चाहते हैं।
1: थैंक यू, भी बहुत जल्द अपनी ड्रीम को पूरा करके आपसे मिलने जरूर आएंगे।
0: हाँ जी बिल्कुल, श्योर, मोस्ट वेलकम। और सुनवाते हैं प्यारा सा ट्रैक आपको।
1: थैंक यू,
0: मोस्ट वेलकम, बाय, टेक केयर। तो चलिए दोस्तों, ये प्यारा सा ट्रैक सुनते हैं भावना की पसंद पर, बहुत ही प्यारा सा ट्रैक, और इसी गीत के साथ हम लेते हैं आपसे जाने की अनुमति। मिलेंगे आपको संडे को, तब तक के लिए रखिएगा अपना ध्यान, यूं ही मुस्कुराते रहिए, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और जिनका भी मंडे टू फ्राइडे कॉल लग चुका है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी छोटी सी कि वो सैटरडे में कॉल ना करें, ताकि नए लिसनर्स को भी मौका दें, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि सैटरडे रीना जी होस्ट करती हैं, तो उसमें भी हमारे जो लिसनर्स हैं, जो मंडे टू फ्राइडे कॉल कर देते हैं, तो वो भी कॉल करते हैं, तो उनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना करें, नए लिसनर्स को भी मौका दें, एंड आप भी खुश रहें, औरों को भी खुश रखें, बस यही कहना चाहूंगी। बाकी मुस्कुराते रहिए, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, टेक केयर एवरीवन।

0: सुबह सुबह रेडियो ऑन ना करने से पहले
1: माँ मुझे कुछ दिखाएंगे जरा माँ।
0: अरे तो भाई चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले।
1: माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है।
0: तो भाई साहब आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यून इन कीजिए आपकी शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
2: क्या बात है सर, क्या बात है सर।
3: टायर लो सोना जीतो।
4: क्या?
3: जी हाँ,
5: चावला टायर
3: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
6: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
0: अपोजिट
6: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
0: ऑफर वैलिड टिल 10th June, TNC अप्लाई।
7: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
8: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
7: कॉल 8826213131।

क्या बात है जी, बहुत ही खूबसूरत आपने गाना एंजॉय किया है। और आर्जेरीना के साथ आप कनेक्ट हैं। समय की बात करूं तो 5:10 हो चुके हैं श्रोताओं, और आर्जेरीना आप सभी के साथ कनेक्ट हो गई हैं लेकर शो इवनिंग मस्ती। ढेर सारी बातें करेंगे, आखिरकार आज 2 घंटे शो में मैं क्या क्या लेकर आई हूँ हर एक्ट्रेस के बारे में बताने वाली हूँ। फिलहाल के लिए आपसे यही कहना चाहूंगी कि देखिए आज का जो मौसम है, यानी कि धूप, बादलों वाला जो धूप है, क्योंकि हवाएं भी सही चल रही है, गर्मी तो है ही, बादलों वाला

0: गर्मी जिसको बोलते हैं। अब कल से तो यही कहा जा रहा है कि बारिश आएगी, यारी आने की संभावना है, अब आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, क्या ही कर सकते हैं। लेकिन हमें तो अपने जिंदगी जैसे डेली रूटीन में अपना जिंदगी जीते हैं वैसे ही जीना है। सो आज ढेर सारी बातें करेंगे, कौन कौन से डेज मनाए जाते हैं और क्या क्या नया कुछ शुरू होने वाला है, हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे और आप सभी के लिए कड़क सवाल लेकर आएंगे, जो कि विनर बनने का, जो जब विनर बनते हैं ना तो अलग ही लेवल वाली खुशी होती है। सो आप भी चाहते हैं कि भैया हाँ इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं राइट आंसर के साथ आप भी कनेक्ट होना चाहते हैं, तो देखिए शो तो आपको सुनना पड़ेगा, तभी आप उसका राइट आंसर आप हमारे तक पहुंचा पाएंगे। चलिए फिलहाल गाने की तरफ बढ़ते हैं, एक बहुत ही प्यारा पंजाबी ट्रैक सुनते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं।
1: प्यार हुंदा फुल्ला तो मलूक सोनिया,

0: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
1: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
0: पर पापा।
1: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
2: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
3: अशांति, इनके सामने मत नाचना।
2: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

क्या बात है जीना, तुम जानो ना, हम और आरजे रीना आप सभी के साथ कनेक्ट हो गए क्योंकि हम तो आपको जानते हैं जी और आप ही मुझे जानते हैं। सो कि आप सभी के लिए 5 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक कनेक्ट हो जाती है इवनिंग मस्ती शो लेकर, और आप सुन रहे हैं अपने शहर का सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 और रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूँ तो 5:22 हो चुके हैं और आज की तारीख भी बहुत खास है। लेकिन आज के डे के ऊपर बात करने से पहले मैं बात करूँगी ट्रैफिक अपडेट के बारे में। देखिए, अगर ट्रैफिक में हैं आप कहीं भी, तो अगर आप जाम में फंसे हुए हैं इस टाइम, तो हमें मैसेज कॉल करके बता सकते हैं, नंबर है 9837896896। फिलहाल आप PSC की तरफ से जा रहे, दिल्ली रोड की तरफ से जा रहे, बुद्ध बाजार की तरफ से आप जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन की तरफ से आप गुजर रहे हैं, तो आपको हर थला की तरफ से आप निकल रहे हैं, तो भैया यहाँ पर आपको जाम, मतलब ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आपको यहाँ पर जाम ना मिले, मिलेगा ही मिलेगा। सो आप अगर इन लोकेशन पर हैं तो आप डेफिनेटली मैसेज कॉल करके बता सकते हैं। साथ ही साथ हेलमेट सीट बेल्ट लगाना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि मैं आपको बार बार याद दिलाती हूँ। कभी कभी ना ये कहते हैं कि भाई हमने ज़्यादा खाना खा लिया तो सीट बेल्ट नहीं लगा सकते, मतलब दर्द होने लग जाता है पेट में, तो पेट का दर्द देख लीजिए या फिर सेफ्टी देख लीजिए। सेफ रहना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए पेट के दर्द को थोड़ा एक रोटी कम खा लीजिए और फिर अब जब सफ़र में निकल रहे हैं तो मुझे लगता है कि हल्का फुल्का खाना खा के निकलना चाहिए, ताकि आप सीट बेल्ट लगाते हैं तो आपको कोई भी परेशानी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि जब आपको भी पता है झटके लगते हैं तो आप कभी आगे कभी पीछे आ जाते हैं ना, इसीलिए सीट बेल्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। और आप ये सोच रहे होंगे ना कि मतलब हमें कौन देख रहा है, लेकिन साफ साफ बता दूं मेरी जान कि आप कैमरे की निगरानी में होते हैं, सो इसीलिए ऐसा कभी मन में ख्याल ना लाए कि हमें कोई नहीं दिख रहा है, क्योंकि आजकल ट्रैफिक वाले भी है ना, वो चल बाइक तो आगे देख के चला सकते हैं ना इंसान, है ना, लेकिन उनके भी आपने हेड पे देखा होगा कैमरे लगा के रखते हैं वो, ताकि पीछे का जो नज़ारा है वो कैमरे में रिकॉर्ड होता रहे। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप चलते चलते जब सफ़र में होते हैं तो एक इधर उधर नज़र जरूर देखा करिए, आपको दिख जाएंगे, फिर आप भी सतर्क हो जाएंगे कि हाँ ये हमारे लिए है, हमारी सुरक्षा के लिए है, तो हम यानी कि हमें हेलमेट सीट बेल्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ आप ट्रैफिक में हैं तो कुछ देर के लिए फ़ोन कॉल्स जो भी आ रहे हैं अवॉइड करिए, क्योंकि इस टाइम आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ गाड़ी चलाने पर होना चाहिए, ना कि फ़ोन अटेंड करने पर, ठीक है जी। और इसी के साथ हम म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और फिर लौटेंगे आप सभी के साथ, क्योंकि आज मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस। तो पर्यावरण दिवस पर आपने क्या किया है, क्या नहीं किया है, क्या आपने एक पेड़ लगाया है, क्या आपने क्या संकल्प लिया है, आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, नंबर है 9837896896। चलिए फिलहाल एक बहुत ही प्यारा गाना है, सो इस गाने को एंजॉय करते हैं और लौट कर आते हैं।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु

एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है आज रीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूँ तो समय हो चुका है 5 बजकर यानी कि 32 मिनट। और आज की तारीख बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि आज है 5 जून, और 5 जून को मनाया जाता है यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। हाँ जी, तो अब की बार क्या है ना कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ ठोस कदम उठाने का समय है। संदेश साफ है, सिर्फ जागरूकता नहीं, अब कार्रवाई जरूरी है। क्योंकि देखिए, हम जागरूकता फैलाते फैलाते थक जाएंगे, लेकिन जब तक हम कुछ करेंगे नहीं, कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, बढ़ता तापमान, अनियमित बारिश, प्रदूषण और घटते जंगल में हमें लगातार संकेत दे रहे हैं कि प्रकृति को हमारी जरूरत है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बदलाव की शुरुआत किसी बड़े अभियान से नहीं होती, बल्कि हमारी छोटी छोटी आदतों से होती है। एक पेड़ लगाना, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करना, पानी बचाना और अपने आसपास सफाई रखना, ये छोटे छोटे कदम मिलकर बदलाव ला सकते हैं। तो आइए इस पर्यावरण दिवस पर यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस पर हम सब मिलकर एक वादा करें कि आने वाले पीढ़ियों को एक हरा भरा और सुरक्षित भविष्य देंगे। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तभी हम कह पाएंगे ना हमारी धरती जिम्मेदारी भी हमारी होगी। तो इसके लिए छोटे छोटे कदम हैं जो आप उठाइए। ये मत सोचिए कि कोई इंसान करेगा तभी मैं करूंगी, क्योंकि जब तक आप नहीं करेंगे, इंसान आपको देकर नहीं बदलेंगे। इसीलिए पहले बदलाव खुद से शुरू करिए। और पर्यावरण दिवस पर जितने हो सके, आप जरूरी नहीं है कि एक ही दिन पर्यावरण दिवस मनाया जाए, बल्कि हर रोज आप एक पेड़ लगाते हैं, हर रोज नहीं लगा सकते हैं, वीक में एक पेड़ लगाइए, महीने में 2 पेड़ लगाइए, कम से कम लगाइए तो सही, तब जाकर हमारा पर्यावरण है वो शुद्ध होएगा। और साथ ही साथ जो ये बारिश, अनियमित बारिश, कभी भी बारिश हो जाती है और ऊपर से गर्मी इतनी तेज़ है कि कुछ नहीं, कैसे तापमान हाई हो जाता है, तभी जाके राहत मिलेगी जब हम सब मिलकर पेड़ लगाएंगे। क्योंकि जंगल है कम होती जा रही है, फैक्ट्रियां बनाया जा रहा है, इसकी वजह से गर्मी और कभी भी बारिश में यानी कि बिन मौसम बिन बुलाए मेहमान आ जाते हैं। तो इसके लिए हमें ध्यान रखना है जी। चलिए फिलहाल के लिए एक बहुत ही प्यारा गाना, उसके बाद लौट कर आते हैं और करेंगे ढेर सारी बातें।

0: दिल बोले तो
1: हार्ट हार्ट
2: हमारा यार सौदा सौदा
1: ओहो
3: दोनों डील कर
1: टाइट वेरी टाइट।

क्या बात है जी, बहुत ही प्यारा गाना एंजॉय किया आपने। और समय की बात करूँ तो अर्जेंटीना के साथ आप कनेक्ट हैं इवनिंग मस्ती शो में। और समय की बात करूँ तो 5:42 हो चुके हैं और आप सुन रहे हैं अपने शहर का सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और जिंदगी में ना ऐसी रोक मचाते रहना चाहिए, है ना, हर काम को शिद्दत से हमें करते रहना चाहिए। तो चलिए फिलहाल हम बढ़ते हैं। आज का दिन है हमारे लिए बहुत खास है क्योंकि आज 5 जून है और 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे और साथ ही साथ यानी कि हमारे CM योगी आदित्यनाथ जी का भी आज हैप्पी वाला बर्थडे है, यानी कि 54 के हो चुके हैं वो। तो हमारी पूरी रेडियो की टीम की तरफ से आपको हैप्पी वाला बर्थडे, और आज जिनका जिनका भी बर्थडे है उनको भी हमारे रेडियो की टीम की तरफ से हैप्पी हैप्पी वाला बर्थडे। और यूं ही आप अपनी जिंदगी में रॉक मचाते रहे। और साथ ही साथ योगी जी के लिए हम कहना चाहेंगे कि योगी जी अपने यानी कि अपनी सादगी, कड़े फैसलों और काम करने के अलग अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। पिछले कई सालों में उन्होंने यूपी के विकास, कानून व्यवस्था और कई जन कल्याणकारी योजनाओं पर काम किया है। उनके समर्थकों के लिए आज का दिन किसी उत्सव से कम नहीं है। तो हमारी तरफ से योगी आदित्यनाथ जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम कामना करते हैं कि वो स्वस्थ रहे, खुश रहे, इसी तरह यानी कि प्रदेश की सेवा करते रहे। तो चलिए आज इस खास मौके पर हम सुनते हैं एक ऐसा प्यारा सा गाना, जोश और प्रेरणा से भरा गाना, जो कि हर किसी को ही अपने जिंदगी में बस हारे नहीं और आगे बढ़ते रहे, जैसे हमारे योगी आदित्यनाथ जी बढ़ते रहते हैं। तो गाना है कर हर मैदान पते। चलिए जी फिलहाल इस गाने को एंजॉय करते हैं और लौट कर आते हैं आप सभी के बीच, ढेर सारी बातें करेंगे। फिलहाल आप मैसेज पहुंचा सकते हैं कि आज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे पर आपने क्या कुछ खास किया है। चलिए

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: अरे सुनो वो पड़ोस का लड़का है ना उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
2: यार कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेस 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
4: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760

मेरी एक जिंदड़ी, क्या बात है जी। उदित नारायण जी की आवाज में, अलका याग्निक जी की आवाज में बहुत ही खूबसूरत आपने गदर मूवी से ये गाना एंजॉय किया है। कि देखिए, जब कोई इंसान घर से बाहर रहता है और जब घर आता है तो उसकी खुशी ना अलग ही नेक्स्ट लेवल वाली हो जाती है। और आज की तारीख भी बहुत खास है क्योंकि 5 जून है। और 5 जून को भैया, आपको पता है ना कि आज वरुण धवन की मूवी रिलीज हो गई है। हाँ जी, कौन सी मूवी है बताती हूँ, जवानी है तो इश्क होना है। तो ये मूवी रिलीज हो गई है, अगर आपने नहीं देखा है तो अरे टिकट बुक कर लीजिए, शाम को चलते हैं ना, साथ मिलकर देखने चलते हैं, है ना। दोस्तों दोस्तों को पकड़ लेते हैं ना, क्योंकि देखिए मूवी देखने जाओ तो अकेले मूवी देखने का मन नहीं करता। सच बताओ, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं मूवी थिएटर में ही मतलब प्रॉपर अच्छे तरीके से पूरा देख पाती हूँ। अदरवाइज मैंने जिस दिन घर पर मूवी देखा देखती हूँ ना, तो बस पता नहीं चलता 3 घंटे का मूवी 3 सेकंड में कैसे मैं खत्म कर देती हूँ, कुछ भी नहीं पता चलता है। यानी कि 3 घंटे की मूवी सोचिए कि मैं 3 सेकंड के अंदर खत्म

कर देते उस मूवी को। सो आपसे यही कहना चाहूंगी श्रोताओं कि आपने अगर आज वरुण धवन की मूवी रिलीज हो गई है, बहुत ही प्यारा, जवानी है तो इश्क होना है, साथ ही साथ यानी कि 15 जून को भी मूवी रिलीज होने वाली है, वो कौन सी है वो भी बताएंगे। फिलहाल के लिए एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद लौट कर आते हैं आप सभी के बीच, लेकिन उससे पहले कुछ मैसेज आ गए हैं। हेलो रीना जी, गुड वाली इवनिंग है, कैसे हैं आप? और इनका कहना है कि मैडम जी रोड पर अभी जाम नहीं है, और बाजार की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो उस रोड पर भी अभी जाम नहीं है। विकी सागर जी कनेक्ट होते हैं, क्या बात है, चलिए इन्होंने बता दिया है। लेकिन आप भी कहीं पर हैं, किसी लोकेशन पर हैं जहाँ पर ट्रैफिक ज्यादा है या फिर नहीं है, तो आप मैसेज करके बता सकते हैं जी। नंबर है 9837896896। लेकिन उत्तराखंड वालों के लिए ये कहा जा रहा है कि सावधान रहने की जरूरत है। अब क्यों सावधान रहने की जरूरत है, उस टॉपिक पर भी बात करेंगे। फिलहाल के लिए एक बहुत ही खूबसूरत गाना, कि हर वक्त तेरी याद आ जाए, यानी कि तीसरे वीक तेरी याद आ गई।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: आवश्यक सूचना 400 KB बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास UP कॉरपोरेशन की मझोला 400 KB उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
3: मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
4: इससे पहले सूरत में प्रधानमंत्री ने हजीरा में वर्तमान औद्योगिक तथा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की। प्रधानमंत्री आज दमण भी जाएंगे जहां वे लगभग 2970 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामुरा सीमा चौकी पर प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि ये परियोजना अंतिम चरण में है और अगले वर्ष सीमा सुरक्षा बल तथा सशस्त्र सीमा बल की तैनाती वाले 7 से 8 संवेदनशील क्षेत्रों में इसका प्रायोगिक चरण शुरू किया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज जम्मू में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस नए केंद्र से जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के लिए मौसम पूर्वानुमान सेवाओं को मजबूती मिलेगी। श्री सिंह ने कहा कि सटीक और समय पर मौसम पूर्वानुमान से कृषि, विमानन, पर्यटन और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों को लाभ होगा। असम मंत्रिपरिषद का आज विस्तार किया गया। गुवाहाटी में आयोजित समारोह में 12 नए मंत्रियों ने शपथ ली। राज्यपाल रक्षम प्रसाद आचार्य ने इस अवसर पर नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस विस्तार के बाद असम मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन 31 जुलाई तक किए जा सकेंगे। गृह मंत्रालय ने बताया कि पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और अनुशंसाएं केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएंगी। भारत एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपुरती ने 4 गोल किए, शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से पराजित हो गई। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

क्या बात है जी, बहुत ही खूबसूरत आपने गाना एंजॉय किया है। अब बात करते हैं, यानी कि देखिए मैच के दीवाने तो हम हर कोई है, मैच देखना तो हर कोई पसंद करता है, लेकिन एक बात ये निकल के आई है कि टीम इंडिया में एक नई शुरुआत की चर्चा जोरों पर है। अब ये कहा जा रहा है कि टीम इंडिया की T20 कप्तानी की जिम्मेदारी अब श्रेयस अय्यर के कंधों पर आ सकती है। मैदान पर उनका शांत स्वभाव, शानदार बल्लेबाजी और टीम को साथ लेकर चलने का अंदाज उन्हें एक मजबूत कप्तान की दौड़ में खड़ा कर सकता है। सो अगर ये फैसला होता है तो भारतीय T20 टीम एक नए दौर में कदम रखेगी। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि श्रेयस अय्यर अपनी कप्तानी में टीम इंडिया को नई ऊंचाई तक पहुंचा पाते हैं या नहीं। तो आपको क्या लगता है श्रोताओं, अगर आपको लगता है क्या आप भी श्रोता है क्या आप भी श्रेयस अय्यर को टीम इंडिया का अगला T20 कप्तान देखना चाहते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं कि भैया अगले जो T20 टीम मैच खेला जाएगा उसमें श्रेयस अय्यर कप्तान होने चाहिए, तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हो। नंबर है 9837896896, और बस आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहिए। ऑल ऑन एफ एम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। चलिए फिलहाल अगला गाना एंजॉय करते हैं, पंजाबी ट्रैक।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548।

क्या बात है जी, बहुत ही खूबसूरत गाना एंजॉय किया आपने। और समय की बात करूँ तो 6:18 हो चुके हैं और अब हम बात करने वाले हैं, क्योंकि आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट है यूनिंग मस्ती शो में। और शो में आगे बढ़ते हैं, ये कहा जा रहा है उत्तराखंड यानी कि उत्तराखंड वालों के लिए सावधान रहने की ज़रूरत है। वो सावधान रहने की किस लिए ज़रूरत है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में यानी कि बहुत तेज आंधी तूफान और बारिश आने की संभावना जताई जा रही है, यानी कि बारिश पूरी पूरी आने की संभावना जताई जा रही है। वहीं देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, मतलब बिजली चमकने, कड़कने और ओले पड़ने तक की भी संभावना जताई जा रही है। सो आपसे यही विनम्र विनती करना चाहेंगे, क्योंकि ये बिन मौसम बिन बुलाए जो बारिश आ रही है ना, वो हमारे लिए हार्म है। हम आई नो कि हमें थोड़ी सी राहत मिल रही है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि इतनी तेज रफ्तार में हवाएं, ऊपर से बिजली कड़कना, ओले पड़ना, ये सब सही कहाँ है। और आपसे यही कहेंगे कि आप इस वक्त अगर जब आंधी आती है, तूफान आती है, तो घर पर ही रहे, बाहर ना जाए, क्योंकि आंधी 80-90 की स्पीड में बताया जा रहा है। तो ऐसा होए कि आप इस वक्त घर पर ही रहे तो ही बेटर है आप सभी के लिए। जितना भी काम है यानी कि जब भी आंधी तूफान आती है उस टाइम के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि जान है तो जहान है, जान है तो आप कल भी कोई काम जो आपका रहता है वो आप काम आसानी से कर लेंगे। चलिए जी, अब यानी कि आगे बढ़ते हैं। और ये कहा जा रहा है कि मुरादाबाद में कल बारिश आने की संभावना जताई जा रही है। अब देखते हैं बारिश आती है या नहीं आती है, लेकिन हमें सतर्क रहना है, ठीक है जी। अब आप सभी के लिए लेकर आएंगे हम कड़क सवाल, और कड़क सवाल क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, वो भी बताएंगे। फिलहाल के लिए एक बहुत ही प्यारा गाना, बाकी सब फर्स्ट क्लास।

0: क्या बात है जी, नेहा कक्कड़ की आवाज में बहुत ही खूबसूरत गाना। और आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट हो गए हैं। समय की बात करूं तो 6:28 हो चुके हैं श्रोताओं, और आज कड़क सवाल मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूं। लेकिन उससे पहले मैसेज आए भैया, एक बार उनको भी शामिल कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं अपने शो में। आखिरकार क्या कहना चाहती हैं ये? हेलो रीना मैम, गुड वाली इवनिंग है, कैसी हो आप? बहुत अच्छे हैं जी। ललिता कश्यप जी कनेक्ट होती हैं, और इनका कहना है कि आज पर्यावरण दिवस है, और इस पर हम यही कहना चाहेंगे सभी देशवासियों को कि हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच जी, आपको भी थैंक यू। और साथ ही साथ आज श्री योगी आदित्यनाथ जी का बर्थडे है, तो हैप्पी वाला बर्थडे, विश यू हैप्पी बर्थडे। ओके जी, और मैम चाय पी लीजिए। ओए होए, साथ में कुछ और भी हैं। ओहो क्या बात है जी, चलिए जी आ जाते हैं फिर तो हम चाय पीने के लिए आज आप सभी के घर। और इनका कहना है कि मैम शाम का मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, ठंडा ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, क्या बात है जी। लेकिन रात को तो बिजली भगा देती है, आप सच बता रहे हैं हम आपसे, सच्ची में बिजली भाग जाती है। रात की अगर बात करूँ तो भैया बिजली बहुत, यानी कि 11 बजे तक भी बिजली नहीं आई, तो इसके बाद तो मैं सो गई थी, पता ही नहीं चला कब बिजली आई कब नहीं आई। और आगे अगले मैसेज की बात करूँ तो इन्हीं का कहना है कि मैम आप लोग बीच बीच में, मतलब सभी से ये कहना चाह रही है कि आज पर्यावरण दिवस है, तो आप सभी से यही कहना चाहेंगे कि एक पेड़ जरूर लगाए। और जो आप बीच बीच में न्यूज़ भी प्ले करती हैं वो भी बहुत अच्छा लगता है सुनकर, देश विदेश की जानकारियां हमें मिलती रहती है, क्या बात है जी। और आज हमें भी एक पेड़ लगाना चाहिए। बिल्कुल जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगी क्या आपने आज एक पेड़ लगाया है? लगाए तो बिल्कुल आप मैसेज करके बता सकते हैं। और फिलहाल शाम तो शानदार हो ही रही है, क्योंकि जैसे जैसे शाम ढलती है, यानी कि सूर्य देव जब छिपते हैं ना, तो मजा आने लग जाता है हल्का सा ना, क्योंकि गर्मी से हमें राहत मिलती है ना श्रोताओं। चलिए फिलहाल कुछ कमर्शियल एड ब्रेक, उसके बाद गाने, और उसके बाद कड़क सवाल लेकर आऊंगी आप सभी के लिए।
1: बसंती इनके सामने मत नाचना।
2: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
3: टायर लो सोना जीतो।
4: क्या?
3: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए, विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड अपोजिट मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
5: ऑफर वैलिड टिल 10th June, TNC अप्लाई।
0: क्या बात है जी, चलिए फिलहाल आप सभी के लिए कड़क सवाल लेकर आ गए हैं हम। बस क्या करना है आपने, थोड़ा सा तो देखिए सोचना पड़ जाता है ना कि आखिरकार क्या होने वाला है आज का कड़क सवाल। तो चलिए यानी कि सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या है ऐसा जो जमीन पर गिरे तो टूटे नहीं? ध्यान से सुनिएगा श्रोताओं, वॉल्यूम थोड़ा रेडियो की बढ़ा लीजिए, तभी आप अच्छे से सुन पाएंगे और आप इसका आंसर आसानी से दे पाएंगे। तो ऐसा क्या है जो जमीन पर गिरे तो टूटे नहीं, पर पानी में गिरे तो वो खराब हो जाती है? सोचिए और फटाफट मैसेज करिए। नंबर है 9837896896 पर आपने हमें मैसेज करके बताना है। वंस अगेन एक बार और सुनिए, जो जमीन पर गिरे तो टूटे नहीं, पर पानी में गिरे तो वो खराब हो जाती है। कौन है जी, पकड़ के लाते हैं उसको, कौन है कि जमीन पर गिरने के बाद भी नहीं टूटती हैं और पानी में गिर जाए तो वो खराब हो जाती है? फिर हम कहते रहते हैं हाय यार फिर से हमें बनाना पड़ेगा, वर्षों की मेहनत है वो खराब हो गई है, क्या है वो? सोचिए और मैसेज करिए फिलहाल के लिए ये वाला गाना।

क्या बात है जी। लेकिन एक मेरे पास मैसेज आता है और इन्होंने बोला कि मैम प्लीज मेरा नाम मत मेंशन करिएगा। अर्जुनीना आप सभी के साथ कनेक्ट है, तो देखिए श्रोता आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, लाइफ से लेकर रिलेटेड कोई भी परेशानी है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। समय की बात करूँ तो 6:38 हो चुके हैं और आप एंजॉय कर रहे हैं इवनिंग मस्ती शो अर्जुनीना के साथ। तो ये मैसेज आते हैं हमारे पास, यानी कि इनका कहना है कि मैम आपसे मेरा आज एक क्वेश्चन है। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं आपके साथ तो शेयर करूं ना करूं, तो मैंने सोचा कि मैं कर ही लेती हूं, बट आप मेरा नाम मत लेना। बिल्कुल जी, नहीं लेंगे हम आपका नाम, डोंट वरी। सो इनका कहना है कि इंसान बदल क्यों जाते हैं। तो मैं आपसे बड़ा सिंपल शब्दों में कहना चाहूंगी कि इंसान कभी खुद से नहीं बदलता, उसको बदलने पर मजबूर किया जाता है। या तो उस चीज से वो बहुत ज्यादा परेशान है, या फिर उस चीज को वो छोड़ना चाह रहा है, या फिर वो अच्छा है लेकिन उसके साथ जो कनेक्ट है वो अच्छे नहीं है। तो वहां पर इंसान बदल जाता है। इंसान कभी खुद से नहीं बदलता है, वो वैसा ही है, लेकिन वो अपने आसपास के एरिया को देखकर वो खुद को बदल लेता है। तो आपसे बस यही कहना चाहेंगे कि आपको जिंदगी में किसी चीज से परेशानी हो रही है, आपको बार बार हर्ट कर रही है वो चीजें, तो उसको आप वहीं पर छोड़िए और अपनी जिंदगी में आप आगे बढ़िए। जब तक आप अपने जिंदगी में आगे नहीं बढ़ेंगे, उसी चीज को लेकर आप सोचते रहेंगे कि क्या होएगा क्या नहीं होएगा, यार जो होएगा देखा जाएगा। अदरवाइज आप सोचते रहेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आगे बढ़िए और अपने जिंदगी में कुछ करिए। इंसान वही है, बस आपका और हमारा नजरिया होता है वो चेंज हो जाता है। फिलहाल एक कड़क सवाल मैंने आप सभी से पूछा है, उसको आप सोचिए और आंसर क्या हो सकता है। थोड़ा सा दिमाग पर जोर तो डालना पड़ता है। सो आज का कड़क सवाल यही है, जो जमीन पर गिरे तो टूटता नहीं है, लेकिन पानी में वो गिर जाए तो खराब हो जाता है। अरे भैया, कौन है वो जो जमीन पर पटक दो फिर भी नहीं टूटेगा, फिर भी खराब नहीं होएगा, लेकिन जैसे वो पानी में गया स्वाहा हो जाता है वो। सोचिए और फटाफट मैसेज करिए। फिलहाल के लिए खर गाना बहुत ही प्यारा, सो इस गाने को एंजॉय करते हैं।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

क्या बात है जी, कितना खूबसूरत गाना है कि अगर तू मेरे साथ है तो मुझे परवाह नहीं इस दुनिया की। तो हम सभी के पास ना एक ऐसा अनमोल रतन है जो हमारे मम्मी पापा है, वो अगर हमारे साथ है, हमारे जिंदगी में है, या यू नो आप अगर किसी से प्यार करते हैं, अगर वो आपके जिंदगी में

0: साथ राजकुमार संतोषी जी भी हैं, जो कि बंटवारा मूवी बहुत ही जल्द लेकर आने वाले हैं। और ये बात करूँ तो यानी कि
1: www.erosnow
0: ये जो मूवी है बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि जब तीन दिग्गज एक्टर एक साथ दिखते हैं तो मूवी में तो धमाल मचता ही मचता है। और ये 1947 का पहला ऑफिशियल टीजर है, जो कि 15 जून को रिलीज होने वाली है। और ये मूवी वाकई में बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। और तो इस मूवी देखते हैं कि आखिरकार जब इसका, क्योंकि जब भी मूवी देखने जाते हैं ना तो सबसे पहले टीजर देखते हैं, मैं तो जरूर देखती हूँ कि आखिरकार इस मूवी में ऐसा क्या है जो देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। फिलहाल आप सभी के लिए एक और मौका है, आप सोचिए और हमें फटाफट मैसेज करिए कि जो जमीन पर गिरे तो टूटता नहीं, पर पानी में गिरे तो वो खराब हो जाता है। सोचिए अभी एक बार और मौका है। फिलहाल इस गाने के बाद लौट कर आते हैं जी, और करेंगे आप सभी के मैसेज शामिल, और लूंगी इजाजत यहाँ से। जय।

क्या बात है जी, बहुत ही प्यारा गाना एंजॉय किया आपने। और आज वरीना के साथ आप कनेक्टेड समय की बात करूं तो 6:54 हो चुके हैं श्रोताओं, और आज की तारीख 5 जून, और टेम्परेचर की बात करूं तो 31 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, नमी है हवाओं में। और अब

बढ़ते हैं आप सभी के आंसर क्या आए हैं भैया, मैसेज प्यारे प्यारे आ गए हैं। सो आज का कड़क सवाल यही है, जो जमीन पर गिरे तो टूटे नहीं, पर पानी में गिरे तो खराब हो जाए, कौन है वो? चलिए देखते हैं किन का क्या मैसेज आता है। प्रिय मित्र रीना जी, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सर। और इनका कहना है कि राइट आंसर होता है बुक, यानी कि नोटबुक। ओके, और इनका नाम है नवनेश कुमार जी, हमारे साथ कनेक्ट होते हैं मुरादाबाद से। और अगले मैसेज की बात करूं तो अगला मैसेज आता है हमारे पास, यानी कि ललिता जी कनेक्ट होती हैं, और इन्होंने आज एक पेड़ लगाया है जिसका इन्होंने हमें फोटो भी क्लिक करके भेज दिया है, क्या बात है जी। और इनका कहना है कि वो जो पेपर होते हैं ना, राइट आंसर होता है कागज। ओके, चलिए जी फिलहाल अगले मैसेज की बात करूँ तो राकेश जी कनेक्ट होते हैं, और इनका कहना है कि मैडम घड़ी है जो, देखिए वो तो सर घड़ी तो आप सड़क पर फेंक दीजिए, कहीं भी फेंक दीजिए, गिर जाए तो वो टूट ही जाता है, ज़रूरी नहीं कि पानी में ही गिरे तो ख़राब होता है, बल्कि ज़मीन पर भी आप ऊपर से छोड़ के देखो तो टूट ही जाएगा ना। और अगले मैसेज की बात करूँ तो अगला मैसेज आता है ये हमारे पास, रूपाली जी कनेक्ट होती है लाइन पर मुरादाबाद से, और इनका कहना है कि नोटबुक है यानी कि पेपर होता है जो गिर जाए तो टूटता नहीं है, लेकिन पानी में गिरे तो वो ज़रूर ख़राब हो जाता है, मेहनत ख़राब हो जाती है मैडम, सच बताऊँ तो लगता है इनके साथ ये काम हुआ है, मेरे साथ भी हुआ था गाइस, बॉटल में जो पानी रखी तो वही गिर गया था। सो आज हमारे शो में विनर बनते हैं, यानी कि नवनेश कुमार जी विनर बनते हैं। सो आप अगर चाहते कि वाउचर मिले आपको तो हमारे स्टूडियो से आपको कलेक्ट करना पड़ेगा वाउचर, और आज मेरे शो में, अब क्योंकि मैं शो में एक ही को विनर बनाऊंगी तो ये विनर बनते हैं। अगर आप भी चाहते कि विनर बने तो पहले पाइए और पहले ले जाइए, यानी कि पहले आंसर देंगे तभी आप वाउचर जीत पाएंगे, फूड वाउचर जीत पाएंगे आप, ग्रिल्स की तरफ से आपको चाप खाने का मौका मिलेगा, अय हाय बड़ा ही टेस्टी होता है जो सच में। चलिए फिलहाल नवनेश कुमार जी आप वाउचर जीत चुके हैं तो आप स्टूडियो से आके कलेक्ट कर सकते हैं, और इसी के साथ मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाज़त। कल मिलेंगे सेम टाइम तो नहीं मिल सकते श्रोताओं, लेकिन कल हम मिलने वाले हैं मॉर्निंग मसाला शो में, यानी कि सुबह 10 बजे मिलने वाले हैं, जहां पर आप सभी के प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं उनको शामिल करेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे, और आप सभी के साथ अभी के लिए बाय बाय टाटा, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। भैया मैसेज आ गए मेरे फ़ोन में कि रिचार्ज खत्म होने वाले, इसका पहले टेंशन हो जाता है, पहले ही से ही बताने लग जाता है कि भैया रिचार्ज खत्म होने वाला है तुम्हारा, बताओ, ये कम टेंशन नहीं देता भैया, ये ज़्यादा ही देता है, डबल देता है। चलिए जी बाय बाय टाटा, टेक केयर, और यूँ ही अपनी ज़िंदगी में मस्त रहिए।

0: सूरत की प्रशंसा की।
1: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया हरित और स्वच्छ भविष्य की ओर बढ़ रही है तथा भारत भी इसमें सक्रिय योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर आगे बढ़ रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: प्रधानमंत्री आज दमण भी जाएंगे जहां वे लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृहमंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि ये परियोजना अंतिम चरण में है और अगले वर्ष सीमा सुरक्षा बल तथा सशस्त्र सीमा बल की तैनाती वाले 7 से 8 संवेदनशील क्षेत्रों में इसका प्रायोगिक चरण शुरू किया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के मालवीय नगर में हुई आग की घटना में 13 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मृतकों में एक व्यक्ति मोजाम्बिक, 4 नाइजीरिया, 1 लाइबेरिया, 3 किर्गिस्तान, 1 उज्बेकिस्तान, 1 बांग्लादेश, 1 कांगो और 1 इराक का नागरिक था। भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत सकारात्मक रही है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली के लिए आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से जबरन कब्जा कर रखा है। ये चुनाव 7 जून को होने हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% रहने का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगा। पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन 31 जुलाई तक किए जा सकेंगे। गृह मंत्रालय ने बताया है कि पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और अनुशंसाएं केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएंगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस की 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत को SU-57 लड़ाकू विमान कार्यक्रम में शामिल करना चाहता है। भारत एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मेगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
4: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
3: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
4: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841। बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
5: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
6: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
7: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
6: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का सामुदायिक रेडियो। आनंद के साथ हैं आप और प्रोग्राम का नाम है हेलो डॉक्टर, और हमारे साथ कोई ना कोई विशेषज्ञ, कोई ना कोई एक्सपर्ट मौजूद होते हैं। और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आकाश सिंघल, जो श्री साई हॉस्पिटल में है, इस वक्त वहाँ पर वर्किंग है। अब सर का वेलकम करेंगे और उनसे बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। आज हमने उनको क्यों आमंत्रित किया है अपने स्टूडियो में और हमारे इस प्रोग्राम में हेलो डॉक्टर में, तो वो तो हम आकाश जी से ही जानेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत थे हमारे एफएम मुरादाबाद के स्टूडियो में, जोरदार तालियों के साथ वेलकम टू एफएम मुरादाबाद। हाउ आर यू, कैसे हैं आप, प्लीज बताएं आकाश जी।
1: फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म।
0: थैंक यू सर,
1: दिस इज द फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस।
0: ओह वाओ, लवली, कैसा लग रहा है? पहले तो मैं यही पूछूंगा।
1: इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, लाइक थोड़ा सा है कि नाउ आई कैन शेयर माई थॉट्स विद द पीपल। ठीक है, आपके चैनल से काफी लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा जो जो चीजें हैं जो मैं चाहता हूँ कि एवरी पेरेंट शुड नो।
0: क्या बात है।
1: तो पहले तो मैं बताता हूँ, मेरा नाम डॉक्टर आकाश सिंघल है, जैसे कि आपने सबको बताया है।
0: जी जी, प्लीज।
1: मैंने MBBS किया है मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली से, फिर MD पीडियाट्रिक्स किया है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली से, उसके बाद मैंने किया है DM न्यूरोलॉजी एम्स न्यू दिल्ली से।
0: क्या बात है।
1: अब लोग सोचते हैं ये DM न्यूरोलॉजी है क्या?
0: जी,
1: तो मैं बताना चाहूंगा कि DM न्यूरोलॉजी बच्चों की सुपर स्पेशलिटी है।
0: हाँ जी।
1: इसमें हम बर्थ से 1 मंथ तक के बच्चों को देखते हैं। अब आजकल प्रीमेच्योरिटी, लो बर्थ वेट, मतलब समय से पहले बच्चे डिलीवर हो रहे हैं, कम वजन के साथ बच्चे डिलीवर होते हैं, तो इसकी एक सुपर स्पेशलिटी है। ऑल दो हम सारे ही पेडियाट्रिशियंस अपने ही कोर्स में न्यूबॉर्न बच्चे देखते हैं, बट सुपर स्पेशलिटी की जहां बात आती है तो वी आर एक्सक्लूसिवली लुकिंग आफ्टर न्यूबॉर्न फॉर द लास्ट 3 ईयर्स।
0: हाँ जी।
1: तो इसमें एक्सपर्टीज बढ़ता है और विद टाइम नॉलेज भी होती है। एंड रही बात मेरे बारे में, तो मैंने दिल्ली एम्स से किया है, तो वो एक हायर रेफरल सेंटर है, तो वहाँ पे हाई रिस्क केसेस ही मोस्टली होते हैं।
0: Alright.
1: तो हमारी एक्सपर्टीज उसी में ज्यादा होती है। समय से पहले डिलीवर हो गए हैं, खून बदलना पड़ा है किसी बच्चे का, बच्चा पैदा होने के बाद नहीं रोया है, ये सब केसेस।
0: बहुत ही अच्छा परिचय सर ने दिया है, तो ऑडियंस अब आप दिल थाम के बैठिए, आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेगी। आज हेलो डॉक्टर के प्रोग्राम में डॉक्टर आकाश सिंघल जी मौजूद हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे से अपने आप को जो है आपके साथ इंट्रोड्यूस किया। सो डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि जो नवजात शिशु है उसकी देखभाल में मतलब किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए हमें, जब न्यू बॉर्न बेबी होता है,
1: जब बेबी डिलीवर होता है। एक्चुअली कॉमन चीजें, कुछ मिथ्स हैं जो अगर बेबी नॉर्मल है, हेल्दी है, तो क्या करते हैं फैमिलीज, कभी कभी कुछ बुट्टी पिलाने लगते हैं
0: जी,
1: कोई कोई अम्बिलिकल कॉर्ड

0: बच्चे की नाल होती है, उस पर पाउडर या तेल लगाने लगते हैं। एक बहुत बड़ा मिथ है कि धूप दिखाएंगे तो पीलिया कम हो जाएगा, जॉन्डिस कम हो जाएगा। ये कॉमन चीजें हैं। कुछ लोग गाय का दूध, भैंस का दूध, मतलब डिफरेंट ये सब चीजें ट्राई करते हैं, ये चीजें नहीं होती, होनी चाहिए। ये सब चीजें बच्चों में इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ाती हैं। तो कुछ जैसे कि जैसे अगर बेबी हेल्दी है, मदर के पास है, तो उसे हर से 2 से 3 घंटे में ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए। ठीक है, अच्छे से साफ सफाई रखनी चाहिए। ये नहीं कि कभी कभी मैं देखता हूँ हॉस्पिटल में कि एक बेबी डिलीवर हुआ है, साथ में 6-7 रिश्तेदार हैं उसके साथ, तो हमें नहीं पता कि किसको क्या बीमारी है, कोई वायरल इन्फेक्शन है, कुछ है, तो वो बच्चे की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, तो वो बहुत जल्दी इन्फेक्शन कैच कर लेते हैं और फिर बच्चों के उनकी दिक्कत बढ़ जाती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर बेबी डिलीवर है तो पूरी साफ सफाई का ध्यान रखें, हाइजीन मेंटेन रखें, हाथ धो के ही बच्चे को टच करें, इन सब चीजों का ध्यान दें।
1: ओके, सो डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से आपने बताया। और कई बार ऐसा होता है कि जन्म के तुरंत बाद, जैसे कहते हैं कि बच्चे को माँ का दूध देना बहुत जरूरी होता है, तो ये कितना इम्पोर्टेंट है, जन्म के तुरंत बाद बच्चे को माँ का दूध मिलना चाहिए?
0: हाँ, डेफिनेटली यस। अगर मदर हेल्दी है, मतलब नॉर्मली क्या होता है, अगर नॉर्मल डिलीवरी है,
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: हम प्रैक्टिस करते हैं स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट इन अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 1 आवर ऑफ बर्थ। इसका मतलब है कि जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है उसे माँ के पेट के ऊपर रख देते हैं।
1: दिस इज कंगारू मदर केयर आई थिंक,
0: सॉर्ट ऑफ इट्स अ डिफरेंट थिंग।
1: ऑलराइट,
0: कंगारू मदर केयर मोस्टली प्रीटम बच्चों के लिए होती है, जो कम वजन के बच्चे होते हैं।
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: ठीक है। इन एवरी बेबी डिलीवरी के बाद क्या होता है, अंदर जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसका तापमान मेंटेन रहता है, बाहर आने के बाद ठंडा होने का रिस्क रहता है
1: जी।
0: तो बच्चों के लिए ठंडा होना काफी हानिकारक होता है। तो यही कहा जाता है कि जैसे ही बच्चा डिलीवर हुआ है तो उसको माँ के पेट के ऊपर रखें और वहीं पे ही इमीडिएटली ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करें। नॉर्मल डिलीवरी में ये पॉसिबल होता है, कुछ मुश्किलें आती हैं जब बच्चा ऑपरेशन से, सीजरियन डिलीवरी से होता है, उसमें इमीडिएटली पॉसिबल नहीं हो पाता है कुछ कुछ जगह, अगर हम चाहें तो हम कोशिश कर सकते हैं।
1: ओके,
0: ठीक है, बट ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ फीडिंग फॉर द बेबी।
1: ओके डॉक्टर साहब, एक सवाल रहेगा, जो नवजात शिशु होते हैं उनको मतलब कितनी बार वो दूध पीते हैं या उन्हें कितनी बार दूध पिलाना चाहिए, इसके विषय में थोड़ा सा आप बताइए।
0: बेबी को 2-3 आवरली, इनिशियली 2-3 आवरली हम बोलते हैं, जैसे अगर बच्चे शुरू में कि दो से तीन घंटे में आप फीड कराएं, कुछ चीजें होती हैं जैसे मदर्स को नहीं, जो फर्स्ट टाइम मदर्स बने
1: हैं, हाँ जी,
0: उनको नहीं पता नहीं होता पता है, वो क्या करती हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है 4 मिल्क और हैंड मिल्क, मतलब शुरू का दूध और बाद का दूध
1: जी।
0: तो हम की कहते हैं कि एक बार अगर मदर फीड करा रही हैं तो वो सफिशियंट टाइम के लिए फीड कराएं, जिससे बच्चे को पूरे एक तरफ से पूरा दूध मिले।
1: ओके,
0: क्योंकि क्या होता है, अगर बच्चा सिर्फ शुरू का दूध पीता है तो उसमें सिर्फ उसकी थर्स्ट, मतलब कि उसकी प्यास बुझती है, उसका पेट नहीं भरता है, ना ही वजन बढ़ता है। जो बाद का दूध होता है वो जो गाढ़ा होता है, जिसको हम हैंड मिल्क बोलते हैं,
1: हाँ जी,
0: उसमें
1: हाँ
0: हमारे
1: जी।
0: फैट्स होते हैं, बाकी चीजें होती हैं, तो जिससे उसका पेट भी भरता है और उसका वजन बढ़ता है। तो कुछ मदर्स अगर एक बार में दोनों तरफ से फीड करा रही हैं तो सिर्फ 4 मिल्क दे रही हैं, तो बच्चे का वजन नहीं बढ़ेगा, पेट नहीं भरेगा, बच्चा क्रैंकी रहेगा। और जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो हम प्रैक्टिस करते हैं फीडिंग ऑन डिमांड, मतलब बच्चा जब मांग रहा है दूध हमें उसको फीड कराना है। फीड कराने के बाद हमें ध्यान रखना है कि हमें हर बार डकार दिलानी है। फीड कराने के बाद बर्फ कराना, मतलब डकार दिलाना बेहद जरूरी होता है, तुरंत लेटाएं ना उसको, अच्छे से बर्फ करा के तभी लेटाएं।
1: बहुत ही बढ़िया, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेलो डॉक्टर, मेरा नाम आनंद है और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ श्री साई हॉस्पिटल से डॉक्टर आकाश सिंगल जी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि जो नवजात शिशु होते हैं वो कई बार रोने लगते हैं, तो ऐसे में जो समझ नहीं आता है, ना तो मम्मी को समझ आता है ना पापा को समझ आता है, तो बच्चा अगर ज्यादा रोता है तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए?
0: अगर बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है तो कुछ बच्चे तो उसके पास ओनली वे ऑफ एक्सप्रेशन इज रोना, अगर उसको कोई भी दिक्कत होगी वो सिर्फ रोएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: है ना,
1: बिल्कुल।
0: वो कॉमन चीजें होती हैं, सबसे पहले
1: मतलब कोई रीजन, कोई कारण, मतलब जिससे पता,
0: तो हम थोड़ा सा सबसे पहले ट्राई करते हैं कि फीड करा के देखते हैं। मोस्टली बच्चों में क्या होता है, वो भूखे होते हैं, इस वजह से वो रो रहे होते हैं, हमने फीड करा के शांत हो जाते हैं, इट्स गुड। कुछ कुछ बच्चों में क्या होता है, अगर वो फीड भी नहीं कर रहे होते हैं तो एक नोज ब्लॉक बहुत कॉमन चीज होती है, मतलब मैंने जितने भी मैं पेशेंट्स देखता हूँ तो वन ऑफ द नेक्स्ट पेशेंट, सब में किसी न किसी को नोज ब्लॉक बहुत कॉमन होता है। सिंपल, अब बेबी की नोज गंदी है, वो क्लीन तो कर पाएगा नहीं, तो उसके लिए है कि हम कुछ मेडिकेशन या फिर नॉर्मल सलाइन ड्रॉप्स होती हैं उसको हम डालते हैं, बेबी की नोज क्लियर हो जाती है तो वो इजिली फीड कर पाते हैं, शांत हो जाती है। ठीक है, कुछ बच्चे लाइक अगर हमें देखना है कि अगर एक्सेसिवली क्राई कर रहा है तो उसमें डाइपर तो वेट नहीं है, कॉमन चीजें हमें देखनी है। कभी कभी हम मिस कर देते हैं कि बच्चे का डाइपर गीला है, वो उसको इरिटेट कर रहा होता है और बच्चा रो रहा होता है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छे से डॉक्टर साहब आपने बताया। नवजात में जो बुखार है वो कितना खतरनाक होता है छोटे बच्चों में?
0: छोटे बच्चों में ज्यादा खतरनाक पहले कहें तो हमें उनके अंदर टेम्परेचर मेंटेन करने की इतनी कैपेसिटी नहीं होती है। तो इसलिए ही आप देखेंगे कि कहीं पे भी आपने अगर नर्सरी देखी होगी तो उसमें हर बच्चा यूजुअली वार्मर के नीचे लेटा होता है, मतलब कि उसको कॉन्स्टेंटली हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो इसलिए उनमें ठंडे होने का रिस्क ज्यादा होता है।
1: ठीक है, बहुत
0: उनमें ठंडे होने का रिस्क ज्यादा होता
1: जी,
0: है
1: जी, जी,
0: ठीक है। तो हमें, मैं यही बोलता हूँ सब पेरेंट्स को कि जितने आप कपड़े पहन रहे हैं उससे एक लेयर एक्स्ट्रा पहना के रखें, बच्चों को कवर करके रखें। पेरेंट्स का सवाल होता है कि सर एसी चला सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, अब इतनी गर्मी है। मैं यही बोलता हूँ कि ठीक है आप एसी चला सकते हैं, बट टेम्परेचर आप रूम का 25-27 डिग्री मेंटेन करके रखो, डायरेक्टली पंखे के नीचे नहीं लेटाओ बच्चों को, बच्चों को अपने से लेयर एक्स्ट्रा पहना के रखो। ठीक है, और दूसरा चीज आती है, बच्चे का टेम्परेचर आप थर्मोमीटर से चेक करने की जरूरत नहीं है, हम अपने हाथ से भी छू के बच्चे के हाथ और पैर देख सकते हैं कि अगर वो ठंडे हैं तो हम एक्स्ट्रा कवर पहना रहे हैं। ठीक है, और अगर बच्चा बहुत ज्यादा पसीने आ रहे हैं कुछ है तो हमें कपड़े कम कर देने हैं।
1: बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब,
2: आकाशवाणी लखनऊ से।
1: बच्चे उन्हें जन्म की कितनी देर बाद उनको नहलाना चाहिए और उनको कब नहलाना चाहिए, बेसिकली नहीं पता होता है जो न्यू पेरेंट्स होते
2: हैं। निभाए जिम्मेदारी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में बायोयुग ग्रीन कमांड 2026 का किया शुभारंभ, कहा वायु प्लास्टिक का इस्तेमाल आत्मनिर्भर भारत की दिशा में है बड़ा कदम। बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहाताल प्रदेश का 13वां रामसर स्थल घोषित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपलब्धि पर जताई खुशी। और वाराणसी में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक का आज हुआ समापन, अंतिम दिन ब्रिक्स सदस्य देशों ने सांस्कृतिक सहयोग और आपसी साझेदारी को मजबूत बनाने पर दिया बल। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रदेश भर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत बृहद पौधरोपण किया जा रहा है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में एक पेड़ माँ के नाम महाअभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 35 करोड़ पौधरोपण लक्ष्य के अंतर्गत एक पेड़ माँ के नाम पौधरोपण महाअभियान 2026 के लोगों का भी अनावरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल एक अभियान नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचें और पेड़ लगाकर प्रकृति का संरक्षण करने का संकल्प लें।
3: 5 संकल्प हम सबको इस अवसर पर लेने होंगे। एक, हर नागरिक एक पेड़ माँ के नाम पर अवश्य लगाएगा, कम से कम एक पेड़, यह हर नागरिक का दायित्व है। दूसरा, पेड़ लगाना ही नहीं उसकी सुरक्षा का दायित्व भी लेना है, हर एक ओर से उसे बचाना है। तीसरा, जल संरक्षण को अपने जीवन का हिस्सा बनाना। चौथा संकल्प होना चाहिए, सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह रोके, उससे भी हमें पर्यावरण को होने वाले नुकसान के साथ हमें वो करना पड़ेगा। और अंतिम जो संकल्प है वह प्रकृति के अनुकूल जीवन शैली को अपनाना।
2: कार्यक्रम में विश्व बैंक के सहयोग से 2741 करोड़ रुपए की लागत वाली उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंध परियोजना का भी शुभारंभ किया गया। साथ ही श्रावस्ती स्थित गुलेरा केन नाला को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री की मौजूदगी में विश्व बैंक और प्रदेश सरकार के बीच MOU का हस्तांतरण हुआ। इससे पहले मुख्यमंत्री ने लखनऊ की कुकरेल रेंज में पौधरोपण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने महर्षि चरक औषधि वन की भी स्थापना की। यहां उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को सम्मानित भी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे। दौरे के पहले दिन उन्होंने बायोयुग ग्रीन कमांड 2026 का शुभारंभ किया। ये पहल पारंपरिक प्लास्टिक के विकल्प के रूप में बायोप्लास्टिक को बढ़ावा देने के लिए की गई है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में गन्ने के मूल्य में अच्छी बढ़ोतरी की गई है और बायो इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गन्ना आधारित बायोप्लास्टिक के इस्तेमाल से न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण होगा बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम होगा।
4: जब हम गन्ने से बायोप्लास्टिक बनाएंगे तो हमारी निर्भरता विदेशों पर कम होगी और हम धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनेंगे। साथियों, पीएलए दुनिया के सबसे सस्ते बायोप्लास्टिक में से एक है और जब यह डिस्पोज होगा तो यह कचरा नहीं खाद बनेगा, फर्टिलाइजर मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाएगा, यानी कि हर तरीके से फायदा ही फायदा, कहीं से कोई नुकसान नहीं।
2: बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुराहाताल को देश का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश की इस उपलब्धि पर खुशी जताई है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इसमें झलकती है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि भारत ने पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण और आर्द्र भूमि सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। श्री योगी ने कहा कि ये उपलब्धि विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच सामंजस्य स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सुराहाताल प्रदेश का 13वां रामसर साइट है। लखनऊ में विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में वन राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने सुराहाताल के रामसर साइट बनने का प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बलरामपुर में 294 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश की पहचान निवेश और सुरक्षा के माहौल के लिए हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार आज हर जनपद के समग्र विकास के लिए काम कर रही है।
3: यूपी में बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके और बिना थके डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड के साथ आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश के नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य कर रही है। अन्नदाता किसानों के चेहरे पे खुशहाली ला रही है। बहन और बेटियों के स्वावलंबन के लिए कार्य कर रही है। व्यापारी को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवा रही है। बेहतरीन कनेक्टिविटी के माध्यम से आज हर जनपद विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ा है।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। वाराणसी में आयोजित ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक का आज समापन हो गया। बैठक के दूसरे दिन ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने सांस्कृतिक सहयोग और आपसी साझेदारी को और मजबूत बनाने पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब समेत 11 देशों ने हिस्सा लिया। संस्कृति मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव अमिता प्रसाद सरभाई ने बताया कि आज बैठक में भारत की मूल्यवान धरोहरों को वापस लाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा विकास और संस्कृति के समन्वय के साथ आगे बढ़ने को लेकर भी चर्चा की गई।
5: हमेशा यही कोशिश रही है सरकार की और स्पेशली संस्कृति मंत्रालय की कि तो हमारे जो भी स्टोलन आर्टिफैक्ट्स हैं या जो स्मगल करके ले गए जाए गए या उसके पहले कॉलोनियल टाइम्स में ले जाए गए उनको कैसे वापस लाया जाए कि वो हमारी धरोहर, तो उसी के ऊपर चर्चा हुई है और कैसे डेवलपमेंट और कल्चर साथ साथ हो, विरोधाभास ना हो उसमें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने पर आज से विशेष अभियान की शुरुआत हो गई है। अभियान के तहत प्रदेश में भी आज से 21 जून तक जनपदों के प्रभारी मंत्री और जनप्रतिनिधि समाज के प्रबुद्ध वर्ग के साथ संवाद स्थापित करेंगे। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि चौपालों का आयोजन कर जन समस्याओं का निस्तारण करेंगे। इसी क्रम में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में वृक्षारोपण कर समेकित जन कल्याण और जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। अभियान के बारे में जानकारी देते हुए प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है।
6: भारतीय जनता पार्टी ने और सरकार ने 5 जून से 21 जून के बीच में कार्यक्रम निर्धारित किया है। आज एक पेड़ माँ के नाम, तो आज यही कहूंगा 12 वर्ष नहीं, इसी तरह 2047 जो उनका सपना है कि 2047 में हमारा विश्व में देश हमारा बहुत आगे रहे, पूरी दुनिया को दिशा दे और आगे बढ़े और गरीबों की सेवा करते रहे।
2: उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज लखनऊ में अकादमी सम्मान समारोह में वर्ष 2021 से 24 तक के लिए चयनित कलाकारों को सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित इस समारोह में 51 विशिष्ट कलाकारों को संगीत, नृत्य, नाटक और लोक कलाओं के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए ये सम्मान प्रदान किए गए। बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई जनपदों में आंधी बारिश का सिलसिला जारी रहा। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया है। साथ ही पूर्वी जनपदों में तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ माँ के नाम महाअभियान का किया आगाज। कहा पौधरोपण और जल संरक्षण कर जनता भी निभाए जिम्मेदारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में बायोयुग ग्रीन कमांड 2026 का किया शुभारंभ। कहा बायोप्लास्टिक का इस्तेमाल आत्मनिर्भर भारत की दिशा में है बड़ा कदम। बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहाताल प्रदेश का 13वां रामसर स्थल घोषित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपलब्धि पर जताई खुशी। और वाराणसी में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक का आज हुआ समापन। अंतिम दिन ब्रिक्स सदस्य देशों ने सांस्कृतिक सहयोग और आपसी साझेदारी को मजबूत बनाने पर दिया बल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
7: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
8: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
9: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइन्स नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
10: कॉल 8826213131।
11: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा।
12: जितना भी तो जब बच्चे का वजन 2 किलो या उससे ज्यादा हो जाए हमें उसके बाद नहलाना चाहिए बच्चे को।
13: छोटे बच्चों के लिए, जो छोटे न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, उनके लिए टीकाकरण कितना महत्वपूर्ण है, कितना इम्पोर्टेंट है। कई बार पेरेंट्स लगवाने से डरते हैं आज भी ग्रामीण इलाकों में कि बच्चे को बुखार आ जाएगा, बच्चा रोने लगेगा, तो ये बहुत सारे ना लोग एक्सक्यूजेस देते हैं, टीकाकरण नहीं करवाते हैं, तो ये कितना जरूरी है डॉक्टर साहब?
12: टीकाकरण बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों में, क्योंकि हम इससे कई बीमारियों से बचा सकते हैं। इसलिए हमारी गवर्नमेंट में भी काफी सारी वैक्सीन आती है, तो हर वैक्सीन के साथ साइड इफेक्ट होते हैं, बट वैक्सीन से होने वाले फायदे कई ज्यादा हैं उन साइड इफेक्ट से। तो मैं यही कहूँगा सारे पेरेंट्स से कि अपने बच्चों को सारे ही टीके लगवाएं जितने अवेलेबल हैं, उनसे एटलीस्ट बीमारियां या तो नहीं होंगी, चांसेस कम हो जाएंगे या सीवियरिटी कम हो जाएगी बीमारी की।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं हेलो डॉक्टर प्रोग्राम, मेरा नाम आनंद है और ये है आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 FM पे। हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में आज डॉक्टर आकाश सिंघल जी हमारे साथ मौजूद है श्री साई हॉस्पिटल से, और आज हम न्यू बोर्न के ऊपर ढेर सारी बात करें, नवजात शिशुओं को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब एक और मेरा सवाल है, जो नवजात का वजन होता है वो कितना सामान्य माना जाता है?
12: नॉर्मली कहें तो हम 2.5 केजी के अराउंड एक एवरेज बर्थ वेट होता है, ठीक है, उससे कम है अगर हम उनको लो बर्थ वेट बोलते हैं, मतलब जन्म का वजन कम है, बट जैसे जैसे वजन कम होने के कई कारण हो सकते हैं, या तो बच्चा पहले डिलीवर हो गया है या फिर ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन है, मतलब उसका गर्भ के अंदर वजन ठीक से ही बढ़ा है, तो वो एक अलग चीज होती है। वजन अगर जैसे जैसे बच्चा समय से पहले होगा तो उसका स्वाभाविक है वजन भी कम होगा, तो इसके साथ सारी चीजें हमारे रिस्क बढ़ते हैं। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं न्यूबॉर्न प्रीटर्म या फिर हमारे लो बर्थ या वेरी लो बर्थ 1500 ग्राम से कम

0: वाले बच्चों में काफी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती हैं, क्योंकि सारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स इमेच्योर हैं। मैं अपने पेरेंट्स पेशेंट्स को भी यही समझाता हूँ कि उसका अगर आप ब्रेन देखें तो ब्रेन की वेसल्स हैं वो कमजोर हैं, उनमें अगर कोई भी प्रेशर चेंज होगा तो उनमें रप्चर का रिस्क रहेगा, ब्रेन हेमरेज का रिस्क रहता है। बच्चे के लंग्स ठीक से डेवलप नहीं हुए हैं अगर, तो उनमें छोटी मशीनी, जैसे हम आम भाषा में छोटी मशीन कहते हैं, जो सी पैप होता है या फिर वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। और अगर बच्चे की गट भी हमारे अगर समय से पहले हैं तो वो भी कमज़ोर होती है। तो बच्चे कुछ बच्चे प्रीटम बच्चे या हमारे जो कम वजन वाले बच्चे हैं फीड यानी कि दूध पचाने में भी दिखते हैं, ठीक है, और उनमें इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति भी कम होती है। तो ये सारी कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं जो समय से पहले जन्म हुए बच्चे या फिर जो काफ़ी मतलब हमारे 1500 ग्राम 1600 ग्राम वाले ये जो बच्चे होते हैं इनमें देखी जाती है। इन बच्चों को आईसीयू की बेहद ज़रूरत होती है। यहाँ पे हम इनको मिनिमल हैंडलिंग करनी होती है, मतलब कम से कम डिस्टर्ब करें बच्चों को, सारा काम बच्चों का क्लस्टर केयर की सारा काम जो भी करना है, डायपर चेंज करना है, फीड देनी है, ये सब हम एक साथ करें। जितना कम हम इनको हैंडल करेंगे, जितनी पूरी कोशिश रहनी चाहिए कि हम इनको इन यूट्रो एनवायरनमेंट जो कि गर्भ के अंदर का वातावरण होता है वो हमें प्रोवाइड करने की, जिससे इनकी ग्रोथ अच्छी होती है।
1: डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आप आए हमारे स्टूडियो और आपने हमारे तमाम सुनने वालों को बहुत बेहतरीन जानकारी दी, और मुझे पूरी उम्मीद है ये जानकारी कहीं ना कहीं जो न्यू पेरेंट्स बनने वाले उनके लिए भी बहुत कमाल होगी और जो लोग बन चुके हैं उनके लिए भी कमाल की होगी। सो थैंक यू सो मच, वेल आपने इतना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हम आगे भी आपको आमंत्रित करते रहेंगे और आप प्लीज आते रहिएगा। श्योर, और मैं जाने से पहले आपसे एक संदेश लेना चाहूंगा, जो तमाम लोग आपको सुन रहे हैं स्पेशली मॉम डैड जो अभी न्यू बनने वाले हैं और जो बन गए उनके लिए आप एक क्या संदेश जाते जाते।
0: मैं बताना चाहूंगा कि बच्चों में हमें डेंजर साइंस का ध्यान रखना चाहिए। डेंजर साइंस मतलब खतरे के संकेत।
1: हाँ जी।
0: किस स्थिति में हमें बच्चों को तुरंत अस्पताल लेके जाना है। अगर बच्चा सुस्त है, मोस्टली बच्चे पूरे दिन सोते हैं, फीड करेंगे सो जाएंगे, फीड करेंगे थोड़ी बहुत एक्टिविटी करेंगे सो जाएंगे, बट आपके उठाने से भी नहीं उठ रहे हैं, वो बच्चा सुस्त है, आप उसको अस्पताल लेके जाएंगे। बच्चे को दौरे आ रहे हैं या फिर बच्चे को सांस लेने में तकलीफ है या बच्चा दूध नहीं पी रहा है या फिर बच्चा तापमान बच्चे का टेम्परेचर काफी कम है या उसको बुखार है,
1: हाँ जी हाँ,
0: ठीक है, या फिर बच्चे के हथेली या तलवे पीले हो गए हैं, ये सब हमारे डेंजर साइंस होते हैं, इनको बेहद ध्यान रखना है। और ऐसी अगर बच्चों में कोई भी चीजें देखने को मिलती हैं तो तुरंत अस्पताल में दिखाना है। और एक और एडवाइस पेरेंट्स के लिए कि मदर्स को अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है बच्चे की केयर करते टाइम, क्योंकि अगर मदर की हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो मदर का मिल्क आउटपुट कम होगा, वो बेबी का ठीक से ध्यान नहीं रख पाएंगी तो वो ठीक नहीं है। तो मदर्स को भी अपना ध्यान रखें। और एडवाइस रहेगी पेरेंट्स के लिए कि आजकल इंटरनेट के जमाने में सिर्फ इंटरनेट पे ही भरोसा ना करें,
1: बिल्कुल सही कहा,
0: कि अगर कोई भी दिक्कत लगती है आप अपने नजदीकी डॉक्टर से डिस्कस करें और अपनी उनके ओपिनियन को ही माने, क्योंकि नेट पे तो अगर खोलेंगे तो कुछ भी आ जाएगा, उसके बाद डरेंगे और कोई फायदा नहीं होगा। तो बेहतर रहेगा कि आप अपने डॉक्टर से सलाह लें और उनकी एडवाइस को माने।
1: थैंक यू सो मच डॉक्टर आकाश जी, आप आए, बहुत बहुत थैंक यू, और एफएम मुरादाबाद आरजे आनंद आपका शुक्रिया करता है, उम्मीद करता हूँ आगे भी ऐसे मिलते रहेंगे सर। बहुत बहुत थैंक यू। सुनते रहिए आप एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। फिर मिलते हैं एक नई सीरीज में किसी और नए एक्सपर्ट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
2: विश्वास के एक नए इतिहास के।
3: अरे भैया, खेती और फायदे का सौदा
4: और क्या। हमारे यूपी में पहले केवल पारंपरिक खेती होती थी, अब ट्रैक्टर्स, मॉडर्न मशीनों और डिजिटल तकनीकों की मदद से किसान और कृषि दोनों स्मार्ट हो गए हैं।
3: अच्छा
4: भैया, किसानों की बढ़िया ट्रेनिंग, आर्थिक मदद और प्रोत्साहन से यूपी में अनाज, दूध, पशुपालन, हर चीज का उत्पादन बढ़ चुका है।
3: अरे वाह,
4: सरकार का फोकस ही इस पर है कि किसानों को बढ़िया दाम मिले, बिचौलियों को छुट्टी मिले और कस्टमर को अच्छा सामान मिल पाए।
3: शुक्र है डबल इंजन सरकार है।
2: 9 साल विश्वास के एक नए इतिहास
5: के। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने एक निजी EV टैक्सी कंपनी की गाड़ियों को झंडे दिखाकर रवाना किया और केंद्रीय पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजधानी में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली सचिवालय में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में श्रीमती गुप्ता के कैबिनेट सहयोगी आशीष सूद, दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली पुलिस, दिल्ली अग्निशमन विभाग और दिल्ली विकास प्राधिकरण सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि आग लगने की घटनाओं, बिना मंजूरी के निर्माण, आग से सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन और लोगों की जान खतरे में डालने वाले दूसरे मामलों में संबंधित विभागों के अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए जिनके तहत दोषी पाए गए अधिकारियों के वेतन, पेंशन या संपत्ति से सरकार को हुए नुकसान की भरपाई की जा सके। गुरुग्राम जिला प्रशासन ने जिले के सभी मॉल, व्यावसायिक भवनों, होटल, रेस्टोरेंट, शोरूम और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का फायर सेफ्टी ऑडिट कराने के निर्देश जारी किए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में गुरुग्राम के जिला सूचना और जनसंपर्क अधिकारी के अनुसार गुरुग्राम जिला उपायुक्त उत्तम सिंह ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। एक रिपोर्ट।
6: DIPRO के अनुसार किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए सभी संस्थानों में निर्धारित अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। फायर सेफ्टी ऑडिट के दौरान अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता की जांच, आपातकालीन निकास व्यवस्था का निरीक्षण और फायर अलार्म सिस्टम तथा सुरक्षा प्रावधानों का सत्यापन किया जाएगा। DIPRO ने बताया कि नियमों का उल्लंघन मिलने पर नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। गुरुग्राम जिला प्रशासन ने सभी प्रतिष्ठान संचालकों से अपील की है कि वे अपने संस्थानों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखें और निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करें। सकलेन की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
5: दक्षिण दिल्ली के ग्रेटर कैलाश वन स्थित एक निजी कंपनी के कार्यालय में आज तड़के आग लग गई। दिल्ली अग्निशमन विभाग के अनुसार घटना की सूचना सुबह 2:47 पर प्राप्त हुई। आग बुझाने के लिए दमकल विभाग ने मौके पर 11 गाड़ियां भेजी और सुबह लगभग 7 तक आग पूरी तरह बुझा दी गई। इस दौरान 2 दमकल कर्मियों को हल्की चोटें आईं जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं।

0: के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर क्षेत्र की विभिन्न विकास योजनाओं और प्रगति कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान श्री वैष्णव ने शकूर बस्ती डिपो में कार्यरत कर्मचारियों, मेंटेनेंस स्टाफ और अन्य रेल कर्मियों से संवाद भी किया। उत्तर रेलवे ने बताया कि श्री वैष्णव ने मौके पर मौजूद वरिष्ठ रेल अधिकारियों को उनकी समस्याओं पर गंभीरता से गौर करने तथा उनके त्वरित और समयबद्ध निवारण के लिए कड़े प्रशासनिक आदेश जारी किए। दिल्ली सरकार के मंत्री परवेश साहिब सिंह ने आज राजधानी के जखीरा अंडरपास का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद मीडिया से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग और जल बोर्ड के अधिकारी उन सभी जल भराव के पॉइंट पर लगातार काम कर रहे हैं जहां पिछले वर्ष मानसून के दौरान जल भराव हुआ था। उन्होंने कहा कि सरकार आने वाले मानसून को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद है और लोगों को बारिश के दौरान कोई भी असुविधा न हो इसके लिए निरंतर प्रयासरत है।
1: दिल्ली में पिछली बारिश में जहाँ जहाँ हमको वाटर लॉगिंग के पॉइंट्स मिले, हमारे पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, जल बोर्ड के अधिकारी निरंतर हर पॉइंट पर जाकर देख रहे हैं। सारी व्यवस्था अभी से हो चुकी है, हमारे सारे पंप स्टेशन, सारे अधिकारी और वो एकदम से मुस्तैद हैं।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने उसके पोस्ट रिजल्ट सर्विसेज पोर्टल पर किए गए साइबर हमलों के बारे में दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज की है। बोर्ड ने बताया कि ये पोर्टल इस महीने की 2 तारीख को शुरू किया गया था, जिस पर पिछले 3 दिनों में बार बार सुनियोजित साइबर हमले किए गए। एक रिपोर्ट।
2: CBSE के अनुसार इन हमलों की प्रकृति, पैमाने और सुनियोजित तरीके को देखते हुए उसने विस्तृत जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई के लिए ये शिकायत दर्ज की है। CBSE ने इस बात पर बल दिया है कि इन प्रयासों के बावजूद उसके सिस्टम और डेटाबेस पूरी तरह सुरक्षित हैं और उनसे कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। बोर्ड ने बताया कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर और केंद्र सरकार की अन्य एजेंसियों की साइबर सुरक्षा टीम के सहयोग से लगातार निगरानी और प्रतिक्रिया तंत्र के माध्यम से इन हमलों को सफलतापूर्वक रोक लिया गया। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद शिकायत निवारण के लिए 70,000 से अधिक विद्यार्थियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें अंकों के सत्यापन के लिए 7,314 आवेदन और पुनर्मूल्यांकन के लिए 63,000 से अधिक आवेदन मिले हैं। बोर्ड ने मंगलवार को उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में कमियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोला था। 13 मई को 12वीं के परिणाम घोषित होने के बाद कुछ विद्यार्थियों ने प्राप्त अंकों से असंतोष व्यक्त किया था और ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के अंतर्गत मूल्यांकन की सटीकता पर सवाल उठाए थे। इसके बाद शिक्षा मंत्रालय ने इस प्रणाली के कार्यान्वयन और खरीद संबंधी पहलुओं की समीक्षा शुरू की। जवाबदेही और विश्वास निर्माण उपायों के अंतर्गत बोर्ड के अध्यक्ष राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता का तबादला कर दिया गया और प्रशांत लोखंडे को नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। शिक्षा मंत्रालय ने आज कहा कि JEE एडवांस्ड परीक्षा देने वाले छात्रों के डेटा लीक और निजता उल्लंघन के संबंध में कई भ्रामक और तथ्यात्मक रूप से गलत खबरें सामने आई हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने स्पष्टीकरण जारी किया है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित जानकारी भ्रामक है और गलत सूचना फैलाने का प्रयास है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि JEE एडवांस्ड परीक्षा के दौरान कोई भी संवेदनशील जानकारी लीक नहीं हुई है। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत बनाए रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो रेट को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया, जबकि नीतिगत रेपो रेट को तटस्थ रखा गया है।
3: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% और वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में 7.8% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर भारतीय अर्थव्यवस्था की अंतर्निहित मजबूती, सुधारों की सफलता और 140 करोड़ भारतीयों के अथक परिश्रम

0: को दर्शाती है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि सरकार लोगों के जीवन को सुगम बनाने, व्यापार सुगमता लाने और युवाओं के लिए अवसरों को बढ़ाने के हर संभव प्रयास करेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजधानी में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत कई पर्यावरणीय पहलों का शुभारंभ भी किया। श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश बनकर उभरा है। उन्होंने नागरिकों से न केवल पेड़ लगाने बल्कि उन्हें भावी पीढ़ियों के लिए पोषित और संरक्षित करने का भी आग्रह किया।
1: दिल्ली में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में धूलमुक्त दिल्ली के लिए कार्यक्रम शुरू हुआ है। नमो पार्क को दिल्ली को समर्पित किया गया है। दिल्ली में जो लोकल वनस्पतियां और जो पेड़ हैं उसके लिए प्रदर्शनी लगाई गई है। मैं आप सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। एक पेड़ माँ के नाम पे जरूर लगाएं। आपके द्वारा ये किया गया कार्य पर्यावरण की दृष्टि से अच्छा होगा।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए हरियाली बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण उपायों में से एक है। उन्होंने घोषणा की कि दिल्ली सरकार ने इस वर्ष राजधानी में 15 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री ने पौधारोपण के बाद उनकी देखभाल और संरक्षण के लिए सामुदायिक भागीदारी के महत्व पर बल दिया।
2: 15 लाख पेड़ इस साल लगाने हैं। सैपलिंग हम देंगे, जगह भी बताएंगे, पर पेड़ सब मिलकर के लगाएंगे। दिल्ली की हवा को साफ करने के लिए ऑक्सीजन पार्क पे काम शुरू हो गया है। हम लोग इस बार पॉल्यूशन रिलेटेड सभी मेजर्स पहले से ही ले लेंगे। हम ऑलरेडी दिल्ली की सभी सड़कों को वॉल टू वॉल कार्पेटिंग के लिए प्लान कर चुके। इससे सड़कों से धूल हटाने में मदद मिलेगी।
0: विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में डॉक्टर मुरुगन ने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने जल संरक्षण, वृक्षारोपण और वृक्षों की रक्षा तथा संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया।
3: Observing that World Environmental Day, our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji.
4: हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से पर्यावरण की रक्षा और उसे बेहतर बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने हमेशा पर्यावरण के महत्व पर जोर दिया है और देश को इसके प्रति जागरूक किया है। हमें पानी बचाना है, पेड़ लगाने हैं और लगाए गए पेड़ों की देखभाल भी करनी है। पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित बनाए रखने के उद्देश्य से ही आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है।
3: एनवायरमेंटल डे, सो वी आर ऑल ऑब्जर्विंग दिस डे।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज सभी को शुभकामनाएं दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने देशवासियों से पर्यावरण संरक्षण, सतत जीवन शैली और जैव विविधता की रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करने का आग्रह किया। पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन अगले महीने की 31 तारीख तक खुले रहेंगे। गृह मंत्रालय ने बताया है कि पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और अनुशंसाएं जो 15 मार्च से शुरू हुई हैं केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएंगी। और अब बात मौसम की। राजधानी में आज पूरे दिन धूप रहने के साथ साथ हल्के बादल भी छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल राजधानी में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में अग्निकांड जैसी घटनाओं को रोकने और अग्नि सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर अंकुश लगाने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। गुरुग्राम जिला प्रशासन ने सभी मॉल, व्यावसायिक भवनों, होटल, रेस्टोरेंट, शोरूम और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का फायर सेफ्टी ऑडिट कराने के निर्देश जारी किए। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने एक निजी ईवी टैक्सी कंपनी की गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजधानी में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
6: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
5: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
6: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
7: कॉल 7500153841।
8: टायर लो सोना जीतो।
9: क्या?
8: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
10: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड अपोजिट मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
11: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
2: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
1: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
3: हेलो जी, कैसे हाल चाल है? आप सुन रहे हैं मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। और आज की शाम और भी खूबसूरत बनाने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोहम्मद अजीम। अजीम भाई, वेलकम टू FM मुरादाबाद। कैसे हो भाई?
4: बढ़िया, एक नंबर।
3: क्या बात है, एक नंबर तो आप हो ही, नो डाउट यार। और अजीम जब भी आते हैं कुछ कुछ स्पेशल लेकर आता है, एंड आई एम श्योर आज की शाम भी कुछ खूबसूरत चीजें लेकर आएगा हमारे दोस्तों के लिए। तो अजीम, ये बताओ रेडियो पे आके कैसे लग रहे हैं अब जब आए?
4: मजा आ रहा है।
3: क्या बात, बहुत
4: ही डरी रहा हूँ लेकिन बढ़िया, मजा आ रहा है।
3: वेरी नाइस यार, लेकिन डरना मत भाई। देखो जो मेरे साथ बैठते हैं उन्हें डर नहीं लगता है, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से हॉस्पिटैलिटी देता हूँ। पता नहीं चलता है कि कब हमने इंटरव्यू करके एंड भी कर दिया,
4: ये तो
3: है ना। एंड आई होप आपको भी मजा आ रहा होगा
4: बहुत ज्यादा।
3: तो यार आज की शाम जो है हम कुछ बेहतरीन से सुनना चाहेंगे अपने दोस्तों के नाम, अपने लिसनर्स के नाम। आप क्या सुनाना चाहोगे?
4: स्टार्टिंग में तारीफ की करना चाहूंगा, क्योंकि पिछले वीक जो सुनाया था वो सूर्य स्टार्टिंग की सैडनेस।
3: मुझे लगता है कि यार तारीफ अगर हो जाए तो फिर मजा आ जाए। हाँ, चार चांद बन जाए। हाँ, है ना, चार चांद तो लग जाएंगे।
4: करो ना अपने महबूब की किस तरीके से।
3: हाँ, क्या बात है, महबूब की तारीफ, वाह।
4: पता है मुझे पहले कुछ था पर अब अहमक हूँ मैं,
3: वाह।
4: पर तू नहीं, तुम मेरे लिए क्या हो सुनना चाहती हो? तुम मेरे लिए क्या हो सुनना चाहती हो तो सुनो। तुम खूबरू हो, खुश अंदाम हो तुम। तुम खूबरू हो, खुश अंदाम हो तुम, सिफाते हुस्न से बहरावार हो तुम।
3: क्या बात है, वेरी नाइस है, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। गाइस ऐसी बहुत सारी कॉन्वर्सेशन अभी इसके साथ करनी है, आप कहीं मत जाइए, स्टे ट्यून्ड रहिए आरजी आनंद के साथ। एक से गाना, उसके बाद जल्दी से लौट कर आते हैं मोहम्मद अजीम के साथ। अजीम वेलकम बैक है वंस अगेन FM मुरादाबाद के स्टूडियो में मेरे भाई। अब बताओ अब क्या सुना रहे हो? अभी तो तुमने तारीफ कर दी, बहुत मजा आया तुम्हारी तारीफ सुन के, मुझे भी और मेरे लिसनर्स को भी, आई एम श्योर उनको भी अच्छा ही लगा होगा। तो अब जरा कुछ बेहतरीन सुना दो यार।
4: हाँ क्यों नहीं, उसके बाद आप एक पोएट्री अपनी महफिल में उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपनी महफिल में उसके अफसाने बयां करना चाहते हैं, तो उसके लिखी थी, मुसलसल चलता रहेगा एक आदिम सफर।
3: वाह।
4: मुसलसल चलता रहेगा एक आदिम सफर, मुख्तलिफ रहेंगे हम तुमसे, मुख्तलिफ रहेंगे हम तुमसे, और एतबार करना, और एतबार करना, हमारी महफिल में तुम्हारे ही अफसाने बयां होंगे।
3: उर्दू इतनी गजब की है तुम्हारी, इतनी धाकड़ आपने बोला है, मतलब मजा आ गया, बेहतरीन। कोई हिंदी वाली भी सुना दे यार।
4: हाँ हाँ बहुत हैं।
3: हाँ तो कुछ बढ़िया से सुना दे। आज अजीम जो है अपनी डायरियों के पन्नों की आवाज आपको सुना रहे, तो छक पलट रहा है वो, और उसमें से कुछ बेहतरीन ताजा ताजा फ्रेश कॉन्टेंट आपको दे रहा है। हाँ अजीम,
4: एक शायरी है, अब मोहब्बत से कह रहे हैं कि दगा उसने की थी, तो उस पर लिखी थी, दगा उसने की थी तभी हम शायर हैं।
3: वाह।
4: मोहब्बत सच्ची हमने की थी तभी हम शायर हैं।
3: याद करो,
4: दगा करते हम भी तुम्हारी तरह तो क्या कह पाते, तभी हम शायर हैं। मोहब्बत तुम भी करो किसी से और वो करे किसी और से, बैठो तुम भी किसी महफिल में हमारी तरह और सुनाओ अपनी शायरी और कहो, दगा उसने की थी तभी हम शायर हैं, मोहब्बत सच्ची हमने की थी तभी हम शायर हैं।
3: क्या बात है यार, वेरी नाइस यार, वेरी नाइस। अच्छा असीम एक बात बताओ, ये जो शेर व शायरी है ये कहाँ से निकलती है? कुछ लोग कहते हैं गजलों से शायरी बनी है, कुछ लोग कहते हैं टूटे दिल से शायरी बनी है, तुम्हारा क्या मानना है?
4: शायरी अपने आप आती है।
3: अच्छा, गजलों से भी मैंने सुना है कुछ निकलती है
4: ये, जितने भी जैसा आपने उन्हें सुना होगा नुसरत फतेह अली खान को,
3: नुसरत साहब को, उनके गानों में
4: उनकी कुछ नहीं होता, मतलब जहां तक मुझे पता है, मैं माफी चाहता हूँ अगर कुछ बोल रहा हूँ गलत, तो वो भी एक पोएट से ही पोएट्री सारी लिखी जाती है, शायरी लिखी जाती है, वो भी उसे बस पढ़ते हैं,
3: अपने उनका तरीका अलग होता है एक्सप्रेस करने का,
4: वो भी पोएट की ही कुछ लिखा हुआ होता है जो वो पढ़ते हैं।
3: ओके ओके। अच्छा एक बात बताओ, जो नज्म होती है उसमें और शेर और शायरी में कितना डिफरेंस होता है?
4: बहुत कम होता है, ज्यादा नहीं कह सकते हैं, थोड़ा बहुत।
3: ओके ओके ओके। तुम्हें कोई नज्म याद है?
4: नहीं फिलहाल तो मेरे को।
3: ओके ओके ओके, मतलब अभी तुम सिर्फ शायरों शायरी और पोइट्रीज में तुम ज्यादा रहते हो एक्टिव। कोई पोइट्री जो आपके दिल के बहुत करीब हो?
4: हाँ है, ये उस पे है, जैसे कि मैंने लिखी थी, मुस्लिम हूँ फिर भी लोग पूछते हैं नशा शराब का करते हो क्या, मुस्लिम हूँ फिर भी लोग पूछते हैं नशा शराब का करते हो क्या, ना बीड़ी ना सिगरेट ना नशा शराब का है, ना बीड़ी ना सिगरेट ना नशा शराब का है, मुझे नशा है तो बस उसकी आंख का है, मुझे नशा है तो बस उसकी आंख का है, और वैसे भी उसकी आंखें किसी शराब से कम थोड़ी हैं, हमें शराब ही कहो मगर शराब का नहीं, उसकी आंख का कहो ना,
3: क्या बात है, क्या बात है अजीम, वेरी वेरी वंडरफुल यार। ऐसी अजीम की शेरो शायरी आप तक पहुंचती रहेंगी। एक काम करेंगे, एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, उसके बाद जल्दी से लौट कर आए। यार अजीम, बहुत अच्छी शेरो शायरी कर रहे हो, बहुत अच्छी पोइट्री कर रहे हो, लेकिन मेरे एक दिल की ख्वाहिश है उस पर कुछ सुना दो। तो जैसे आपको पता है ना, आजकल लोग बड़ी धोखेबाजी करते हैं, है ना, दिल लगी बहुत करते हैं, जिसे कहते हैं हम लोग। प्यार करते तो है, लेकिन बाद में पता चलता है वो प्यार नहीं था, वो सिर्फ एक टाइम पास था, है ना, अट्रैक्शन था। तो उसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? सामने वाले ने आपसे दिल से मोहब्बत कर ली है, लेकिन जब उसे पता चल रहा है कि नहीं, ये तो टाइम पास था, ये तो उसके साथ में एक शातिर वाला गेम हो गया है ना, एक शतरंज वाली चाल हो गई, तो उसपे आप क्या कहना चाहोगे?
4: है एक शायरी उस पर है कि जैसा आपको टाइपिंग करते भी होता है ना, चैट पे धोखा देता होता है एक तरीके से, उस पे मैंने शायरी लिखी थी। तू पूछ तो सही हुआ क्या, मैं बताता हूँ तुझे बेचैन हूँ मैं। तू पूछ तो सही हुआ क्या, मैं बताता हूँ तुझे बेचैन हूँ मैं। तू पूछ तो सही बेचैन क्यों हो, मैं बताता हूँ तुझे वजह तुम हो। तू पूछ तो सही मैं कैसे हूँ तुम्हारी बेचैनी की वजह, मैं बताता हूँ तुझे। तेरा बात ना करना खंजर से ज्यादा जख्म देता है मुझे, खंजर से ज्यादा जख्म देता है मुझे।
3: क्या बात है, वेरी नाइस है, बहुत ही बढ़िया। अजीम, तुम बहुत सारे ओपन माइक्स में जाते हो, बहुत सारे जो पोएट्री शोज होते हैं वहां जाते हो, तो कभी कोई ऐसा तुम्हारे साथ सीन हुआ है जो तुम्हारे दिल की बहुत अच्छी पोएट्री या शायरी रही और तुम वहां गए माइक पे तुम भूल गए हो, ऐसा हुआ है कभी?
4: नहीं ऐसा कभी हुआ नहीं, फर्स्ट टाइम एक बार हो चुका था।
3: हुआ था वैसे?
4: नोएडा शो में गया था।
3: अच्छा अच्छा, कहाँ कहाँ जाते हो वैसे वो ओपन माइक्स पे?
4: जहाँ जो बुला ले आप, खासकर ओपन माइक्स आपके पास आए हैं।
3: हाँ नहीं, मतलब तो आप मुरादाबाद में ओपन माइक्स में ढूंढते हो या आसपास के लोकेशंस में भी? बरेली वगैरह
4: हाँ, जा सकता हूँ मैं।
3: अच्छा हाँ। मतलब जहाँ इंटरेस्ट होता है हाँ, वहाँ आदमी पहुंचे जाता है,
4: पहुंची जाता है।
3: मेन बात तो ये है। तो फैमिली वगैरह का क्या सपोर्ट रहता है, उनको पता है कि तुम्हारा ये अंदर से एक वाइब है, तुम्हें ये करना है, तुम्हारा पैशन है?
4: हाँ पता है उन्हें। फर्स्ट शो में तो मैंने भाई से ही पैसे लिए थे जाने के खर्चे के लिए, बट इतना वो नहीं है कि उन्हें लगता है कि पैसा ही आए तभी ज्यादा बेटर है, क्योंकि तो वो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करा रहे हैं, मुझे 3 साल से कर रहा हूँ मैं भी, बट मुझे बीएससी भी करनी थी साथ साथ, क्योंकि उसमें बैक आती, उस चीज से लिख कर रहा हूँ बस, ये भी एक पैशन है कर रहा हूँ।
3: वेरी नाइस। तो अच्छा, इसमें फ्यूचर बनाने का प्लान कर रहे हो आगे?
4: हाँ सोच तो रहा हूँ कि इसमें निकल जाऊँ तो ज्यादा।
3: क्या स्कोप है वैसे यार?
4: हाँ
3: क्या स्कोप है इसमें, फ्यूचर क्या रहता है
4: इसमें? एक तरीके से देखा जाए तो आदमी कामयाब मरने के बाद ही है, क्योंकि शायर की शायरी मरने के बाद ज्यादा फेमस होती है।
3: क्या बात है, बहुत बढ़िया यार। लेकिन ये चीज हम चाहेंगे कि तुम जो कामयाबी है ना वो ऐसी हासिल करो जैसे अखिल भैया ने एंट्री मार के करी है अभी, इसीलिए तो उनको हवा हवाई कहते हैं हम। वे आगे बढ़ेंगे, वो बीच में कभी भी आ जाते हैं, और जब जो बिन बुलाए नहीं आते हैं, जिनको रिस्पेक्ट के इज्जत के साथ बुलाए जाते हैं वो हवा हवाई होते हैं। और अभी आए हैं तो एक दो शायरी इनसे भी सुनेंगे, मगर इनको थोड़ा वक्त देंगे, अभी लैपटॉप निकालेंगे और अपने दिल के जज्बात उस पर सर्च करेंगे, फिर आपके सामने उनको पेश करेंगे। लेकिन हेलो भाई तो सुन लेते हैं। हाय अखिल भाई, हाउ आर यू?
5: आई एम गुड, कैसे हो आनंद?
3: बिल्कुल बढ़िया। आपने जो ये धक्का मार के गेट खोला है ना, इसकी बेइज्जती हुई आज, एक बार नोक नोक तो कर ही लेते यार।
5: आजकल ना बिना धक्का मारे कोई काम नहीं होते, ये सच्चाई है।
3: जो कपिल शर्मा बोलते हैं ना, 3 बार ताली ठोके, वही वाला मैंने इनके लिए कर दिया है। खैर अखिल भाई, ये अजीम जी हैं और ये अमरोहा से बिलोंग करते हैं, और इनके आसपास में कोई एरिया पड़ता है जहाँ से ये है पर्टिकुलर?
5: जोया।
3: हाँ जोया के आसपास में ही है शायद, एक और इसके आगे भी कुछ है इनका एरिया, और ये बहुत अच्छा पोएट्री वगैरह करते हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया बढ़िया लिखते हैं और बहुत अच्छा सुनाते भी हैं।
5: कब से आपको पोएट्री का शौक है?
4: ये तो मैं बहुत टाइम से लिख रहा हूँ,
3: मैं वही इससे पूछ रहा था
4: अभी। हाँ पर्टिकुलर टाइम से लिखना चलो, बहुत टाइम से लिखना चालू करता, पढ़ता था चीजों को, देखता था, अपने आप आती थी, बट लिखना जो स्टार्ट करा वो लाइब्रेरी जाने वक्त से लिख रहा, मतलब लगभग 3 साल हो गए लिखना तब से स्टार्ट करा, जब दोस्तों को सुनाई चीजें, उन्होंने अच्छा कहा कि हाँ सही लिख रहा है तू जा, तो मुझे लगा कि जाना चाहिए, लिखना चाहिए, और तो मैंने और अच्छी चीजें लिखी, टाइम दिया इसे भी थोड़ा, तो मुझे पसंद आया।
3: अच्छा आप अखिल भाई के सामने क्या सुनाना चाहोगे, कोई बढ़िया सी अपने दिल की, जो तुम्हारे दिल के बहुत करीब हो, कोई शायरी या पोएट्री?
4: हाँ है ना, किसी की तस्वीर होती है ना कि उसकी तस्वीर, तो उस पे शायरी लिखी थी, कुछ बीते लम्हे कुछ बीते बातें याद करता हूँ, कुछ बीते लम्हे कुछ बीती बातें याद करता हूँ, तुमने तो कर ली किसी और से शादी, तुमने तो कर ली किसी और से शादी, पर मैं आज भी तेरी तस्वीर तकता हूँ और घुट घुट के मरता हूँ, और हाँ कहने को तो तेरी तस्वीर फोन में है, और हाँ कहने को तो तेरी तस्वीर फोन में है, मैं उसे आज भी अपने दिल में रखता हूँ।
3: वेरी नाइस है अखिल भाई, क्या कहना चाहोगे आप ये बताइए?
5: मैं अपने पर्स में एक तस्वीर ढूंढ रहा था।
3: हाँ वो तस्वीर मेरे पर्स में गलती से आ गई, मैं आपको बाद में वापस कर दूंगा, आप चिंता ना करें। तो अभी अखिल भाई आप भी कुछ सुनाओगे ऐसी अच्छी सी चटपटी शायरी?
5: क्या क्या चाहते हो आप, मेरे से कुछ सुनना चाहते हो?
3: हाँ हाँ बस ऐसा सुनना चाहते हैं जिसमें थोड़ी सी हंसी आ जाए आपसे, मुझे यही एक्सपेक्ट है। मतलब अच्छी बात है, एक माहौल बना हुआ है, मतलब पूरा शायराना माहौल बन रहा है और अजीम बहुत अच्छी अच्छी शेर व शायरी करता है, इतना बढ़िया लिखता है, इसकी राइटिंग देखो, मुझे लगता है इसे तो बॉलीवुड में चले जाना चाहिए। हमारे गौरव से नहीं बोला अभी इसको ये बात?
5: नहीं नहीं, बॉलीवुड में जाएंगे, जरूर जाएंगे, और मुरादाबाद का नाम भी जो है हमारा एक बार फिर से बॉलीवुड में फिर चमकेगा। और कमाल की बात यह है कि आप जहाँ से, ये अमरोहा से हैं तो कमल अमरोही,
3: अरे हाँ, क्या बात है,
5: तो उनके उन्होंने वहाँ पे एक स्टूडियो बनाया था, तो बहुत ही, आज भी अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो एकदम आपको पता चल जाएगा।
3: तो ऐसे बहुत सारे जाने माने नाम हैं जो अब इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, और हम मुरादाबाद की इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो बात अलग है और हमें ये इंडस्ट्री बहुत प्यारी है, क्योंकि मुझे लगी अपने शहर में भी बहुत कुछ किया जा सकता है,
5: क्यों नहीं, क्यों नहीं,
3: क्यों नहीं ऐसा हो कि मुंबई की सेलिब्रिटीज को मुरादाबाद में इंटरव्यू क्यों बुलाया जाए,
5: क्यों नहीं, आपने तो बुलाया भी है, आपने तो इंस्टाग्राम पे करा भी है,
3: ये पॉसिबल हो सकता है अगर आपके इरादे मजबूत हो तो, क्यों,
5: बिल्कुल सही।
3: खैर, हमारा जो सेशन है वो इरादों और पॉजिटिविटी से भरा नहीं, आज दिल की शेर व शायरी से भरा हुआ है, तो कुछ कहना चाहोगे?
4: हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी मैंने आपकी कंडीशन सुनी तो उसमें आप कह रहे थे कुछ फनी सा हो जाए, तो उस पे सुना दूं?
3: अरे बिल्कुल यार, बस इतना फनी हो कि हम लोगों को हंसी आए, बाहर वालों को ना आए। खैर,
4: उस पे तो रखा था मैंने भी फूल अपनी किताब में तुम्हारे नाम का, पहना था लॉकेट अपने गले में तुम्हारे नाम का, रखा था फूल मैंने भी अपनी किताब में तुम्हारे नाम का, पहना था लॉकेट अपने गले में तुम्हारे नाम का, तुम एक बार हाँ तो करो, तुम एक बार हाँ तो करो, अपनी महफिल में पौवा बंटवा दूंगा मैं तुम्हारे नाम का।
3: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। मैं फिलहाल पानी बंटवाना चाहता हूँ, गर्मियां बहुत ज्यादा हैं, तो आप पानी की तरफ ज्यादा ध्यान दें। आगे बढ़ते हैं और एक गाना सुनते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक यू वंस अगेन अखिल जी।

0: हेलो जी, कैसे हाल चाल है? आप सुन रहे हैं फिल्म मुरादाबाद 89.6। आपके पास तैयार कर लिया है कुछ सुनाने का, तो इनके पिटारे को ध्यान में रखते हुए माइक में इनकी ओर जो है लगाना
1: चाहूंगा। मैं अपने सभी श्रोताओं को ये कहना चाहूंगा और बताना भी चाहूंगा,
0: श्रोता मेरे भी हैं,
1: कि जो भी मेरी आवाज निकल रही है ना, दिल से जो भी शायरी निकल रही है
0: जी,
1: वो सब आनंद की दिल की भी है। जो आनंद अपने से कहना चाह रहा था, कह नहीं पा रहा
0: कि मैंने लिख के इनको फॉरवर्ड कर दिया कि भैया ये मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलिए, जूते पड़ेंगे तो सर आपका होगा, मेरा नहीं। मेन बात ये है,
1: अब आनंद जी भी जो है हर सीजन वेट करते हैं कि कब मेरा सीजन जो है होगा पूरा।
0: मतलब कहना क्या चाहते हो, सीजन का तो कोई मतलब ही नहीं है भाई, इट्स नॉट कपिल शर्मा शो, वो सीजन 5 सीजन 2 नहीं चल रहा है ये। हाँ, फिलहाल यहाँ पर शेरों
1: तुम्हारी मुस्कान का असर कुछ ऐसा होता है,
0: वाह,
1: दिल का हर कोना रोशन सा होता है,
0: गजब।
1: यू तो जी लेते हैं हम हर दिन अकेले, पर तुम्हारा साथ जिंदगी से भी प्यारा होता है।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। ये
1: इंस्टेंट शायरी कहते हैं ना इसे,
0: इंस्टेंट शायरी ये होता है, सेंस ऑफ ह्यूमर। ऐसे सेंस ऑफ ह्यूमर में 5 किलो आलू ना बांट दूं फ्री में गली के मोहल्ले में।
1: 5 किलो तुम 5 गिलास नहीं पिला पा रहे हो पानी लोगों को।
0: क्या बात कर रहे हो, मैं 5 बॉटल पानी पिला चुका हूँ। 5 गेस्ट आए थे सुबह से मेरे ऑफिस में, कोई था नहीं आज।
1: बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो गर्मी में आनंद, बहुत अच्छा,
0: थैंक यू सो मच। बस आपको नहीं पिलाया, अभी थोड़ी देर बाद आपको भी सर्विस देंगे पानी की, आप चिंता ना करें। वेल, आगे बढ़ते हैं गाइस, ये बहुत अच्छी बात है, पानी लाते रहिए और पानी पीते रहिए। क्यों अखिल भैया, अब ये माइक जो है उस लड़की की तरफ भी करते हैं जो एक बड़ी देर से हमारी तरफ बैठी है और हम लोगों को घूर रही है। हमारे बीच में प्राची भी है, आज की जो शाम है महफिलों से सजी हुई है। प्राची, क्या करते हो तुम, अपने बारे बताओ।
2: मैं पोइट्री करती हूँ कभी कभी, और मैं एक पोइट्री है, एक शायरी है जो मैं आपको सुनाऊंगी। लगता है मुझे कि नहीं बस जिंदगी पे हमारा, लगता है मुझे कि नहीं बस जिंदगी पे हमारा, इसमें दस्तकें तो खुदा की भी होती हैं, इसमें दस्तकें तो खुदा की भी होती हैं, ऐसा कहता है अनुभव हमारा। वैसे तो नहीं देखी हमने दुनिया सारी, वैसे तो नहीं देखी हमने दुनिया सारी, पर फिर भी उसे सवाल हमारा, क्यों किसी की एक ही खूबी काफी है दिल में समा जाने के लिए, क्यों किसी की एक ही खूबी काफी है दिल में समा जाने के लिए, और किसी की 1000 खूबी भी दिखे वो फिर भी नहीं हमारा।
0: क्या बात है, वेरी नाइस प्राची, मजा आ गया तुम्हारी शायरी सुन के। और तुमने इसमें एक बात बोली थी, वैसे तो नहीं देखी हमने दुनिया सारी, वैसे तो नहीं,
2: खुद से सवाल हमारा,
0: क्या बात है। और
2: मतलब वी माइट बी रॉन्ग,
0: हाँ,
2: पर स्टिल मतलब एक हम कह रहे हैं कि हो सकता है हम गलत हो, पर अभी तक जितने एक्सपीरियंस है बेस्ड ऑन दैट कि खुद से एक सवाल हमारा, क्यों किसी की एक ही खूबी काफी है दिल में समा जाने के लिए, और किसी की 1000 खूबी भी दिखी वो फिर भी नहीं हमारा।
0: नहीं, वो क्या लाइन बोली थी, दुनिया देखी हमारी, स्टार्टिंग में कुछ बोला था
2: नहीं
0: ना?
2: एक बार मैं दोबारा से कहना चाहूंगी,
0: हाँ हाँ।
2: लगता है मुझे कि नहीं बस जिंदगी पे हमारा, इसमें दस्तकें तो खुदा की भी होती हैं, इसमें दस्तकें तो खुदा की भी होती हैं, ऐसा कहता है अनुभव हमारा। वैसे तो नहीं देखी हमने दुनिया सारी, वैसे तो नहीं देखी हमने दुनिया सारी, पर फिर भी खुद से एक सवाल हमारा, क्यों किसी की एक ही खूबी काफी है दिल में समा जाने के लिए, और किसी की 1000 खूबी भी दिखे वो फिर भी नहीं हमारा।
0: क्या बात है, क्या बात है, वेरी नाइस। और राजमा चावल है हम सभी का प्यारा, बहुत ही बढ़िया, इसे भी बहुत अच्छा बोला
1: आपने, पूरी शायरी को गुड़ गुमर कर डाला।
0: ये नहीं था यार मेरा फेवरेट।

0: तो मैंने बोल दिया, लेकिन प्राची टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत अच्छा बोला, और ये जो इन्होंने बीच में शब्दों का इस्तेमाल किया गुड़ और साथ में जो मिक्स किया है वो पता नहीं इनको क्यों पसंद आया, आई डोंट नो। खैर आगे बढ़ते हैं। अजीम भाई तुम्हें कैसा लगा इस माहौल में आके, मजा आया? अब यार जाने का समय हो गया है और कुछ खाने पीने का भी समय हो रहा है गाइज, क्योंकि रात हो रही है तो डिनर भी करना है समय से। अखिल भाई तो बैठे रहेंगे आपके साथ, अभी आपकी फरमाइशी गाने भी बजाएंगे।
1: नहीं नहीं मेरा आनंद, तुम्हारे दिल से एक और आवाज निकलने वाली।
0: हाँ हाँ प्लीज, मैं अपने दिल को थोड़ा सा ऑफ कर देता हूँ, आप अपने दिल का बटन ऑन कीजिए। बोलिए सर।
1: इश्क वो नहीं जो दुनिया को दिखाया जाए।
0: वाह जी वाह।
1: इश्क वो है जो दिल से निभाया जाए।
0: वेरी नाइस।
1: अपना कहने को तो बहुत मिल जाते हैं।
0: हाँ।
1: अपना कहने को तो बहुत मिल जाते हैं, पर अपना वो है जो हर हाल में साथ निभाए।
0: क्या बात है, हम साथ निभाना साथियां निभाएंगे सर, टेंशन मतलब आज रात को 9 बजे मैं टीवी पे देखूंगा हम साथ निभाए। हम साथ साथ ही देखिए आपने।
1: हाँ देखिए।
0: हाँ तो बस वही है, हम साथ ही है यार।
1: तो एक आनंद एक बात भी पूछना चाह रहा था मैं।
0: जी,
1: मैं ये पूछना चाह रहा था कि असल में एक शायर को कब लगता है कि वो शायर बन गया है?
0: इससे जोक से बात, अखिल भाई आपने जो बोला ना एक शायर को कब लगता है
1: शायर,
0: एक शायर बन गया है, मुझे
1: तो ये बात हम पूछना चाहेंगे
0: अजीम
1: साहब से पूछेंगे। वैसे
0: आपको आपको क्या लगता है, मैं ये आपका जो सवाल है वो आपके ऊपर ही मैं रिपीट मारता हूँ, आप बताओ मुझे।
1: मेरे हिसाब से पहले अजीम साहब से बात करते हैं, फिर मैं भी अपना विचार रखूंगा, अपना विचार रख दूंगा तो फिर
0: आइडिया मिल जाएगा ना मोहम्मद अजीम जब बोले। अजीम क्या लगता है भाई?
2: मुझे लगता है वो जब लिखना चालू कर दे, अपनी कलम उठा ले
0: और जो दिल से उसकी फीलिंग आए, जो दिल से
2: लगे कि चार आदमी को सुनाने के बाद लग रहा है कि हाँ वो अच्छी तारीफ कर रहे हैं।
0: हाँ हाँ।
2: तो वो शायर बन चुका है।
0: क्या बात,
2: बस उसे अपने आप।
0: और मुझे ऐसा लगता है अखिल भाई कि जब आपकी इमोशन आपकी बातों में आने लग जाए, आपकी कलम में वो एक्चुअल में फीलिंग आने लगे, जो सामने वाले को रिलेटेबल फील करा दे, तो फिर आप शायर बन गए। क्योंकि आपकी शायरी से किसी को अगर ऐसा फील हो रहा है कि नहीं यार ये तो मेरे लिए बात बोली जा रही है, मतलब ये मेरा जिक्र हो रहा है, तो आप शायर बन गए। प्राची कुछ कहना चाह रही है, ये भी शायर बनेगी आज, मुझे पक्का यकीन है। हाँ प्राची।
3: नहीं जैसे अभी आपने पूछा कि कब एक शायर को लगता है कि वो शायर बन गया है, तो मुझे लगता है कि जब हम किसी से, मुझे तो अपने साथ ऐसे ही लगा था।
0: हाँ।
3: पता नहीं मैं शायर हूँ या नहीं।
0: नहीं तू नहीं है, बोलती रहे आगे।
3: ठीक है, जब हम मतलब जो भी हमने ऑब्जर्व किया है उसको हम देख, उसको हम फ्रेम कर पा रहे हैं, मतलब जो भी हमने देखा है, हाँ उसको फ्रेम कर पा रहे
1: हैं,
3: उसको मतलब लिख पा रहे हैं, तो तब हमें लग जाता है कि हाँ कुछ हमने अच्छा लिखा है।
0: क्या बात है, मैं भी आज से लिखना शुरू करूंगा, शायद सबको लग जाए मैं अच्छा आरजी हूँ। माइक भैया की तरफ करो, आप जरा भैया से पूछते हैं। हाँ जी भैया, आपका सवाल मुबारक हो आपको, आप बताओ आप।
1: मेरा जो थॉट है वो यही है कि जब आपके जो जहन में चल रहा है, जो आपके
0: जी
1: जो सपनों में चल रहा है, एक्चुअली क्या है शायरी में वो चीज़ें जो आप ना रियलाइज करते हैं, मतलब आपके पास होती नहीं है मगर आप उसे एक इमेजिन करते हैं।
0: एब्सोल्युटली।
1: तो जब वो इमेजिनेशन आपके साथ आपकी कलम पे उतरना चालू हो जाए और वो उस तरीके से उतरे कि सामने वाले को भी लगे कि हाँ ये तो मैंने भी इमेजिनेशन किया था, या ये ऐसा कुछ है कि इन्होंने, हाँ जो मेरे साथ भी हुआ है, या फिर कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो आप सिर्फ सोच सकते हैं, ठीक है ख्यालों में आती है आपकी, मगर वो चीज़ें आपको भी पता है वो पूरी नहीं होती। तो जब आपके हाथ में कलम है और आपने उन ख्यालों को अपने साथ उसमें लिखा है और जब दूसरों तक वो बात पहुँचाई है, तब जाके लगता है कहीं ना कहीं शायर ये बंदा
0: शायर है। इसीलिए तो कहते हैं बच्चा है तू मेरा, समझ रहा हूँ मैं। वो डायलॉग मेरे को अखिल भाई ने दिया था, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया अखिल भाई, बहुत अच्छी बात है, और मुझे इस बात से यकीन हो गया कि शादी के बाद हर कोई शायर बन जाता है। मैं इस बात को मान सकता हूँ अजीम, एक घर वाला शायर जो होता है, जैसे अखिल भाई एक घर के अच्छे शायर हैं, वो कुछ ना कुछ छोड़ते रहते हैं हमेशा जब हमारे स्टेशन में आते हैं। तो आप बताओ, आपने तो मतलब एक्सप्लेन कर दिया है, अब जाने का समय भी हो रहा है, तो जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को, हमारे दोस्तों को, कोई अच्छी अपनी शायरी के माध्यम से कोई थॉट, कोई बात एक्सप्लेन करना चाह रहे हो आप?
2: मेरे पास फिलहाल तो कोई ऐसी शायरी है नहीं, बट नेक्स्ट टाइम
0: आऊंगा। अपने दिल की फीलिंग्स कुछ अगर एक्सप्रेस करना चाह रहे हो, कोई थॉट कहना चाह रहे हो?
2: बहरहाल मुझे सच बस बताऊं तो मुझे अच्छा बहुत लगा यहाँ।
0: अच्छा, मजा आया।
2: आनंद भाई से मिला, टीम से मिला, बहुत अच्छा लगा, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। मैं चाहूंगा कि मेरी शायरी आप लोगों को इतनी पसंद आए कि आप मुझे बार बार बुलाएं, रिक्वेस्ट करें आनंद भाई के कमेंट बॉक्स में बार बार मुझे बुलाएं।
1: श्रोताओं की इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कहाँ पे आप मिल सकते हैं आसानी से?
0: ये इंस्टाग्राम पे इसका अकाउंट है, मैं इनका एक अच्छा सा फोटो शेयर करता हूँ, बढ़िया सा अच्छे से करली वालों वाला, तो इनको लोग तुरंत लाइक करेंगे और फॉलो भी करेंगे। वेल अब लेंगे आपसे जाने की इजाजत, जाते जाते बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर आपके पास भी कोई अच्छा टैलेंट है तो उसे आप FM मुरादाबाद पे डेफिनेटली लेकर आ सकते हैं, और हम आपका वेलकम करने के लिए तैयार हैं। और आप ऐसे ही सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, गाइस बजाते रहिए
1: और गुनगुनाते
0: रहिए। बाय बाय।
4: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
5: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
4: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
6: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
7: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय, न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
8: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
9: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइन्स नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
10: कॉल 8826213131।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर, गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंचा और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमण में 9,270 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री इस समय एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं।
2: मैं देशवासियों को आर्थिक क्षेत्र की इस नई ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं देश को फिर आश्वस्त करता हूं कि देश दुनिया भर में चल रहे इन संकटों का सामना करते हुए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रास्ते पर ऐसे ही दृढ़ संकल्प के साथ तेज गति से आगे बढ़ता ही रहेगा, ये मेरी देशवासियों को गारंटी है। साथियों, आज हमारे लिए

0: विकास का मॉडल सस्टेनेबल हो।
1: गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
0: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है, इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात में है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। ये भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं।
0: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है, उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने सदैव अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकार कर विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने लोगों से विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए एकजुट होकर काम करने की अपील की। सूरत के

0: भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मोरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
1: हमने तय किया है कि बीएसएफ जहां जहां है, एसएसबी जहां जहां है, वहां पर स्मार्ट बॉर्डर का निर्माण करना और एक चतुष्कोणीय सुरक्षा रणनीति के तहत स्थानीय प्रशासन को साथ में लेते हुए, टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए सीमाओं को एकदम अभेद बनाना। और इस स्मार्ट बॉर्डर का कंसेप्ट फाइनलाइजेशन के स्टेज पर है। इसका पायलट प्रोजेक्ट आने वाले साल में हम निश्चित रूप से इंट्रोड्यूस कर देंगे। एक साथ देश की अलग अलग सीमाओं पर 7 या 8 जगह पे पायलट प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे।
0: गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बाड़ लगाने का काम प्राथमिकता पर किया जा रहा है। इसी कड़ी में त्रिपुरा में 119 किलोमीटर लंबी सीमा पर नई डिजाइन की बाड़ लगाने को मंजूरी दी गई है। इसका पहला चरण शुरू हो चुका है। कार्यक्रम में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक प्रवीण कुमार तथा कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार रहेगी। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
2: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में 3.2% की वृद्धि दर देखी गई है, जो मुख्य रूप से कृषि और मत्स्य पालन क्षेत्रों के प्रदर्शन से प्रेरित है। वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 87,77,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद सरकार ने आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती, सुधारों की सफलता और 140 करोड़ भारतीयों के अथक परिश्रम को दर्शाती है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार लोगों के जीवन को सुगम बनाने, व्यापार में सुगमता और युवाओं के लिए अवसरों को बढ़ाने के हर संभव प्रयास करेगी। मई माह में भारत की यात्री वाहन बाजार में लगभग 4,40,000 वाहनों की बिक्री हुई है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में ऑटोमोबाइल सेक्टर के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये वृद्धि मजबूत उपभोक्ता मांग को दर्शाती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। श्री पुरी ने कहा कि प्राकृतिक गैस का भंडार 355 मीटर की गहराई पर मिला है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के मालवीय नगर में हुई आग की घटना में 13 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि मृतकों में एक व्यक्ति मोजाम्बिक, 4 नाइजीरिया, 1 लाइबेरिया, 3 किर्गिस्तान, 1 उज्बेकिस्तान, 1 बांग्लादेश, 1 कांगो और 1 इराक का नागरिक था। भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच हुई बातचीत सकारात्मक रही।
3: The negotiating team which came from
4: बातचीत करने वाली टीम यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के कार्यालय से आई थी। इसमें अमेरिकी पक्ष के मुख्य वार्ताकार भी शामिल थे। ये बातचीत इस महीने की 1 और 4

0: तारीख के बीच हुई। ये चर्चा सकारात्मक और रचनात्मक रही है और दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
1: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है।
2: With Nepal, we have an expansive agenda.
0: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
2: Partnership that we have with Nepal.
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। भारत वर्तमान में अपनी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र विकसित कर रहा है। इसमें रूस से प्राप्त S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुग्यानो 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुग्यानो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपूर्ति ने 4 गोल किए, शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से हार गई थी। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर में गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंच गया है। तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। विभाग के अनुसार अरब सागर कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के अधिकतर हिस्सों के साथ साथ गोवा, तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंचने की संभावना है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन के दौरान बंगाल की खाड़ी के कई क्षेत्रों के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। कहा, भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi launches multiple development projects in Gujarat and Daman. Prime Minister emphasizes on self-reliance in energy sector, says India actively leading towards green future by balancing economic growth and ecological preservation. Country's GDP growth rate estimated at 7.7% in 2025-26, following strong momentum by the economy. Home Minister Amit Shah says smart border project in its final execution stage, pilot rollout to be introduced next year at sensitive border locations. Southwest monsoon advances further into more parts of Arabian Sea, Goa and Karnataka. And in hockey, India enter final of men's under-18 Asia Cup, beating Pakistan 5-3 in semi-final at Kakamigahara in Japan. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has emphasized self-reliance in the energy sector, stating that the world is moving towards a green future and India is actively leading the way by balancing economic growth with ecological preservation. Addressing a large gathering after launching various infrastructure projects worth over 18,000 crore rupees in Surat today, the Prime Minister pointed out that out of India's total renewable energy capacity of 250 gigawatts, Gujarat alone contributes 50 gigawatts, accounting for a crucial one-fifth of the nation's green energy share. He said the current global energy crisis highlights the critical importance of self-reliance in energy. He said the world is gradually progressing towards a greener future and India is actively contributing to this transition.
5: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
4: Speaking on the transformation of Surat, the Prime Minister praised the city's spirit and its transition into a green city.
5: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी, साथ ही यहां सूरत मेट्रो का भी विस्तार हो रहा है। ये सारे कदम हरित शहर के रूप में सूरत की पहचान को और सशक्त करेंगे।
4: After reaching Surat this afternoon, the Prime Minister first visited Hazira and reviewed the ongoing industrial and infrastructure operations. Later in the evening, Mr. Modi launched various projects worth around 2,970 crore rupees in Daman. These projects include major healthcare and aviation infrastructure.
5: आज भी यहाँ कनेक्टिविटी, हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर।
6: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060022430।
7: टायर लो सोना जीतो।
8: क्या?
7: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए, विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
6: अपोजिट
7: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
6: ऑफर वैलिड टिल 10th June, TNC अप्लाई।
9: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 89.6 मेगाहर्ट्ज और मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अखिल, और साथ में है मेरे रीना।
1: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आरजे रीना के साथ। और मजबूरी का नाम महात्मा गांधी।
0: कोई बात नहीं, महात्मा गांधी ने ही जो है आंदोलन करके जिताया था सबको। आज का शो जो है समर्पित है उन लोगों को जो कभी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा थे और आज भी हैं साथ, और कुछ सिर्फ यादों में हैं। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता जो खून से नहीं दिल से बनता है।
1: ये तो सही कहा आपने, दिल से नहीं खून से बनता है। वो खून से कैसे बनता है वो तो पता नहीं, मेरे अंदर तो ब्लू कलर का खून है।
0: याद है वो स्कूल या कॉलेज का पहला दोस्त रीना तुम्हें अपना,
1: कौन सा?
0: जिसके साथ कभी तुमने नोट्स भी शेयर किए,
1: मैंने तो धुलाई
0: लंच
1: करी
0: भी
1: है।
0: किया। तुम धुलाई मास्टर रही हो।
1: मैं 8th क्लास तक, मेरे जो स्कूल के बच्चे थे ना, मतलब मैं 8th क्लास तक गर्ल्स और बॉयज में मतलब था, बाकी तो मैं गर्ल्स में स्कूल में पढ़ी हूँ। मेरे क्लास में जितने भी लड़के थे वो मुझसे डरते थे।
0: क्यों?
1: मतलब जिस रास्ते से मैं आ रही हूँ ना, उस रास्ते पे दिखते नहीं थे वो।
0: ऐसा क्यों? ऐसा क्या
1: अभी
0: करा तुमने?
1: अभी भी मेरे गांव, मतलब मेरे गांव के बच्चे हैं, अभी जाती हूँ ना तो बोलते हैं भाई साहब रीना क्या खुराफात लड़की थी भाई, हिम्मत नहीं, अभी भी नहीं होती हिम्मत उनके बोलने की मुझसे।
0: चलो,
1: इतना रुतबा बना कर रखा मैंने चाहिए अपना,
0: रुतबा नहीं, तुमने तो डर बना रखा है।
1: डर। अरे एक बात बताओ, आपने स्कूल के बाद छेड़ी है ना, तो मैं
0: मैंने
1: बता रही
0: कॉलेज
1: हूँ।
0: की बात छेड़ी है, मगर तुम स्कूल से शुरुआत कर सकती हो।
1: हाँ, स्कूल कॉलेज तो मेरे गर्ल्स वाले, मैंने बोला था गर्ल्स था 9th क्लास से, फिर तो गर्ल्स गर्ल्स ही रहा है कॉलेज भी, लेकिन जो 8th तक मैंने पढ़ाई करी है वो गर्ल्स एंड बॉयज सभी के साथ। बट ये हुआ था मुझसे, मतलब मेरे को गुस्सा पहले बहुत जल्दी आ जाता था, अभी मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रखा है, तो कुछ गलत चीज़ें मुझे अभी भी सहन नहीं होती, पहले भी नहीं होती थी। तो उस पर मैं भैया मैं हूँ।
0: चलिए, मगर कोई नहीं, कुछ दोस्तों के लिए लिखा है मैंने। कुछ दोस्त सीधे दिल में उतर जाते हैं, वक्त बदल जाए मगर वो नहीं बदलते। जिंदगी की भीड़ में चाहे सब छूट जाए, कुछ यार हमेशा यादों में चलते रहते हैं।
1: क्या बात है,
0: तो
1: बहुत अच्छी।
0: आगे आगे करेंगे हम कुछ कॉलेज वाले प्यार की बातें, उससे पहले लेते हैं छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।
1: क्या बात है।
2: मोहब्बत का इजहार कभी खुलकर न कर सका, मगर मेरी आंखें हमेशा मेरे दिल की हालत बताती रही। और तू है कि मुझसे बेखबर आज भी है, मेरे दिल की हर धड़कन

0: कुमार।
1: हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है आरजे रीना के साथ। एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहिए। और समय की बात करो तो देखिए 9:25 हो चुके हैं श्रोताओ, और अब हम बात करने वाले हैं दोस्ती की बात। दोस्ती के ऊपर टॉपिक है हमारा आज का मेन मोटिव।
0: तो जब दोस्ती के ऊपर बात चली है ना, तो कॉलेज की गलियों तक तो जाना बनता है।
1: क्या बात है,
0: वो पहली बार किसी को देखना, कैंटीन में उसकी सीट को देखना, क्लास में उसका इंतजार करना, और फिर दिल का कहना बस यही है।
1: और जिसका गर्ल्स कॉलेज हो वो क्या करे,
0: वो क्या करे, वो भी
1: पहले
0: बहुत
1: तो
0: कुछ।
1: लड़कियों को निहारती है कौन, कैसी है कौन, मुझसे सुंदर तो नहीं है कोई, मुझसे अच्छी ड्रेस तो नहीं पहन के आ रही है ना, कॉम्पिटिशन।
0: गर्ल्स कॉलेज में तो अक्सर जो है मोस्टली किताबों की बातें होती रहती होंगी, है रीना?
1: किताबों की कम, चेहरे की, ड्रेसेस की ज्यादा होती है, और ऊपर से पढ़ाई की कंपटीशन। देखिए लड़कियां हैं और लड़कियों में ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो पढ़े ना। भैया कुछ भी करे, बुक लेके बैठी रहती है, अगली सोचती भाई पक्का पढ़ रही है, अच्छे नंबर लाने वाली है,
0: मगर
1: पढ़ ले।
0: मगर ख्यालों में कुछ और चल रहा है, ऐसा भी
1: हो भी सकता है, मे भी हो सकता है, ऐसा कुछ कह नहीं सकते। जरूरी नहीं कि गर्ल्स कॉलेज हो उसमें प्यार नहीं हो आपसे, प्यार तो होता ही है। जरूरी नहीं कि कॉलेज में गर्ल्स नहीं है, बॉयज नहीं है तो उसके लाइफ में ही नहीं है, मतलब लाइफ में भी होता है। और तो वहाँ भी चैटिंग चलती रहती है, लेकिन वो पता नहीं चलती, वो अलग बात है, बुक के बीच में रखा जाता है फोन।
0: गर्ल्स सीक्रेट, कॉलेज वाला प्यार अक्सर अधूरा रह जाता है, लेकिन उसकी यादें पूरी जिंदगी भर साथ रहती
1: है। ऐसा नहीं कह सकते आप कि अधूरी रह जाती है, बहुतों की रियलिटी भी बन जाती है, बहुतों की मतलब 10 मतलब 100% में से आप 95 बोल सकते हैं कि नहीं हो पाती है सक्सेस, लेकिन 5% तो हो जाती है ना। बहुत से अगर मैं हंस रोता हूँ, आप मैसेज करके बताओ, अगर आपके कॉलेज वाला आपका प्यार आपके साथ है या दोस्त आपके साथ है, तो जरूरी नहीं, बहुत से अलग भी हो जाते हैं, बहुत से साथ में रहते हैं।
0: चलिए मैं थोड़ा सा कुछ कहना चाहूँगा इसके ऊपर। कॉलेज की वो सीढ़ियाँ आज भी याद आती हैं, जहाँ तेरी एक झलक के लिए घंटों बैठ जाते थे। मंजिलें चाहें मिले नहीं हमें, मंजिलें चाहें मिली नहीं हमें, पर तेरे साथ बिताए लम्हे आज भी मुस्कुराते हैं।
1: क्या बात है।
0: कई लोगों की शादी कॉलेज लव से हुई, और कई लोगों की कहानी अटेंडेंस शीट की तरह अधूरी रह गई।
1: क्या बात है।
0: लेकिन प्यार सफल हो या ना हो, वो इंसान आपको कुछ सिखा जरूर जाता है। कभी हंसना, कभी इंतजार करना, और कभी खुद को समझना।
1: क्या बात है, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने कि जिंदगी में आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। कभी ये मत सोचे कि हमें सीखने को कुछ नहीं मिलता, सीखने के लिए बहुत कुछ चीजें, बस आप सीखना चाहिए।
0: चलिए
1: एक म्यूजिकल ब्रेक, और उसके बाद आपसे यही कहना चाहूंगी कि आपके दिल में भी है कोई कॉलेज वाली बातें तो हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं। नंबर है 9837896896। और अगला गाना भी बहुत प्यारा है, यानी कि पहला नशा पहला खुमा, नशा करते हैं गाइज, चलिए।

0: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
1: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
2: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
3: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
2: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।
4: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
5: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
4: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
5: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
6: कॉल 7500153841।
7: टायर लो सोना जीतो।
8: क्या?
7: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
9: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, अपोजिट मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
10: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।

0: वेलकम बैक टू 89.6 मेगाहर्ट्ज़ मुरादाबाद एफएम।
1: क्या बात है, मुरादाबाद एफएम सुन रहे हैं आप, अपने शहर का सामुदायिक रेडियो। और फिर से हम कनेक्ट हो गए हैं दोस्तों आप सभी के बीच ढेर सारी बातें करने के लिए। सो आज का हमारा टॉपिक चल रहा है, यानी कि देखिए बात है दिल से लेकर, दिल की बातें दिल तक करते हैं, लेकिन आज उस दिल की बातें दिल में है टॉपिक, यानी कि दोस्ती के ऊपर। सो दोस्ती के ऊपर जो जितनी भी बातें करें ना उतनी कम होती है, क्योंकि दोस्त होते ही बड़े अनमोल हीरा मोती जैसे होते हैं, अनमोल रतन।
0: कुछ रिश्ते खत्म नहीं होते और कुछ रिश्तों को खत्म नहीं किया जा सकता, दोस्ती में ऐसा भी होता है।
1: हाँ ये तो है, बिल्कुल सही कहा आपने।
0: कभी कभी पुराने रिश्तों की याद अचानक किसी गाने में, किसी सड़क पे या किसी बारिश में वापस आ जाती है।
1: ये तो है।
0: और हम सोचते हैं अगर वो रिश्ता आज भी होता तो शायद जिंदगी कुछ और होती। लेकिन सच यही है कि हर रिश्ते में हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है।
1: बिल्कुल ये तो है, वो तो हमें सीखने को मिलता है। लेकिन हमारा अभी, मैं अगर आपसे बात पूछूं, क्योंकि आपका तो क्वाड कॉलेज रहा है ना, है ना, क्योंकि बातें भी आप इस तरीके से कर रहे हैं।
0: बिल्कुल सही कहा, कॉलेज तो मेरा भी रहा है।
1: अरे अरे अब आप तुम छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ये बताओ कि कभी कॉलेज आपने बंक मारी है?
0: कॉलेज
1: हाँ, मैं बोलना है दिल पर हाथ रख के बोलना है,
0: कॉलेज बंक मारी है या कॉलेज होता क्या ना, कॉलेज में ऐसा होता है जैसे जब अपने दोस्त लोग होते हैं, जब दोस्तों की एक पूरी वो बन जाती है ना, अपनी फौज टोली बन जाती है, तो फिर उसे बंक मारना नहीं कहते, उसे दोस्ती निभाना कहते हैं।
1: हाँ, दीवार के ऊपर से कूद के जा रहे, दोस्ती निभाने की बात करे, अगले दिन पता चल रही भैया अटेंडेंस के लिए पैसे पेमेंट करने पड़ रहे, अरे मैडम प्लीज कर दो, बढ़ा दो, वरना एग्जाम में नहीं बैठने देंगे।
0: अब वो दीवारें तो नहीं कूदना, अब तो आराम से निकल जाओ, गेट से ही निकल जाओ, गार्ड भी ऐसा कुछ कहता नहीं है कि हाँ भैया क्यों आ रहे, क्यों जा रहे।
1: 1000 रुपए दे दिया होगा ना आपने इसीलिए। लेकिन 1000 रुपए अटेंडेंस शीट के पास नहीं चलती, टीचरों के पास, वो तो बोलते हैं हाँ बेटा चल ठीक है बढ़ाना है, पेपर में बैठना है, चल तो 2000 बढ़ाते इधर।
0: कॉलेज लाइफ में या कॉलेज का ना सबसे एक इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है कैंटीन।
1: कैंटीन
0: और ये कॉम्बिनेशन जो है ना, मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन होता है, अगर कहीं भी कोई कॉलेज की स्टोरी भी देखोगे ना, अगर तुम बॉलीवुड में,
1: देखिए आप बातें घुमा रहे हैं,
0: तो उसमें कैंटीन का रोल इम्पोर्टेंट होता है।
1: बंक मार के आप किसी के साथ बाहर गए हैं?
0: हाँ बंक मार के गए, मैं
1: तो
0: बताया
1: तो कैंटीन की बातें क्यों ला रहे हैं?
0: मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि
1: मैं बताती हूँ गाइस, आप समझ गए होंगे ना, कोई तो सुन रहा है रेडियो।
0: नहीं नहीं नहीं, हम मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट बात की बात कर रहे हैं आप। हाँ। रीना जी किसी बात को पलटे ना, किसी बात को घुमाए ना।
1: नहीं नहीं मैं नहीं घुमा रही हूँ, आप कैंटीन पर सीधा पहुँच गए हैं। आई नो कि कैंटीन, मुझे पता है कि जब भी थोड़ा सा ब्रेक मिलता है तो हम कैंटीन के पास ही जाते हैं, क्योंकि वही एक प्याली वाली चाय जब साथ होती है ना, तो चाय कम बातें ज्यादा होती है।
0: ये बात बिल्कुल सही कही, क्योंकि
1: चाय पानी हो जाता है लेकिन बातों में मिठास घुल जाती है।
0: अब मतलब मैं ये कहूँगा, तुमने तो आज चाय की बात कर दी, तुमने चाय पे चर्चा ही कर दी, मगर जो कॉलेज में चाय से ज़्यादा जो होता है ना प्यार, जो चाय से ज़्यादा वो होता है सामने वाला कितनी देर तक आपके साथ बैठा हुआ है,
1: इम्पोर्टेंस देता है आप।
0: हाँ हाँ, फिर तो आप एक चाय मंगाओ, दो चाय मंगाओ, तीन चाय मंगाओ, पता नहीं चलता।
1: नहीं, इतनी कैपेसिटी नहीं है अपने अंदर, एक ही एक में ज़्यादा बच जाता है।
0: कॉलेज को लेकर एक शायरी आई है अभी ध्यान। कॉलेज की गलियों में जो प्यार मिला था वो आज भी दिल के किसी कोने में बसा है।
1: क्या बात है?
0: वक्त बदल गया, लोग बदल गए, लेकिन वो एहसास आज भी वैसा ही है।
1: क्या बात है, एक मैसेज आता है मेरे पास, छोटा बच्चा है अश्मित, 4th क्लास में पढ़ता है वो, भैया जो लिखा है ना सच बताऊ आप हंसेंगे, मतलब जो भी वो उसने भेजा है मेरे को, एक छोटी सी कहानी समझ लीजिए, क्योंकि आम का सीजन है और आम के सीजन के ऊपर उसने एक स्टोरी भेजी है।
0: आम तो मेरा भी फेवरेट है।
1: नहीं मेरा फेवरेट नहीं है। नहीं नहीं मैं बहुत रेयर, मतलब जूस पी लेती हूँ लेकिन ऐसे आम नहीं खा पाती,
0: शेक पी लेती हूँ शेक। हाँ
1: चलिए, तो उसने भेजा है 6 साल की छोकरी, 6 साल की छोकरी भर कर लाई टोकरी, टोकरी में आम है नहीं बताती दाम है, दिखा दिखा कर टोकरी हमें बुलाती छोकरी, आय हाय हमको देती आम है, नहीं बुलाती नाम है, नाम नहीं अब पूछना, हमें आम है चूसना।
0: हम तो यशमित से यही कहेंगे कि वो उस टोकरी को लेके अपने भाई बहनों के साथ बैठ जाओ और जितना हो फटाफट जितनी जल्दी हो उसे खत्म कर दो।
1: स्ट्रॉबेरी क्या बोला आपने?
0: मैं उस आम की टोकरी को लेके अपने भाई बहनों के साथ बैठ जाओ,
1: अच्छा
0: अपने दोस्तों के साथ, और
1: हाँ
0: उसे बिल्कुल एकदम खत्म कर दो। मतलब जो मजा आता है ना चूस के खाने का आम का, और अगर चूसते चूसते खाते खाते गुठली टपैक निकल
1: कहाँ
0: के
1: चलेगा।
0: बाहर निकल के कपड़ों पे आ जाए तो
1: हाँ,
0: भाई
1: अगर व्हाइट
0: साहब
1: कलर के आपने कुछ पहना हो तो भैया बड़ा दाग लगता है उसका, है ना।
0: तो उस आम की टेंशन खत्म, आम का स्वाद वाद सब खत्म। टेंशन आती बेटा, किसी ने देख लिया, किसी ने मम्मी पापा ने देख लिया तो बस सुनने को मिलेगी।
1: अच्छा आपसे एक बात पूछूं,
0: हाँ
1: वैसे
0: हाँ
1: मोस्टली बाजार में जो आम बिकते हैं वही खाते हैं ना, लेकिन कभी आपने वो वाला आम खाया है जो पेड़ से पके हुए हो? तो
0: हाँ हाँ पेड़ से पकौड़ा,
1: आपको उसका स्वाद कैसा लगता है?
0: उसका स्वाद ही बहुत अच्छा लगता है।
1: आप यकीन नहीं करेंगे, रीना आम नहीं खाती, लेकिन वो आम 2 किलो खाई रीना ने।
0: 2 किलो?
1: यस, वो भी एक दिन, एक साथ बैठे हम तीन बैठे थे, 2 किलो आम कैसे खत्म हुए पता ही नहीं चला। मतलब इतने टेस्टी, इतने टेस्टी, लाजवाब। तब से मैंने बाहर के जो आम दुकानों पे मतलब बिकते हैं मैं नहीं खाती हूँ, क्योंकि मुझे उस टेस्ट के अलावा कोई और अच्छा ही लगता ही नहीं।
0: इतना आम आम सुन के ना मुझे भी आम खाने का मन कर गया। पहले आम खा के आते हैं, तब तक अपने लिसनर्स को ये गाना सुनाते हैं और फिर हम दोबारा
1: मेरे
0: ज्वाइन
1: ऑफिस के
0: करते
1: पीछे
0: हैं।
1: एक पेड़ है,
0: चलो फिर, चलो उसी पेड़ पे
1: वो
0: चलना
1: भी
0: है।
1: छोटी है बड़ा।
0: चलिए मैं और रीना जब तक जा रहे हैं पेड़ पे से आम तोड़ने, तब तक आप सुनिए ये गाना।
1: पता चले आम के बगीचे वाले डंडा लेके भाग जाए।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।
2: दोस्तों, क्या बिना मिले भी प्यार हो सकता है? आज के दौर में बहुत लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल। किसी से सिर्फ बातों में जुड़ जाना, उसकी आवाज़ पसंद आ जाना और उसकी सोच से प्यार हो जाना, यही तो अनदेखा प्यार होता है। शायद चेहरे से ज़्यादा खूबसूरत इंसान की सोच होती है। रीना, एक शायरी कहना चाहूँगा। मुझे लगता है तुमने आम खा लिया है।
3: नहीं, आम नहीं, मैंने बोला था मुझे आम नहीं पसंद है। देखो गाइस, ये लेकर अपने लिए दुआ है, नाम मेरा ही।

0: क्योंकि मोहब्बत सिर्फ मिलने का नाम नहीं, समझने का नाम भी है।
1: ये तो बिल्कुल सही बात की। समझना, अगर आप किसी को समझते हैं ना, तो वो प्यार बहुत खूबसूरत होता है। और जिस प्यार में समझ ही ना हो, अंडरस्टैंडिंग ना हो, तो मुझे लगता है कि वो प्यार प्यार नहीं रहता है, बस वो दिखावे का प्यार होता है।
0: बिल्कुल सही कहा। और मैं अपने सभी श्रोताओं से पूछना चाहूँगा, या जो जो बताना भी चाहेंगे, कि आप में से कितनों ने कभी भी किसी को बिना मिले पसंद किया है?
1: बिना मिले हाँ,
0: और अगर पसंद किया तो हमें मैसेज कीजिए और बताइए अपनी कहानी।
1: अच्छा
0: 9837896896 पर।
1: क्या बात है जी, मैसेज करके बताओ गाइस, बिना देखे प्यार बड़ा सुहाना होता है।

गुड वाली इवनिंग है और अब मुझे नींद आने शुरू हो गई। जैसे टाइमिंग खत्म होती है मुझे नींद आने शुरू हो जाते हैं, पता नहीं क्यों गाइस। तो अखिल जी

0: आप क्या कहना चाहेंगे जाते जाते हमारे श्रोताओं को, बताइए।
1: आज हमने बात की है दोस्ती की,
0: हाँ
1: पुराने रिश्तों की, कॉलेज लव की और अनदेखी मोहब्बत की,
0: क्या बात है।
1: लेकिन इन सब का एक कॉमन शब्द है
0: हाँ,
1: और वो है एहसास।
0: एहसास, ठीक है।
1: रिश्ता हमेशा साथ रहे ये ज़रूरी नहीं, लेकिन वो हमें बेहतर इंसान बना जाए ये ज़रूरी है। आज की एक शायरी, इस शो की एक आखिरी शायरी मैं पढ़ना चाहूँगा आपके लिए।
0: पेश करना चाहूंगा। हाँ
1: हाँ, पेश ही करना चाहूँगा आपके
0: करिए।
1: लिए। कुछ रिश्ते किताबों जैसे होते हैं, हर पन्ने में एक कहानी छोड़ जाते हैं।
0: क्या बात है।
1: कुछ लोग दूर होकर भी अपने रहते हैं और कुछ यादों में घर बना
0: और
1: जाते
0: कुछ
1: हैं।
0: अपने अपने पास होके भी दूर रह जाते
1: ये भी है, कुछ पास होके भी दूर रह जाते
0: हैं।
1: हैं।
0: हाँ
1: तो याद रखो, दोस्ती हो या प्यार, रिश्ते निभाने से खूबसूरत बनते हैं।
0: बिल्कुल, ये तो सही कही आपने कि रिश्ते निभाने से खूबसूरत बन जाते हैं।
1: और इसी उम्मीद के साथ आप अपने रिश्तों की कद्र करेंगे और अपनों को भी वक्त देंगे।
0: मुझे लगता है कि कदर से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कदर भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन खुद के लिए प्यार करना और खुद के केयर करना वो और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट
1: बिल्कुल सही बात कही आपने। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, मुस्कुराते रहें और खुश रहें।
0: है। मैसेज भी आया ना हमारे पास।
1: हमारे पास एक मैसेज आया हुआ है, अंजलि जी का मैसेज है, और वो ये कहती हैं कि मेरा जो कॉलेज का प्यार था वो कैंटीन से चालू हुआ
0: अच्छा,
1: और अब घर की रसोई पे आके ख़त्म हुआ। तो मैं अंजलि जी से यही
0: मेरे को एक
1: कहूँगा।
0: बहुत प्यारी लाइन नहीं याद आ रही, लेकिन मैं कहूंगी नहीं क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, इसी के लिए आज मैं विराम देती हूँ अपने शब्दों
1: मगर
0: पर। ये
1: ये
0: कॉलेज से किचन वाली बात आ गई ना, उस पर भी कहने वाली थी, लेकिन
1: मैं अभी अंजलि जी से कुछ नहीं कह सकता। अंजलि जी मुरादाबाद से हैं आप, और आपने बहुत अच्छी बात कही है ये कि कैंटीन से शुरू हुआ कॉलेज
0: आज किचन तक
1: का।
0: खत्म, आज किचन पे आकर रुक गया है।
1: तो कोई बात नहीं, हम जरूर मिलेंगे अगले हफ्ते और इस बात को
0: अगले
1: आगे बढ़े।
0: हफ्ते
1: हाँ, मतलब मंडे से फ्राइडे तक,
0: कल सैटरडे है।
1: कल होगी कुछ फिल्मी बातें।
0: अच्छा, सैटरडे कुछ फिल्मी बातें लेकर आ रहे हैं आप।
1: हाँ, सैटरडे और संडे फिल्मी बातें।
0: सैटरडे और संडे, संडे तो संडे भी आएंगे आप। या मुझे लगता है कि ये डबल कमाई करने वाले हैं अब हैं, मतलब एक दिन भी छुट्टी नहीं लेना चाहते, अब तो सीधा ये संडे, मंडे टू संडे, संडे टू मंडे, क्या
1: सुनते
0: दिक्कत है।
1: रहिए 89.6 MHz FM मुरादाबाद। गुड नाइट, टेक केयर, कीप लविंग एंड कीप लिविंग।

0: टायर लो सोना जीतो।
1: क्या?
0: जी हाँ,
2: चावला टायर
0: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड अपोजिट मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
1: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
0: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
2: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
3: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
4: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in। हर घर

0: योजनाओं ने 140 करोड़ देशवासियों को नई ताकत दी। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ। उज्ज्वला योजना से महिलाओं को धुआं मुक्त रसोई, पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को आर्थिक मजबूती और आयुष्मान भारत से आम लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिली।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

0: पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश में हरित अभियान को मिल रहा है नया विस्तार। पौधारोपण, अमृत वन और जन भागीदारी से प्रकृति को सवारने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। 13 रामसर साइट और जैव विविधता का संरक्षण करते हुए यूपी में विगत 9 वर्षों में रिकॉर्ड 242 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया गया। इस बार भी पर्यावरण दिवस को बनाए खास, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को जन आंदोलन बनाए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: योजनाओं ने 140 करोड़ देशवासियों को नई ताकत दी। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ। उज्ज्वला योजना से महिलाओं को धुआं मुक्त रसोई, पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को आर्थिक मजबूती और आयुष्मान भारत से आम लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिली।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

अहमदाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।